0: MBC Radio, 24 hours a day.
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए?

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से। विधिमा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। ब्रिटिश समझौते पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने स्पष्ट किया है कि शागस पर मॉरिशस की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने घोषणा की है कि वे जल्द ही लंदन में ब्रिटिश NSA जोनाथन पावल से मुलाकात करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को किसी भी बाहरी वैतनिक गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये चेतावनी 15 अक्टूबर 2026 की टैक्स रिटर्न समय सीमा से ठीक पहले आई है। जून 2026 तक कंपटीशन कमीशन को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे खुदरा व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, दूरसंचार और स्वास्थ्य सेवा से कुल 133 शिकायतें और समस्याएं प्राप्त हुई हैं। आज अनंत व्रत है। अनंत व्रत भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना और सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला व्रत है। इसे मुख्य रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन रखा जाता है। पूजा में अनंत सूत्र बांधा जाता है जिसमें सामान्यतः 14 गांठें होती हैं। इसे भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। और विदेश में कोंगो डियासी में एक झील पर नाव पलटने से 41 लोगों की मौत हो गई और 49 को बचा लिया गया, जबकि लापता यात्रियों की तलाश जारी है। और आखिर में चले जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन उत्तर पश्चिम में कभी कभार बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 26, अन्य इलाकों पर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 15 से 17, अन्य इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। सूर्योदय 5:57 पर और आज शाम 6:06 पर सूरज ढल जाएगा।

ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاً.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين.

तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। मुअज़्ज़ज़ सामईन, पीराने पीर रोशन ज़मीर, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाही की मजालिस में लोग कलम और स्याही की डिब्बियां लेकर हाजिर होते थे और आप रहमतुल्लाही के इरशादात को लिखकर महफूज कर लेते। दरअसल गौसे आजम रहमतुल्लाही उम्मत की इस्लाह का ऐसा जज्बा रखते थे कि आप रहमतुल्लाही का कोई ऐसा बयान नहीं जिसमें लोग इस्लाम कबूल ना करते हों। एक वाक़े से मालूम होता है कि एक मर्तबा हमारे गौसे आजम रहमतुल्लाही ने इज्तमाई गौसिया में एक ही वक्त में एक आयत मुबारका की 40 तफासीर बयान फरमाई। सुभानअल्लाह, इस वाक़े से आप रहमतुल्लाही के इल्मी मकाम और मर्तबे की बुलंदी का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, शहबाज़ लामकानी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाही को इल्म-ए-दीन का बड़ा शौक़ था। आप रहमतुल्लाही ने इल्म-ए-दीन हासिल करने के लिए आजमाइश व तकालीफ और भूख बर्दाश्त की और ऐसे आलम में भी आप रहमतुल्लाही ने तकवा व परहेज़गारी, सब्र और ईसार का दामन न छोड़ा। अगर कहीं से खाने को कुछ मिल जाता तो दूसरों पर कुर्बान कर देते। सामईन, हम दो सना के बाद आइए दावत इस्लामी मॉरिशस के सदर कारी अब्दुल माजिद अत्तारी दामद बरकातुहु मालिया की ज़बानी एक आलिमाना बयान समात करते हैं। आपके बयान का उन्वान है गौसे आज़म रहमतुल्लाही का शौक़ इल्म।

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल आखिर का महीना है जिसके अंदर स्पेशली सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़िक्र खैर किया जाता है और आप वलियों के सरदार सुल्तानुल औलिया सरदारुल औलिया इमामुल औलिया हैं। औलिया अल्लाह की बहुत सारी सिफात हैं, उनकी पहचान है। आज हमारे अंदर बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम औलिया अल्लाह की जो पहचान होनी चाहिए थी उनको हमने दूर कर दिया है। बस हम देखते हैं किसी ने आपको मैजिक करके दिखा दिया, किसी ने कोई दम कर दिया तो हम समझते हैं ये बहुत पहुंचा हुआ है। वो शरीयत पर अमल करता है नहीं करता, वो सुन्नतों पर अमल करता है नहीं करता, वो कुरान और हदीस पर अमल करता है नहीं करता, वो बाशरा है नहीं है, वो इल्म दीन उसके पास है नहीं है, हम ये सब कुछ नहीं देखते। हालांकि ये सब चीज़ देखनी चाहिए। याद रखी है कि हर अल्लाह का वली, जो अल्लाह का वली होगा वो आलिम होगा, वो जाहिल नहीं हो सकता। एक जाहिल अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जिसके पास इल्म नहीं है वो अल्लाह का वली नहीं है। और मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तो शान क्या है, तमाम औलिया में आप सरदारुल औलिया हैं, तो तमाम औलिया में आप आलिम भी सबसे बड़े आलिम हैं, आप मुहद्दिस भी सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, आप मुफस्सिर भी सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व ताला ने आपको इल्म लदुन्नी भी अता फरमाया और आपने अपनी इब्तिदाई तालीम मदरसों से दारुल उलूम से भी हासिल की हैं। आइए आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल्ला बयान में हम गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्म दीन के शौक के बारे में कुछ सुनने की सआदत हासिल करेंगे। हुज़ूर गौसे पाक शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इब्तिदाई तालीम कस्बा जीलान में हासिल की, फिर मजीद तालीम के लिए सन 488 कत्सोवित में बगदाद शरीफ तशरीफ लाए। आप रहमतुल्लाहि ताला ने बड़े अच्छे तरीके से इल्म हासिल किया और अपनी तालीम मुकम्मल फरमा कर अपने ज़माने के उलमा में नुमाया मकाम हासिल किया। दौरान तालिब इल्मी आपको फाका कशी यानी भूखे रहने की नौबत भी आई और ना जाने इन दुश्वार गुजार मरहलों से गुजरना पड़ा, मगर इसके बावजूद इल्म दीन हासिल करने का जज्बा ठंडा ना हुआ। नहायत मेहनत और मुशक्क़त के साथ इल्म दीन हासिल करते रहे और जब इस सिलसिले की तकमील हुई और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फजलो कमाल पर पहुंच गए, बहुत बड़े आलिम दीन बन गए, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इल्मियत की शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई, तो आपके उस्ताद मोहतरम व मुर्शिद गिरामी हज़रत शेख अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दर्स व तदरीस के वास्ते अपना मदरसा आपके हवाले कर दिया, जिसकी ज़िम्मेदारी आपने खुश दिली के साथ ना सिर्फ कबूल फरमाई बल्कि मसनद तदरीस को रौनक बख्श कर उलम फ़नून के प्यासों को सैराब करने लगे। मेरे मुर्शिद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने क़सीदा गौसिया में इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, यानी मैंने इल्म का दर्स लिया यहाँ तक के मकाम कुतबियत पर पहुँच गया। मजीद इरशाद फरमाते हैं, फिक सीख इसके बाद तन्हाई इख्तियार कर, जो बग़ैर इल्म के खुदा की इबादत करता है वो जितना सवार रेगा उससे ज़्यादा बिगाड़ेगा। अपने साथ शरीयत की शमा ले लो, अल्लाह पाक की तरफ से सबसे ज़्यादा क़ुर्ब करीब रास्ता

बंदगी के कानून को लाजिम पकड़ना और शरीयत की गिरा को थामे रखना है। ए आशिकाने गौसे आज़म औलिया किराम की सबसे अफजल कसम सिद्दीक कहलाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिद्दीक थे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी मुर्शिदी हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने बचपन के एक वाक़े के बारे में फरमाते हैं। मेरी उम्र 10 साल की थी। मैं एक दिन अपने घर से मदरसे की तरफ जा रहा था। मैंने फरिश्तों को देखा जो बच्चों से कह रहे थे, अल्लाह के वली के लिए कुशादा जगह कुशादा कर दो ताकि वो बैठ जाएं। इसी दौरान एक शख्स हमारे करीब से गुजरा जिसे मैं इस वक्त नहीं जानता था। उसने फरिश्तों से यही बात सुनी तो उसने एक फरिश्ते से पूछा, ये लड़का कौन है? फरिश्ते ने कहा कि अन करीब इसकी शान अजीम होगी, इसको अता किया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा, इसको इख्तियार दिया जाएगा और रोका नहीं जाएगा, और इसको करीब किया जाएगा, इससे धोखा ना किया जाएगा। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, फिर मैंने उस शख्स को 40 साल बाद पहचाना तो वो उस वक्त का अब्दाल था। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। अजीज़ो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आज़म का। लहद में जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा, तरीका कादरी है नाम लेवा गौसे आज़म का। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पीरो मुर्शिद शहनशाह बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला ने बड़े मुश्किल वक्त में बड़ी मेहनत और लगन के साथ इल्म दीन हासिल किया। आप रहमतुल्लाहि ताला ने खुद फरमाते हैं कि मैं अपने तालिब इल्मी के ज़माने में असातिज़ा से सबक लेकर जंगल की तरफ निकल जाया करता था। फिर बयाबानों और वीरानों में दिन हो या रात, आंधी हो या बरसात, गर्मी हो या सर्दी, अपना मुताला यानी स्टडी जारी रखता था। उस वक्त मैं अपने सर पर एक छोटा सा अमामा बांधता था और मामूली सी तरकारियाँ यानी सब्जियाँ खाता। कभी कभी ये तरकारियाँ भी ना मिलती मगर मैं अपना मुताला जारी रखता। फिर नींद आती तो खाली पेट ही कंकरियों से भरी ज़मीन पर सो जाता। अल्लाह अकबर। जब मेरे मुर्शिद गौसे पाक ने इल्म दीन से फरागत हासिल कर ली और अब दरस व तदरीस की मसनद व इफ्ताह के मनसब पर पहुँच गए यानी मुफ्ती भी बन गए, तो लोगों को वाज़ो नसीहत और इल्म व अमल की इशाद यानी फैलाने में मसरूफ़ हो गए। चुनाचे दुनिया भर से उलमा व सुलहा यानी नेक लोग आपकी बारगाह में इल्म सीखने के लिए हाजिर होते। उस वक्त पूरे बगदाद में आपका हम पल्ला कोई ना था। आप इल्म के समंदर थे। आपको इल्म फ़िक्र, इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म नहफ़ और इल्म अदब वगैरह उलूम पर महारत हासिल थी। जब आपको आपके असातिज़ा ने इल्म हदीस की सनद दी तो फरमाने लगे, ए अब्दुल क़ादिर, अल्फाज हदीस की सनद तो हम आपको दे रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि हदीस के मानी व मफहूम का समझना तो हमने आप ही से सीखा है। गोया उस्ताद कह रहे हैं कि हम अगरचे ज़ाहरी तो आपके उस्ताद सही लेकिन हकीकत में बातनी तौर पर तो आप हमारे उस्ताद हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इल्म दीन के फैलाने का इस कदर शौक़ था कि आप अपना वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं फरमाते थे। आप इल्मी कामों में ही में अक्सर मसरूफ़ रहते। दूसरे शहरों के तलबा आपकी तारीफ़ और उलूम फ़नून में महारत की शोहरत सुनकर आपकी खिदमत में इल्म दीन हासिल करने और आपके फ्यूज़ात और बरकात लूटने के लिए हाजिर होते रहे। आप इल्म अमल के ऐसे पैकर थे कि जो भी आपके पास इल्म हासिल करने के लिए हाजिर होता वो खाली हाथ ना लौटता था, यानी इल्म के साथ साथ अमल भी पढ़ा देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला उन्होंने तालीम ऐसी हासिल की, तदरीस ऐसी की कि रिवायतों में आता है कि आपके 100 मिल ज़िलेफ़ थे, 1 लाख ज़िलेफ़ आपके थे और हर साल आपके मदरसे से 2 मिल जिमुन लोग जो हैं वो फारिग उत तहसील होते थे।
आपने दिन रात इल्म दीन पढ़ा, इल्म दीन सिखाया लोगों को और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के समंदर बहाए। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अभी बयान में कि आप मुफस्सिर, आप आलिम, आप मुहद्दिस, आप मुफ्ती,

आप तमाम औलिया के सरदार हैं तो तमाम औलिया में अफजल हैं, तो इल्म में भी आप अफजल हैं। काश हम भी गौसे पाक के दीवाने अपने आप को कहलाने वाले, इल्म दीन हासिल करने वाले बन जाएं। काश हम कम से कम चलें, आलिम दीन बनना मुश्किल है, हाफिज़ कुरान बनना मुश्किल है, तो कम से कम हम फ़र्ज़ उलूम तो सीख लें। फ़र्ज़ उलूम क्या होते हैं? जो चीज़ हम पर फ़र्ज़ है हम उनके मसाइल तो जानें। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज हम पर फ़र्ज़ हुई तो अब हमें नमाज के मसाइल जानना भी हम पर फ़र्ज़ हो गए। हज फ़र्ज़ हुआ तो हज के मसाइल जानना भी हम पर फ़र्ज़ हो गए। ज़कात फ़र्ज़ हुई, ज़कात के मसाइल जानना भी हम पर फ़र्ज़ हो गए। रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो रोज़े के मसाइल भी जानना हम पर फ़र्ज़ हो गए। कम से कम इन चीज़ों को तो सीखें, तहारत तो सीखें। हम रोज़ा किन चीज़ों से कासे होता है, किन चीज़ों से नहीं होता, कसम का कफ़ारा क्या होता है, रोज़े का कफ़ारा क्या होता है, क़ज़ा कैसे होती है, नमाज क़ज़ा हो जाए तो क्या करेंगे, नमाज में गलती हो गई तो नमाज में कैसे नमाज को दुरुस्त करेंगे, सजदा सहव क्या होता है, वाजिबुल यादा क्या होता है, नमाज के वाजिबात क्या हैं, नमाज के फ़राइज़ क्या हैं, नमाज की सुन्नतें क्या हैं, शराइत क्या हैं। काश अल्लाह करे कि हम कम से कम इन चीज़ों को सीख लें जिनको फ़र्ज़ उलूम कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि आप बात समझ रहे होंगे मेरी। मैं आपको आलिम बनने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर जज्बा है, शौक़ है और हिम्मत है, तो आलिम दीन बने। अल्लाह करे कि हमारे हर घर में एक आलिम दीन हो, हाफिज़ कुरान हो। चलें ये मुश्किल है, नहीं हो पाता, तो कम से कम हर मुसलमान को फ़र्ज़ उलूम तो सीखने चाहिए। अल्लाह पाक हमें इल्म दीन सीखने वाला बनाए। सुन्नतों भरे इज्तमात में शिरकत करें, हमारे इज्तमात के अंदर इल्म दीन सीखने का मौका मिलता है, उसमें शिरकत करें, अच्छी अच्छी महफ़िलों में शिरकत करें, इल्म दीन सीखें, दूसरों को सिखाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ल्ला आप देखेंगे इसकी बरकत से आपके अंदर सोज़मो आएगा, आपके महल्ले में सोज़मो आएगा, आपके घर में सोज़मो आएगा। इल्म की बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह पाक हमें गौसे पाक के सदक़े इल्म दीन सीखने, दूसरों को सिखाने वाला बनाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।

मोहतरम सामईन, उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर में निसार अख्तर एक बार फिर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले आप दावत इस्लामी मॉरिशस के सदर कारी अब्दुल माजिद अत्तारी दामत बरकात गुमालिया की जबानी एक आलिमाना बयान समात फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।

सामईन जी वकार, आज योम जुम्मा है। ऐ दोनों जहां के माबूद, तेरी रहमत से ये बाबरकत दिन शुरू हो गया है। या इलाही, इस दिन में की जाने वाली हर इबादत, हर दुआ को अपनी बारगाह अकदस में कबूल फरमा। ऐ गुनहगारों के लग्जिशें माफ फरमाने वाले गफूर रहीम, हमारे गुनाहों को ऐसे बख्श दे कि फिर हमसे कोई गुनाह सरजद न हो। आमीन या रब्बल आलमीन।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी मनकबत के साथ आज की सबाल खैर नशरियात अख्तताम पजीर होती है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने नेक बंदों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनकी तालीमात पर अमल की तौफीक दे और इस माह मुबारक की बरकतों से हमारे दिलों को नूरे ईमान से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, अब आपका मेज़बान निसार अख्तर इजाज़त का तलबगार है। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। पर वादा है कि अगले जुम्मे को फिर मुलाकात होगी। आइए आखिर में सलातुस्सलाम का नजराना कबूल फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम, फी अमानिल्लाह।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

प्रणाम श्रोतागण, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ मन को शांति और जीवन को सही दिशा भी मिलती है। भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं, अब तो हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करने का नाम है। आप सभी को अनंत व्रत की मंगल कामनाएं। आशा है परमात्मा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं गणेश वंदना से।

श्रोताओं, अनंत व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान अनंत की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अनंत सूत्र धारण भी करते हैं। यह सूत्र केवल एक धागा ही नहीं अपितु भगवान के प्रति आस्था, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव अनेक कठिनाइयों से घिर गए थे, तब भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत भगवान का व्रत करने का मार्ग बताया। श्रद्धा से किए गए इस व्रत से उनके जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ था। कहा जाता है, जिसके मन में भक्ति हो वहीं पर परमात्मा का भी वास होता है और परमात्मा हमेशा अपने भक्तों के मार्गदर्शन अवश्य करवाते हैं। आप भी हमारे साथ इस भक्ति कार्यक्रम में भक्ति और श्रद्धा के साथ जुड़ जाइए। आइए इस भजन को सुनते हैं।

श्रोताओं, अनंत व्रत केवल भगवान की पूजा करना नहीं सिखाता अपितु जीवन को समझाने का एक सुंदर संदेश भी देता है। हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब मेहनत करने के बाद भी परिणाम हमारे अनुसार नहीं मिलते। इस कभी कभी रिश्ते कठिन हो जाते हैं, कभी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती हैं और कभी मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यही से अनंत व्रत का एक गहरा संदेश हमारे जीवन से जुड़ता है। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं, और हमारा जीवन भी कर्मों की एक अनंत यात्रा है। हम आज जो कर्म करते हैं उनका प्रभाव केवल आज तक सीमित नहीं रहता। हमारे शब्द, हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय और दूसरों के प्रति हमारी भावना सब हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। इसीलिए अनंत व्रत हमें यह स्मरण दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अपने कर्मों की पवित्रता को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि अच्छे कर्म का अर्थ केवल किसी की सहायता करने में नहीं, किसी को दुख न देना भी अच्छा कर्म माना जाता है। किसी की मजबूरी का फायदा न उठाना भी अच्छे कर्म भी माना जाता है। माता पिता का सम्मान करना, रिश्तों में ईमानदारी और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना भी अच्छे कर्म माना जाता है। आइए इसी के साथ एक और सुंदर भजन को सुनते हैं।

0: श्रोताओं, भगवान से केवल सुख मत मांगिए, ऐसा मन मांगिए जो सुख में अहंकार ना करे और दुख में विश्वास ना खोए। अनंत व्रत का यही सुंदर संदेश है। कर्म करते रहिए, धैर्य रखिए, अहंकार छोड़िए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि जीवन में हर चीज़ का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का फल समय लेता है, कुछ अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और कुछ कठिनाइयाँ हमें उस इंसान में बदल देती हैं जो हमें बनना चाहिए। इस अनंत चतुर्दशी पर आइए केवल एक धागा ना बांधे, बल्कि अपितु अपने जीवन में एक संकल्प भी बांधे कि मैं अपने कर्मों को पवित्र रखूंगा, मैं किसी के लिए जानबूझकर दुख का कारण नहीं बनूंगा, मैं कठिन समय में धैर्य रखूंगा और परिस्थितियां चाहे जैसा भी हो, ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखूंगा।
1: अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम।
0: प्रेम और भक्ति के साथ जो भी परमात्मा को बुलाते हैं, परमात्मा अवश्य आता है।

भक्ति में शक्ति। श्रोताओं, इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे। परमात्मा की कृपा आप सभी पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, बस यही आशा है। पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को प्रणाम। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।

0: दिन के 12 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे विधिमान नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मनी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के चलते विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों से संबंधित एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य नवाचार, निवेश और तकनीकी विकास के क्षेत्रों में नए सहयोग को बढ़ावा देना है। सरस्वती मुखिया की हत्या के मामले में एक नया मोड़ आया है। एमसीआईटी ने मृतका के दो करीबियों, उनके 54 वर्षीय भाई प्रीतम और 29 वर्षीय बहू खुशबू को गिरफ्तार कर लिया है। याद दिला दें कि पिछले शुक्रवार को सरस्वती मुखिया थियोले में अपने बागान में मृत पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ था कि उनकी मौत गला घोंटने से हुई थी। इस संदर्भ में जाँच जारी है। पोटली जिला अदालत ने व्यवसायी आली साहिब जगाई को अपने अकाउंटेंट, अपने ब्रोकर और अपने व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े दो अन्य लोगों सहित चार गवाहों से संपर्क करने की अनुमति दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अस्थायी रूप से आरोपी पूर्व पुलिस सुपरिटेंडेंट आशिक जगाई के बेटे ने अपनी जमानत की शर्तों में संशोधन का अनुरोध किया था, जिसके तहत उन्हें इस मामले में गवाहों से संपर्क करने से प्रतिबंधित किया गया था। वो संविधान की धारा 10 के अनुसार अपनी रक्षा की तैयारी करने और एफसीसी के सवालों का सटीक उत्तर देने के लिए उनसे परामर्श करना चाहते थे। हालांकि एफसीसी ने इसका विरोध किया था। कल दिए गए एक रूलिंग में अदालत का मानना है कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ का जोखिम कम है, साथ ही उसने जांच की अखंडता बनाए रखने की आवश्यकता को भी याद दिलाया है। हालांकि संपर्क केवल लिखित आदान प्रदान तक सीमित रहेगा। अली साहिब जगाई ने आगे बढ़ने से पहले कुछ गवाहों से परामर्श करने की बात कहने से पहले एफसीसी को 7 बयान दिए थे। उनका बचाव वकील यश बादें कर रहे हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि गमीज, बिस्कुट और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जैसे सामान्य दिखने वाले उत्पादों में अवैध पदार्थ हो सकते हैं। हाल ही में एक अभियान में जब्त की गई कुकीज और पिछले साल हवाई अड्डे पर पकड़े गए सामानों की एफएसएल जांच में सिंथेटिक ड्रग्स और गांजे की पुष्टि हुई है। और विदेश में कजाकिस्तान में नौसेना अभ्यास के दौरान अचानक खराब मौसम के कारण समुद्र में बह जाने से 12 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई। 17 सैनिकों में से 3 को बचा लिया गया, बाकी 2 जवानों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद राष्ट्रपति कासिम जोमर्त टोकायेव ने शुक्रवार को राष्ट्रशोक दिवस घोषित किया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। मधुलेन पृथ्वीवेजी में 89 साल की 89 years old की श्रीमती जामुंती फाउदव, पैदायशी नाम पैतुब और जुसुनी नाम से भी जान जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके बेटे प्रदीप फाउदव के घर मधुलेन पृथ्वीवेजी से उठाकर सियाकोंस्टांस सेंट पियर की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। काहुआ कासिया तो बुटीक में 74 साल की 74 years old की श्रीमती पद्मावती गोंगू, जो इंदिरा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी

0: आज सुपहर 3 बजे उनके पति श्री राज जवाहर के घर काहवा का सिया ख्वाब बुटीक से उठाकर पैनमानियों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। धनपत लेन वाशेरी में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुदेवी लकिया पैदायशी नाम बिकारी और जो सुदेवी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 2 बजे उनके बेटे कुणाल लकिया के घर धनपत लेन वाशेरी से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रायरोड ब्रह्मस्थान में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री देवदत्त बैजनाथ जो दत्त नाम से भी जाने जाते थे और जो पहले पुलिस कॉर्पोरल थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 2 बजे उनके घर रायरोड ब्रह्मस्थान से उठाकर लावांचुया की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। वाल्टोन रोड लॉन्ग माउंटेन में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री विद्यानंद रामरतन जो क्रेशन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज सुपहर 3 बजे उनके घर वाल्टोन रोड लॉन्ग माउंटेन से उठाकर त्यामिनिस्ट्रियोले की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play and NBC.MU.
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
3: घड़ी मिलाते चले दिन के 12:05 हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का सुहाना सफर में। वैसे आज का हमारा सुहाना सफर विदिता तो है स्टूडियो में, लेकिन आज हम आपको लेकर जाएंगे बाहर। यानी कि आज सफ़र करेंगे हम बाहर। कहाँ जाएंगे, किसके साथ होंगे? जी बिल्कुल, हमारी पूरी टीम बेलमा पहुँच गई है, थोड़ी देर में करेंगे उनसे मुलाकात।

0: दिन के 12:11 हुए हैं। जी हाँ, आज है फ्राइडे 25 सितंबर। कैसे हैं? नमस्कार, स्वागत आप सबों का। यह है रेडियो मनोरंजन। रेडियो मनोरंजन पर खूबसूरत पुराने गीतों का जादू तो छाई गया है, लेकिन यहाँ पर जादू कुछ और छाने वाले हैं, धमाके कुछ और होने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हम आपको बाहर लेकर जा रहे हैं बिल्बाओ की ओर। ठंडी ठंडी वहाँ समंदर की जो लहरें हैं, वहाँ की जो ताज़ी हवा है, वो हम आपको पहुँचाएंगे हमारे रेडियो के जरिए। तो चलिए साथ देते रहिए और थोड़ी देर में हमारा लाइव शुरू होने वाला है।
1: RM3 Radio.

0: दिल की गिरह खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ। वैसे गाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिलेंगे बस थोड़ी देर में और हमारा लाइव बिल्मा के रिक्रिएशन सेंटर से होगा जहां पर पूरी टीम पहुंच गई है। सुहाना सफर होने वाला है वहां से लाइव।
1: RM3 Radio.

प्यार तो निराला है लेकिन सबसे निराला तब होता है ना जब सब साथ में होते हैं और मोमेंट्स हम बनाते हैं, यादें बनाते हैं। उन्हीं यादों के साथ हमारा सफ़र जो है सुहाना बनाने के लिए हमारी टीम पहुंच गई है बेलमो, मिलना चाहेंगे।

0: दोस्तों चलिए मिलते हैं अब हम नीतू शाह से और पूरी टीम से, कौन कौन कहाँ पे है। रत्ना से बात हुई, अभी सबसे बातें हो रही हैं, दीपशिका से बात हो गई, तो कौन कौन है वहाँ पे और क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं। हेलो नीतू शाह, नमस्कार।
1: नमस्कार वेरिता। नीतू शाह के साथ जैसे ही आपने कहा, दीपशिका है, रत्ना है, साथ में हमारी प्यारी सी गिनी शाह है और हमारी पूरी टीम डोमिनिक इकलास अभी सब है यहाँ पर, दाऊजी भी है। तो इस सफर को और सुहाना बनाने के लिए और मजेदार बनाने के लिए आज हम पहुँच आए हैं एट ससिव सागर राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर बेलमाव में, जहाँ पर बहुत और मस्ती होने वाली है। गिनी,
2: बिल्कुल। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते सभी को, आवाज सुनाई नहीं दे रहा। नमस्ते, कैसे हैं सभी लोग? जैसे कि आप सुन सकते हैं वेदिता, सभी लोग जो है एकदम तैयार है हमारे साथ करने के लिए। सो थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ तक आए, और वी प्रॉमिस कि आज का ये दिन आप लोगों के लिए यादगार रहने वाली है ना?
3: बिल्कुल, और अभी से लेकर 2 बजे तक हम आपके साथ बने रहेंगे और आशा करते हैं कि आज की ये शाम, वैसे तो दोपहर है और यहाँ पर हम बता दें आपको, इतना प्यारा मौसम, धूप खिली हुई है, लगता है गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, और बिल्कुल ऐसे तरोताज़ा मौसम में आप सभी का मूड हम तरोताज़ा बनाएंगे, और बिल्कुल नाच गाने के साथ मैंने सुना है कुछ गिफ्ट्स भी मिलने वाली हैं।
2: बिल्कुल, गेम भी हैं, बहुत सारे गेम्स हैं हमारे पास, हम बहुत सारे कैडोज लेकर आए हैं इन सभी लोगों के लिए।
1: यस, कैडोज के साथ, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये है आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद हम यहाँ पर पाने आए हैं। तो क्या आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं?
2: नहीं, जोर से
3: बिल्कुल तालियां बजा दीजिए हमारे लिए, हम यहाँ पर आए हैं NBC से निकलकर बाहर।
1: मैं तो कहती हूँ अपने लिए तालियां बनाए बजाइए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए आए हैं।
2: और जितने भी हमारे लिसनर्स हमें रेडियो पे सुन रहे हैं, आपको याद दिला दिया, अगर आप चाहे तो लाइव भी हमें देख सकते हैं ऑन अवर टिकटॉक पेज जो है, वी आर लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन पर। तो हम सभी लोग तैयार हैं, और नीतू नेक्स्ट क्या पेश करने वाले हैं अभी?
1: जी,

हमारे साथ है मिस्टर सुराया पताना और एक बहुत ही खूबसूरत गीत गाने वाले हैं, तो चला इनकर खातिर कस के ताली मारा।

0: बिल्कुल, आज से पहले, आज से ज्यादा इतनी ज्यादा खुशी मिलेंगी नहीं किसी को,
1: नहीं मिलेगी। और मुझे ये नहीं पता था रत्ना डी की, ये आज से पहले नहीं पता था कि इतने अच्छे गाते हैं।
0: बिल्कुल, मैं आप लोगों में से जानना चाहूंगी, वैसे मैं आपको बता दूं, जो भी इस सवाल का सही जवाब देगा उसे दिया जाएगा एक इनाम। पर ये इनाम कौन दे रहा है पहले ये बता दे नीतूषा, ये कौन दे रहा है, किसकी तरफ से हमें आज इतने सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं?
1: Well, closer to you, to better serve you, visit our new shop. Actually, एक new shop खुला है at John Kennedy Street at Rosehill, और वहाँ पर आप जा सकते हैं, discover कर सकते हैं a wide range of Ayurvedic, herbal and organic products. World of Nature नाम है उस shop का, you health our nature, यानी कि उनका ख्याल रखेंगे यार,
0: उनका ख्याल रखेंगे। और नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ आप अपना ब्यूटी केयर कर सकते हो, स्किन केयर कर सकते हो। और पहले उसके लिए एक सवाल का जवाब देना होगा, आपको बताना होगा कि ये गाना ओरिजिनली किसने गाया है। आप में से आज, कोई बता सकता है?
1: आज से पहले वाला जो गाना अभी हमारे भाई साहब ने गाया,
0: ये जो गाना आपने गाया है ओरिजिनली किसने गाया है,
1: मतलब किसी को याद है?
0: सोचिए सोचिए, ऐसे नहीं बोलना है, सभी को पता चल जाएगा। आपका नाम पहले बताओ।
2: पता ना।
0: और आप कहाँ से आई हैं?
2: एक्वायर
0: से। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल चीख कर जोर से जवाब दे दिया। बिल्कुल ऐसे जोर से नहीं देना है जवाब, आपको धीरे से कान में यहाँ या तो मेरे पास आकर आप बताइए। आपको दिया जाता है ये ब्यूटीफुल सा गिफ्ट हमारे स्पॉन्सर्स के लिए, एक बार जोरदार ताली, और इनके लिए जोरदार तालियां। तो
1: हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे वर्ल्ड ऑफ नेचर का, जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट आप सभी लोगों के लिए भेजा। और अभी रत्ना हमारे पास एक और ब्यूटीफुल लेडी खड़ी है, बोल रहे हैं कि हमें भी गाना गाना है।
0: जी हाँ, हमारे सामने है मीरा जी, और मीरा जी आई है बेलगोज से, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की एक सदस्य हैं, और वैसे हमारे बहुत सारे श्रोता यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। तो चलिए मीरा जी गाना सुनते हैं।

0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद अमीरा जी। तो चलिए बाद में उनको फिर से सुनेंगे कि नहीं। What next?
1: Thank you so much. What next? अभी तो मस्ती मजाक शुरू होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जहाँ पे भी हम जाते हैं हमेशा बहुत सारे गेम्स हम प्ले करते हैं, लेकिन नीटू का सबसे फेवरेट गेम है हैट गेम।
0: इसकी टोपी उसके सर।
1: हाँ, अब किसकी टोपी किसके सर जाने वाली है, लेट्स सी। पहले लेडीज के साथ शुरू करते हैं। मैं 6 लेडीज या 8 लेडीज को बुलाना चाहूँगी। आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो मज़ा आएगा। आप बैठ के ऐसे मत स्माइल कीजिए, आप आ जाइए हमारे पास। आइए आइए, आप भी आ जाइए, आ जाइए। मोबाइल को रखो, थके हुए नहीं हो आप, आराम करने आए हो, मस्ती करने आए हो। चलिए आप आ जाइए। और यहाँ पे भी लेडीज़ आप भी आ जाइए ना। हाँ जी, आप आ जाइए, आप ही आ जाइए। अरे मुझे चूज़ करने का मौका क्यों दे रहे हो, आप खुद उठ जाइए और हमारे पास आ जाइए। आप भी आ जाइए। मैडम यू कैन कम, नो यू डोंट वांट, आप भी आ सकते हैं, आ जाओ। अच्छा, ये वीडियोग्राफर बनी है आज तो। 1 2 3 4 5 6, 2 और चाहिए, 7 8। उधर कहाँ जा रहे हो मैडम जी, इधर आ जाओ मैडम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, चलो कोई बात नहीं, जितने भी हमारे देखिए ब्यूटीफुल लेडीज़ आए हैं, आप लोग यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। आप ना मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, गलत बात है। उधर देख रहे हो कि वीडियो बन रहा है कि नहीं। आप भी आ जाइए। चलिए आप लोग एक सर्कल बना दीजिए।

0: आपको पता है ना कि बचपन में हम खेलते थे ना टोपी के साथ, लेकिन रूल ये है कि टोपी जब आप पहनाएंगे तो पूरे सर में पहनना पड़ेगा, फिर दूसरे के सिर में आप डालोगे। ये नहीं है कि ऐसे ऊपर से ही ऐसे टच नहीं करना है, पूरा पहनाना है, ठीक है। तो म्यूज़िक तैयार है डीजे वाले बाबू? और जहाँ म्यूज़िक रुकी, टोपी जिसके सर, वो ओ यू टी आउट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट प्ले।
1: आ दुनिया बा,
0: चारों क्लैप, तालियां बजाएं।

म्यूजिक रुकी आपके सिर पे, ओ यूटी आउट हो गए आप, थैंक यू सो मच। आप थोड़ा क्लोज हो जाइए, म्यूजिक

तालियां, तालियां की गूंज नहीं रुकनी चाहिए। आप आउट हो गए और मुझे देख के बोल भी रही है आउट, मैं आउट हो गई। हाँ जी आप आउट हो गए। आप लोग ना थोड़ा सा क्लोज आ जाइए और आंटी थोड़ा सा जल्दी जल्दी, वरना आप आउट हो जाएंगे। ठीक है चले म्यूजिक।

और आंटी ना मैंने अभी देखा जैसे टोपी अपने सिर से उतारी, दूसरे के सिर पर कहा मेरे बाल तो ठीक है, मेरे बाल तो ठीक है। चले म्यूजिक।

0: OUT out. ज़्यादा क्लोज हो जाइए. म्यूजिक. ओहो ओहो.
1: सब कीड़ा खा के खेती में जीता कर ले.
0: ओहो आंटी आउट हो गए. एक मिनट पहले याद दिला दे जितने भी हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन. प्लीज़ अगर आप हमें लाइव देखना पसंद करोगे, वी आर लाइव राइट नाउ ऑन टिकटॉक और एन टी यू रेडियो मस्ती. बहुत ही मज़ा आ रहा है. मज़ा आ रहा है आंटी? हाँ
2: बहुत मज़ा आ रही है.
0: हाय हाय आंटी जी को मज़ा आ रहा है. म्यूज़िक.

0: किसके सिर पे रुकी? आपके। बहुत मजा आ रहा है।
1: यही कारण है कोई।
0: हाँ, दिस इज अ गेम, दिस इज द स्पिरिट। अच्छी बात है, देखो आंटी को बुरा नहीं लगा, वहाँ खड़े हो जाइए। अभी ये जो हमारे दो प्यारे ये जो लेडीज है ना, उनके बीच में आंटी आप ना स्लो नहीं होना, जल्दी पटक पटक के मारना उनके सिर पे। म्यूजिक।

0: आपके सिर पे रुकी, आप भी आउट हो गई। और आज का लकी विनर है हमारा विजेता है, आपका नाम?
1: विदुषी।
0: विदुषी कहाँ से हो?
1: Quatre bonnes
0: से। तो विदुषी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और आप जीत रहे हैं दो प्यारे हेयर स्किन केयर फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ नेचर, जो हमारा स्पॉन्सर है ने आपको दिया है ये। लेकिन सिर्फ आपको ही नहीं, सारे लेडीज को जरूर गिफ्ट मिलेगा। अच्छा रत्ना दी, आप जाइए, आप गिफ्ट दीजिए। वो बिल्कुल तैयारी कर रहे थे कि मैं गाना गाऊंगी, अभी मैं गाना गाऊंगी। आई रियली होप कि आप सभी लोगों को मज़ा आ रहा है। और थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं ऑन टिकटॉक और M3 रेडियो मनोरंजन, और पूछ रहे हैं कि कहाँ पे है। वी आर लाइव राइट नाउ, जितने भी हमारे और M3 मनोरंजन के टीम हैं, वी आर फ्रॉम अभी बेलमाव से एंड

0: इट्स सर शिव सांगा और रामगुलाम रिक्रिएशनल सेंटर. जी हाँ, याद करना पड़ता है, हम हर एंड ऑफ द मंथ फ्राइडे को निकलते हैं और जाते हैं हमारे अपनों के साथ. बहुत ही अच्छे अच्छे वक्त बिताते हैं. तो चलिए म्यूजिक हो जाए, एक फोटो सुवेनियर हो जाए, रत्ना डी आ जाए और आप भी आ जाइए नीतूषा जी. वेल, अभी क्या आप लोग तैयार हैं एक बहुत ही अच्छा गाना सुनने के लिए? लेकिन रत्ना जी बोलती है ना कि वो सुनाएगी जब लोग साथ में गाएंगे.
1: बिल्कुल, यहाँ पर साथ में ताली देंगे, ताली बजाएंगे, क्योंकि ये बहुत हल्का फुल्का सा गाना है. रॉक एंड रोल हम बाद में करेंगे. यहाँ पर एक पुराना सा गाना आपके लिए हम दिल से चुनकर लाए हैं. होप कि आपको अच्छा लगेगा और इसके बाद बिल्कुल और एक सवाल मैं पूछूंगी.
0: ठीक है, तो जोरदार तालियां हो जाए हमारी रत्ना जी के लिए.

0: क्या बात है, जोरदार तालियां रत्ना खातिर। रहे ना रहे हम बनके गली बनके सबा, बागों में ऐसे ही झूलते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे।
1: बिल्कुल, हर पल हमारे लिए बहुत अहम होता है, पर हम क्या करते हैं, हमेशा अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर कंप्लेंस करते रहते हैं, इसीलिए ज़िंदगी में हम हमेशा रोते रहते हैं। पर जब अगर आपको खुशी चाहिए, खुशी के लिए बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी, बस आईने में अपने आप को देखिए, एक मस्त स्माइल दीजिए और कहिए उस इंसान से, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, फिर देखिए क्या मस्त स्माइल आ जाएगी। अच्छा लगा गाना? ओहो, ये हुई ना बात। तो चलिए अगले सेगमेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे।
0: एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए श्रीमान पताना के लिए। एक और फिर जो खूबसूरत एवरग्रीन सॉन्ग है, हम किसी से कम नहीं, आप बताए कौन सा गाना गाने वाले हैं इसमें? बताए बताए, इतने सारे गाने, अच्छे अच्छे गाने हैं। कोई बात नहीं, आप धुन सुन लीजिएगा, खुद खुद आपको पता चल जाएगा। याद आया?

0: चली रहा है, तो बिल्कुल नेक है यहाँ पर, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सुरैया पताला जी। तो हमारा सीधा प्रसारण हो रहा है और M3 रेडियो मनोरंजन पर और टिकटॉक पर भी आप हमें देख पा रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं। मजा आता है जब जितना लोग बाते
1: नहीं बुझाता, नहीं अच्छा लगा था।
0: बुझाता कब भागब से हैजा से? हाँ नहीं,
1: कपार दुखाता, बोला था कपार दुखाता, तो तनी हल्ला करो सगरो सब कोई के बताओ, तनी बोला था
2: नहीं
1: नहीं हल्ला नहीं अच्छा लगा था। थपरी बजावा तनी हमार खातिन, जोर से थपरी बजावा, मोरिस भर सुनत हवन सब कोई के। कैसन बुझाता दादी, कैसन बुझाता?
2: अच्छा
1: बुझाता दादी, तनी रिफ्लेक्स शो में हवन आले बहुत अच्छा। अभी तनी नचावब सब कोई के, चला है नहीं ना, नीतू बोला था नहीं नाची।
0: देखा अभी बखत बा मामा,
1: हाँ
0: अभी तनी सुन, जोली जोली जो सलबहार गीत वन बातें उनकर जो यादवा बातें ताजा हमनी करत है सा।
1: सचे
0: बहुत जोली गीत बा लता जी के गावल, दिल अपना और प्रीत पर आया कौन गीत बोला था? हाँ हाँ ये गीत है, हम नहीं गाब शोभा जी गायन, ताली मारन कर खातिर।

0: क्या बात है, अजीब दास्ता है ये, कहां शुरू है जन खत्म नहीं होला, जन सिलसिला हमने शुरू कर लिया जा, सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ। और आज SSR रिक्रिएशनल सेंटर बेलमा में आए हुए हैं पूरी टीम, एक बार फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, अजीब दास्ता है ये, गिनी
1: कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको समझ में आया कि खत्म कहाँ हुआ और शुरू कहाँ हुई?
2: खत्म नहीं मालूम।
1: इनको देख के ऐसा लगता है ना कि घर पे अंकल को बहुत एंटरटेन करती होगी, गाना गा गा के, खाना बनाते बनाते। किचन में आप गाना गाते हो?
2: मैं टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ता तो
1: गा गा के पढ़ाती थी बच्चों को।
0: एक बात मेरे दिमाग में आया है, ये अभी बात कर रही है खाना बनाते बनाते, तो मैं भी कुछ लाई हूँ,
1: किचन में घुस जाएं?
0: चलो
1: मैं आलू लेके आती हूँ, आलू ले लो,
0: आलू ले लो। चले कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो नहीं कहूंगी, लेकिन मजेदार होने वाला है यहाँ पर। गिनीशा जो है अपना बैग टोकरी, अरे बाप रे बाप, तोतमा में कुछ लेके आई ला मामा, आलू कुछ पकाई बा?
1: अभी पकाने की बारी नहीं है, अभी गेम
0: है,
1: गेम शुरू हो जाएगी जहाँ पे हमें चाहिए होगा। इस बार अंकल्स को उठाएं?
0: Why not? क्यों नहीं?
1: हाँ मुझे चार अंकल चाहिए। हेलो जी, हाउ आर यू, आप ठीक हो? आ जाइए। हाँ जी, सब्जी खरीदने जाने, आलू लेने जाने, चलो एक दो कौन तीन चार, चार चाहिए। यहाँ पे भी जो अंकल बैठे हैं अभी आ जाइए, तीन चार।
3: गिनीशा तुम हाँ तो ऐसे बोल रही हो, मुझे चार अंकल चाहिए, आंटी बोलेगी चुपचाप बैठो यहीं, कहीं नहीं जाना है।
1: मैं सब्जी मंडी लेके जाऊंगी ना, आलू लेके जाऊंगी।
3: हाँ वही आंटी,
1: चलो पांच कर लेते हैं। डीटू बोलते हैं पांच चाहिए, पांच पांच चाहिए, पांच। चलो एक दो तीन चार और पांच,
0: एक और
1: चार, पांच हो गए। पांच हमारे अंकल, आप लोग यहाँ पे आ जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए, पीछे थोड़ा पीछे, अंकल जी थोड़ा पीछे। अपना नाम बताइए।
4: राज।
1: राज। और आपका?
4: रमेश।
1: रमेश। और
4: रेखराज।
1: रेखराज, सभी आर से ही है, राज रमेश रेखराज। और आपका?
4: विजय।
1: विजय। और
4: विष्णु।
1: विष्णु डबल।

0: V और ट्रिपल R मिल गए हमें। आप लाइन में खड़े हो जाइए, गेम तो हम शुरू करेंगे। स्कूल में होते थे तो हम गेम खेलते थे, आपको याद है? आप ये चम्मच ले लीजिए, 2, 3, 4 और 5। बाकी हमारे लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं ऑन रेडियो, हम याद दिला दें कि आप लोग हमें लाइव देख सकते हैं ऑन टिकटॉक और M3 रेडियो मनोरंजन। इसको इस पे रखिए, 2, चलिए आप भी रखिए अपना आलू चम्मच पे ऐसे। बहुत खेला है ना हमने ये स्कूल में, क्या करना है आपको पता है ना? आंटी जी आप थोड़ा पीछे हो जाइए, अभी से ही अंकल आप आलू गिरा रहे हैं। आंटी जी ये आपने क्या कर दिया?
1: आंटी को देखकर अंकल के आलू गिर गए। अरे जोक था।
0: अच्छा था, पर आपको पता है ना क्या करना है? देखो चम्मच को ऐसे पकड़ना है, बिल्कुल टिप पे ऐसे, दूर बिल्कुल टिप पे ऐसे ना पकड़ के हाथ सीधा रखो, सीधा रखो, फिर चलना है ऐसे, दीपशिका की तरफ जाना है, ऐसे ऐसे ऐसे बिल्कुल चलना है, ये गिरना नहीं चाहिए। ओ माय गॉड, फिर इसको ऐसे घुमाना है और लेके जाना है। ये आपको 3 बार करना है, ठीक है? 3 बार, ओके? थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाए, इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए अंकल। हाँ जी, लाइन पे खड़े हो जाइए, बिल्कुल ठीक है। चलिए म्यूजिक बजेगी और हम कहेंगे 1, 2, 3, हाथ स्ट्रेट। अंकल जी, अंकल जी तो गॉसिप कर रहे हैं।
1: जितने लोग, गिनीशा मैं बता दूं, ये रेडियो पर भी जा रहा है, तो जितने लोग हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे अंकल अभी हाथ में आलू और चम्मच लिए खड़े हैं
0: सीधा,
1: और बस
0: ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए,
1: टाइम की रेसिंग,
0: ये बिल्कुल सीधा ऐसे हाथ रखना चाहिए। स्कूल की याद दिलाऊंगी अभी, देख लेना, ठीक है? चले म्यूजिक, 1, 2, 3, चलो चलो चलो,
1: तालियां बजाइए, तालियां बजाइए,
0: हाथ सीधा रखो, हाथ सीधा रखो। 1 मिनट म्यूजिक, नहीं म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक बंद करो। आप ड्राइविंग करते हो? आप ड्राइविंग करते हो?
1: नहीं, ड्राइव, डू यू ड्राइव?
0: आप ड्राइविंग कर लेते हो? आप गाड़ी ड्राइव कर लेते हो? सबके पास है ना लाइसेंस? अंकल के पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी सीधा चला रहे थे। ये लोग गलत चला रहे हैं, गाड़ी ऐसे चला रहे हैं और यहाँ पे आके ऐसे ऐसे ऐसे करके कहाँ जा रहे थे? गलत लेन में क्यों घुस रहे हो आप? आप सीधा चलाओ ना, अपने हाथ को ऐसे सीधा रखो, सब अपने अपने लाइन में, ठीक है? अंकल जी आप वहाँ उस अंकल के पास, आप इस वाले अंकल के पास, आंखें बंद करके इस वाले आंटी के पास, ज़्यादा देखना नहीं आंटी को, ठीक है?
1: और आप भी हो जाएगा,
0: दीपशिका के पास जाना, सिर्फ जाना है, हाँ। और आप इस वाले आंटी के पास, सब अपने अपने लाइन में, और जब वहाँ पे पहुँचोगे फिर ऐसे टर्न करके हाथ बिल्कुल सीधा रख के आप चलोगे, ठीक है? चलिए म्यूजिक, 1, 2, 3, ताली बजाएं।

0: मिस्टर राज के लिए भी जोरदार तालियां, और नंबर तीन के लिए आगे विजय जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, और हमारे दोनों अंकल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वर्ल्ड ऑफ नेचर की तरफ से, ये नंबर वन के लिए, ये आपके लिए ये तोहफा वर्ल्ड ऑफ नेचर की तरफ से, आपके लिए भी। अच्छा रत्ना बोल रहे हैं हमारे आलू वापस तो दे दो,
1: हमारे चम्मच, हमारे आलू।
0: और ये आपके लिए, थैंक यू सो मच। ये आपके लिए, थैंक यू सो मच। और ये हमारे विनर के लिए, थैंक यू।
1: आलू घर ले जा सकता हूँ, अंकल बोल रहे मैं आलू घर ले जा सकता हूँ क्या?
0: चम्मच भी,
1: चम्मच भी चाहिए, आलू भी चाहिए। हाय रब्बा, नहीं मिलेंगे, सॉरी अंकल।
0: जो हमने आपको दिया है ना, वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इट्स वर्ल्ड ऑफ नेचर की तरफ से। योर हेल्थ आवर नेचर, क्लोजर टू यू, टू बेटर सर्व यू, विजिट आवर न्यू शॉप जो है, खुलने वाले हैं, खुल गई है आज जॉन कैनेडी स्ट्रीट रोजिल में। वहाँ पे आप जा सकते हैं, आप डिस्कवर कर सकते हैं अ वाइड रेंज ऑफ आयुर्वेदिक हर्बल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। सो थैंक यू सो मच टू आवर स्पॉन्सर वर्ल्ड ऑफ नेचर के लिए भी जोरदार तालियाँ हो जाए। सारे अंकल तो बड़े खुश दिख रहे हैं, मुझे भी गिफ्ट मिल गए, मुझे भी गिफ्ट मिल गए। हमने आलू भी चला लिए, लेकिन अब क्या, अब हमारे पास नेक्स्ट। अच्छा वो बोल रहे हैं कि अभी हाँ बहुत कुछ है, तो चलिए याद दिला दिए, द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक, आप हमें देख सकते हैं ऑन आवर एन थ्री रेडियो मनोरंजन पर। जी हाँ दोस्तों, क्या आप लोगों को मजा आ रहा है? नहीं मजा आ रहा है, चिल्लाएंगे नहीं तो मुझे मजा नहीं आता है। मजा आ रहा है? हाँ अब मज़ा आ रहा है मुझे। तो थैंक यू सो मच, आप लोग अपना प्यारा सा वक्त निकाल के हम लोगों का साथ दे रहे हो। हम लोग अच्छे अच्छे वक्त बिताते हैं, बोलते हैं सुहाना सफ़र हमारे अपनों के साथ। पता है अपनों के साथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप लोग जो है हमारे अपने हैं। आप लोग नहीं होते हैं तो हम भी नहीं होते, और ये जो आर एम थ्री रेडियो मनोरंजन है, ये आपका रेडियो है। तो ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे पूरे टीम के लिए, जो दिन रात मेहनत करते हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और फिलहाल के लिए नीटू इज़ ऑल सेट। यस, गाना गाने वाली है नीटू, जोरदार तालियां हो जाए नीटू के लिए।
2: मैं चाहूंगी कि आप लोग यहां पर आए, मैं गाऊंगी, आप लोग भी डांस करते रहना, ठीक है? आइए।

0: बात है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरा नाम है नीतू, चिंचिंचू तो नहीं हूँ लेकिन बड़ा मजा आ रहा है। आप लोगों को मजा आया? क्या बात है, ये तो है सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ। और हमने जाए लाजा सगरो जाए लाजा, हर महीना के जन अंतिम जन शुक्रवार है, हमने जाके तो लोग संगीत नहीं सुनना निमन जन बखत बातें वो हमने मनाए लाजा।
1: वाकई मुझे, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं नीतू को बोल दूं कि प्लीज रुको ना, नहीं है अभी, आप क्यों रोके?
0: मैं फिर से गाऊं?
1: हाँ, चिन चिंचू नहीं लेकिन कुछ और।
0: क्या?
1: मुझे नहीं पता, कुछ और। आंटियों को तो बहुत मजा आ रहा था, हाँ कि नहीं? और ये वाली आंटिया है, क्या मस्त नाचते हैं। थैंक यू सो मच आंटिया, बहुत अच्छा ना। हाँ, सॉरी,
2: नाट्यम, आई एम एन एजुकेटर ऑफ भरतनाट्यम।
1: तो आपके पास ऐसा कोई एक म्यूजिक है जो अभी आप कुछ हमारे लिए पेश कर सकते हो? कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, मन से आप डांस करोगे ना हमें समझ में आ जाएगा। चलिए आप नीतू के पास चले जाइए, देखते हैं कि अभी आप क्या पेश करेंगे हमारे लिए। अंकल जी, आपको मजा आ रहा है? अंकल जी तो बैठ गए ऐसे खुजला, अरे हाय वाह, सारे लेडीज नाच रहे थे और हम खूब बड़े मजे से देख रहे थे। थैंक यू सो मच, इसी को तो बोलते हैं जीना, इसी का नाम होता है। आप लोग मुस्कुराइए, जिए और जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि आज आखिरी दिन है, कल क्या होना है किसने देखा। बस आप आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन के साथ एंजॉय करते जाइए। और अभी रत्ना दी, क्या है आपके पास?
3: तुम्हें पता है गिनीशा, आज एक ऐसा जमाना है जहाँ पर सब और खिचड़ी ही खिचड़ी है। आपको आपको खिचड़ी अच्छी लगती है?
1: बहुत।
3: आप में से कितनों को खिचड़ी अच्छी लगती है खाने के लिए? हाँ, खिचड़ी बहुत हेल्दी होती है। खिचड़ी खाने में हेल्दी होती है लेकिन दिमाग में खिचड़ी पके तो वो आपका नुकसान करती है। चलिए, यहाँ पर एक गाने की खिचड़ी हुई है जिसके आज के ज़माने में मैशअप कहा जाता है, और ये पुराने ज़माने के गानों का मैशअप है। होप आपको अच्छा लगेगा। एक ऐसा म्यूज़िक है जो दिल में बहुत प्यार जगाता है। यहाँ पर
1: आंटी जी जो है तैयारियां में लगी हुई है। अच्छा, पद्मावत। लेकिन नहीं, आपने म्यूजिक चूज कर लिया वहां पे? कौन से म्यूजिक पे आप डांस करोगे?
3: चलिए, गाना जब तक चूज हो रहा है उनके लिए, मैं उनको एक बहुत ही प्यारा सा मैशअप लेकर आए हैं यहाँ पर, होप आपको पसंद आएगा।
1: आप रुक जाइए आंटी जी, ये हमारे जो रत्ना दी है ना, कुछ गाएंगे अभी सभी लोगों के लिए और उसके बाद आपकी बारी आएगी।

0: आशा करती हूँ ये मैशअप आपको पसंद आया होगा और बिल्कुल यहाँ पर मज़ेदार कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों को मज़ा आ रहा है? नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा आ रहा है? हाँ, ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ गिनीशा है, दीपशिका है और नीतूषा बनी हुई है
1: यहाँ पर। वर गिनी और रत्ना, आप जब गा रही थी तो हमारी यहाँ पर जो कैसे मोरीना मोरनी की तरह आपने डांस किया है,
0: मोरनी की तरह नाची हैं आप।
1: मिसेज अग्निहोत्री, तो चलिए मिसेज अग्निहोत्री के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
2: और आपके लिए एक गिफ्ट, थैंक यू सो मच। वो आप पूछ रहे ना कि मज़ा आया या नहीं, मैं तो वहाँ पे खड़े होके देख

0: रही थी आंटी को, कितने ग्रेसफुली आप डांस करते हो आंटी जी, आप बहुत अच्छा डांस करते हो, थैंक यू सो सो मच। फिर से एक बार जोरदार तालियां स्पेशली हमारी आंटी के लिए। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दोस्ट जो हमें देख रहे हैं लाइव ऑन टिकटॉक और M3 रेडियो मनोरंजन। बाकी जो हमें सुन रहे हैं, आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, घर जाके बच्चों को बोलना ज़रूर कि हमारे पेज को हमेशा फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारे आर्जेस हमेशा लाइव होते हैं, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे शोज़ लेकर आते हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं सर शिव सागर और अंगुलम रिक्रिएशनल सेंटर बेलमाव में आपका साथ देने के लिए। आप लोग इतने दूर से, वाकवा से, काटबोन से, हर जगह से आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, जब महीने के लास्ट फ्राइडे होते हैं, हम हमेशा निकलते हैं कहीं ना कहीं मॉरिशस में, किसी में कोने में जाते हैं आप लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि आप लोग हमारा अपना, जो बोलते हैं ना, अपनों का सफ़र, तो ये सफ़र हम जारी रखेंगे। और अभी के लिए नीटू जी, हमारे पास क्या है?
1: हमारे पास है तो बहुत कुछ, लेकिन है हमारे पास कौन? श्रीमती शोभा जी, अभी उनका गावल जन गाना पसंद कर ले रहला ना, तो एगो जो दूसर गीत अभी गायन जा, जो आशा जी गैले हवन, वह आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है यही है, ये है सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ। आज हम आए हुए हैं SSR रिक्रिएशनल सेंटर बेलमाव में, जोरदार तालियां शोभा जी के लिए।

0: बात है, जो भी है बस यही एक पल है और इस पल को हम खूबसूरत बना रहे हैं। सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ। शोभा जी इधर आइए।
1: दरा दिया आपने उनको बहन।
2: शोभा जी बढ़ा रही है शोभा इस कार्यक्रम की।
0: तो चलिए, इसी बात पर आपको दिया जा रहा है नेचर, वर्ल्ड ऑफ नेचर की तरफ से आपकी सेहत, हमारे जो पर्यावरण नेचर के लिए ये जो छोटा सा गिफ्ट है आपके नाम करते हैं। एंड आपको बता देते हैं कि आप इनका जो उनकी जो शॉप है, न्यू शॉप है जॉन कैनेडी स्ट्रीट रोजिल में, जहाँ पर आप बहुत सारे जो आयुर्वेदिक हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां शोभा जी के लिए।
1: और अभी जैसे कि नीटू आई ना मेरे पास, जैसे वो आ रही थी ना मेरे पास, मेरे को पता चल गया कि अभी गेम की बारी है। अभी हम फिर से गेम शुरू करेंगे, थोड़ा और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए बुलाते हैं लेडीज़ को, इस बार लेडीज़ को बुलाते हैं। आई नीड 6 आंटीज़, 6 आंटियाँ चाहिए मेरे को। आ जाइए आंटी, आप भी आ जाइए।
2: मैं यहाँ पर गिनी शाह से कहना चाहूँगी, जिन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया है उनको नहीं, दूसरों को
1: तो नहीं आ रहे ना, मैं बुला रही हूँ, नहीं आ रहे।
2: आइए आइए, प्लीज प्लीज
1: आप आ जाइए। नहीं, आप भी आ जाइए।
2: गिफ्ट मिलेगा आंटी, गिफ्ट मिलेगा।

0: नहीं
1: जोली लगत हवा हो ई चलो तनी नाचब स इतना जोली साड़ी पहन के आल हवा बैठे रह तो कैसे काम चली हो कैसे काम चली
0: कहाँ से आंटी
2: कहाँ
0: से कार्डबोन से आ जाइए कार्डबोन वाले बड़े हिम्मत वाले होते आ जाइए आप भी कार्डबोन से आ जाइए कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छ हो गए नहीं छ छ चाहिए छ
1: छ
0: only six तो नाम बताइए अपना
2: उमी
0: उमी और आप
2: धनवंती चाकू
0: धनवती
3: विना गोकुल
0: विद्या जी और
4: मीला नरनकुल
0: मीला
5: अनिता रामस
0: अमिता
6: संगीता
0: संगीता ठीक है अभी हम क्या करेंगे आंटी आपने बोला ना कि डांस कर सकते हो आप लोगों को डांस करना आता है कोई बात नहीं हम सिखाएंगे हम सिखाएंगे म्यूजिक बजेगा तो घर पे तो सभी लोग काम करते ही हैं हमेशा हम सारे अंकल्स को बुलाते हैं इस वाले डांस को करवाने के लिए लेकिन आज आंटियां को बुलाए क्योंकि हमें पता है कि आंटियां जो होती है ना झाड़ू जो है अच्छे से लगाते हैं घर पे झाड़ू कैसे लगाते हैं दिखाइए अब मेरा स्टाइल ये है झाड़ू ठीक है एक हाथ से ही लगाते हैं लेकिन ऐसे भी करना चाहिए ठीक है ये मेरा स्टाइल है ठीक है और आपने कभी अंकल को देखा है जब हमारे गार्डन में ना जो लेअप होते हैं ना ग्रास होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कैसे काटते हैं सिजाई से कैसे काटते हैं हाय हाय आंटी आप भी काटो काटो आंटी काटो लेकिन मेरा स्टाइल ये है आंटी सही कर रही है आप सही जा रहे हो सही और जब बल्ब जो होते हैं ना वो जल जाते हैं खराब हो गया घर पर तो कैसे चेंज करते हैं बल्ब एक ही हाथ से दोनों हाथ से बल्ले बल्ले थोड़ी करना है ठीक है ऐसे ये मेरा स्टाइल है ठीक है अब मैं बोलूँगी बालिए मतलब झाड़ू लगाना कुपे मतलब कुपले अब और विसे विस ग्लोब ठीक है चलिए म्यूजिक 1 2 3 बालिए बालिए बालिए रुको रुको रुको रुको रुको रुको आंटी बालिए आंटी अभी से आप काटने लग गए रुक जाओ ना इतने भी जल्दी क्या है पहले घास को तो करने दो पहले घर को साफ करेंगे ठीक है ओके म्यूजिक आप कहीं पे भी झाड़ू लगा सकते हो बालिए रुक जाओ आंटी आप इनके पीछे पीछे झाड़ू क्यों लगा रहे हो पीछे कुछ है क्या नहीं दिखाओ तो सही है आंटी आपके पीछे पीछे झाड़ू लगा रही है और ये वाली आंटी है ना ऐसे
1: दिनिशा पता है क्या हो रहा है यहाँ पर मेरा कचरा उनकी तरफ यही हो रहा है
0: आंटी,
1: मतलब
0: ये
1: अपना कचरा पड़ोसियों की तरफ फेंक रहे हैं
0: गलत बात है ऐसे नहीं करते हैं और ये वाली आंटी है ना मैंने कभी ऐसा लाइफ में नहीं देखा पूरी दुनिया घूमी हूँ मैं लेकिन कभी नहीं देखा कोई ऐसा झाड़ू लगाते हैं बल्कि वो उर यहाँ से जा अच्छे से लगाओ ना ठीक है चलिए म्यूजिक बालिए हाँ हाँ जोरदार तालियां हो जाए कुपे सब मेरे पास क्यों आ रहे हैं मतलब मेरे आंगन का गाजों इतना भरा हो गया है कि सब मेरे ही पास क्यों आ रहे हैं अरे आंटी वहाँ पे आप जा सकते हैं अपने घर में जा सकते हैं कहीं और जा सकते हैं मेरे पास क्यों कहीं अंकल जी थोड़ा अपनी तरफ खींचो उस तरफ म्यूजिक कुपे कुपे कुपे कुपे कुपे कुपे कुपे कुपे हाँ कुपे कुपे कुपे वाह आंटी वाह कुपे कुपे कुपे हाँ अरे मेरी जान आहा ओहो ओहो आले विसे विसे विसे विसे विसे रुको इतना मजा आ गया काटने में भाई साहब ये तो सबके गाजों काट रही थी वहां से यहाँ तक
1: सभी के पड़ोसियों का वो काट रही थी पूरा मतलब सफा चट कर दिया
0: रत्ना में पीछे पीछे गई इस आंटी से लेकर
1: सभी का शुरू कर दिया हाँ सभी का
0: आंटी आप तो बहुत ही मजेदार आंटी हो चले विसे म्यूजिक विसे विसे विसे विसे विसे कमर को हिलाओ

0: Badri, badri, na kuage bhauji. Badri, badri, na kuage bhauji.
1: Kupe, anti kupe, kupe, anti kupe, anti kupe. Kupe, anti kupe, kupe, kupe, kupe, kupe.
0: Oh ho.
1: Kupe, kupe. वाह आंटी वाह जोरदार तालियां हमारे सारे आंटियों के लिए कि मजा आ गया। आंटी आपका नाम क्या है?
2: लीना।
1: आप लोगों को ना इनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। झाड़ू भी लगाती हैं, जो हमारे बल्ब है उसको भी चेंज करती है, लेकिन क्या काटती है भाई,
2: क्या घास काटती है।
1: वही वही
2: स्पेसिफाई करो, रेडियो पर लोग सुन रहे हैं, पता नहीं बोलेंगे ये क्या काट रही है।
1: सच्ची में आंटी कहाँ से सीखा आपने? मतलब सभी लोगों का घास काटती है आपने बोला ना।
2: हाँ, घास घास निमन से काटे रहो। इतना निमन से काटे।
1: वहां पे गई ना तो सब अपने अपने पैर भी हटा रहे थे कि हमारे पैर ना काटे। बहुत ही मजा आया, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए हमारे लेडीज के लिए। एंड यस, सभी लोगों के लिए हमारे पास एक छोटा सा गिफ्ट है वर्ल्ड्स नेचर शॉप की तरफ से। थैंक यू सो सो मच। आपका नाम?
3: उमी मुत्तुस्वामी।
1: उमी मुत्तुस्वामी, हाय हाय। थैंक यू सो मच। आप भी दीजिए ना, आपके लिए भी एक और हम लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो सो मच, बहुत ही मजा आया। घर पे जाके बच्चों को जरूर बताना कि इस वाले आंटी ने कितना घास काटा है आज। माय नेम गिनीशा, गिनीशा
3: जोली नो।
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और अभी रत्ना जी क्या है नेक्स्ट?
2: बिल्कुल, हम बताते चले एक बार फिर कि ये जो वर्ल्ड ऑफ नेचर शॉप है वो एक नई दुकान है, एक नया शॉप है जो खुला है जॉन कैनेडी स्ट्रीट रोज हिल में। और बिल्कुल आप जाकर वहाँ डिस्कवर कर सकते हैं आयुर्वेदिक और हर्बल और साथ ही साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो बिल्कुल एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे स्पॉन्सर्स के लिए जो ये गिफ्ट आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है। और इसी के साथ मज़ेदार गिफ्ट के साथ मज़ेदार कार्यक्रम, वैसे यहाँ पर गाना तैयार हो रहा है, तब तक हम बात करना चाहेंगे। कैसन बुझाता प्रोग्राम बलाता तनी?
4: बहुत बहुत सुंदर,
2: बहुत सुंदर। और कैसे कहाँ से आल हुआ पहले तो यही बतावा।
4: कतरेबोन से।
2: और हैजा पर कैसन कितना दिन के लितुबा?
4: तीन
2: तीन दिन के। कैसा आपको कैसा लग रहा है?
4: वेरी अच्छी।
2: वेरी अच्छी, यानी इंग्लिश भी और हिंदी भी वेरी अच्छी, बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलिए अभी थोड़ी देर में हम भोजपुरी गाना बजाएंगे, आपको हमारे साथ नाचना होगा, डांस करना होगा। और बिल्कुल चलिए यहाँ नीतुषा कौन सा गाना आ रहा है अभी?
5: वेल मिस्टर पताना जो एक बहुत ही खूबसूरत गाना अभी गाएंगे, जब दीप जले आना जब शाम ढले आना, जाना नहीं बस आना है। तो चलिए इस गीत को आप भी हमारे साथ गुनगुनाते चले, जितने भी हमारे लिसनर्स साथ दे रहे हैं।

0: दीप जले आना, जब शाम ढले आना, आप दिल से पुकारेंगे तो वापस आएंगे, क्यों गिनी क्यों रत्ना, हम तो बार बार आना चाहेंगे ही। और आज हमको मौका मिला है SSR यानी कि जो रिक्रिएशनल सेंटर है, जहाँ पर बेलगोज सीनियर सिटीजन एक ख्वाहियों से भी आए हुए हैं, हमने देखा मिस्टर राम जतन उनके भाई भी हैं, सो आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
1: बिल्कुल, यहाँ पर हम लाइव हैं और इसी के साथ रेडियो मनोरंजन की सारी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। यहाँ दीपशिका हमारे साथ है, गिनीशा है, इखलास है, डोमिनिक अवी दाऊजी है और हमारी टीम यहाँ से साथ दे रही है और स्टूडियो से वेदिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। वैसे पूरे मॉरिशस भर में तहलका मचा हुआ है क्योंकि आज हम आए हैं सुहाना सफर के कार्यक्रम में।
0: लेकिन बोलना नहीं चाहिए नर्मदा को भी, हमारी जो हेड है साथ में निष्ठा ने, पूरे टीम को, मार्केटिंग टीम को भी बहुत

0: बहुत बहुत धन्यवाद.
1: एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दोस जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला. हमें देख रहे हैं लाइव ऑन टिकटॉक. पता है नीटू, बहुत सारे लोग ना मॉरिशस के बाहर भी बैठ के ये शो को लाइव देख रहे हैं. सो थैंक यू सो मच और कीप ऑन फॉलोइंग ऑन टिकटॉक आवर एंट्री रेडियो मनोरंजन.
0: और भूलना नहीं चाहिए गिनी, यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ नेचर, यू हैव आवर नेचर. और इन्होंने अपनी जो नई दुकान खोली है एट जॉन कैनेडी स्ट्रीट रॉसिल, जहाँ पर आपको बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ आयुर्वेदिक हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वहाँ पर आपको मिलेंगे. और आप हमारे जितने भी बुजुर्ग बड़े हैं उनको भी बहुत सारे जो गिफ्ट्स मिले हुए हैं. सो बहुत बहुत धन्यवाद वर्ल्ड ऑफ नेचर.
1: स्पेशली अ बिग थैंक्स गोज टू सर शिवसागर और रंगुराम रिक्रिएशनल सेंटर के जितने भी स्टाफ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा यहाँ पे वेलकम करने के लिए.
2: एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए जो आपकी दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, आपको गर्मा गर्म खाना परोसते हैं आपके लिए. मतलब कह सकते हैं कि ये 3 दिन आप पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम कहाँ आए थे. एक बहुत ही बढ़िया ब्रेक मिल जाता है.
1: बिल्कुल जी, ये है सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, यानी आप लोगों के साथ. फिलहाल के लिए मुझे पता है जितने भी अच्छी चीज की शुरुआत होती है ना, उसका अंत भी होना पड़ता है. एंड स्लोली स्लोली वी आर मूविंग टू द एंड ऑफ द शो. लेकिन उससे पहले धमाकेदार परफॉर्मेंस होना चाहिए कि नहीं? सभी लोग तैयार हैं नाचने के लिए? ये हाँ हाँ हाँ, क्या है, नाचने के लिए तैयार हो? जोर से बोलो, नाचने के लिए, हमारे साथ झूमने के लिए तैयार हो? बिल्कुल. तो
0: हम नियोग तैयार है सर. सब कोई के बहुत धन्यवाद. हेला
1: जोरदार तालियों के साथ.

0: बिल्मा की रिक्रिएशन सेंटर में सुहाना सफर, पूरी टीम वहां पर थी, उनको थैंक यू कहना चाहेंगे। चलिए इसी के साथ समय हो गया है बढ़ने का समाचारों की ओर।
1: टाइम चेक 2 PM।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। प्रधानमंत्री ने बालाकलावा में अंतर्राष्ट्रीय यूरोलॉजी कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण में हिस्सा लिया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सेहत के क्षेत्र के कर्मचारियों को ट्रेन करने की अहमियत पर जोर दिया, खासतौर पर आधुनिकीकरण की दिशा में। सरकारी नेता ने कहा कि अस्पतालों में दर्ज संक्रमण दर बढ़ती जा रही है, इसलिए अब महारत बांटना और जरूरी हो गया है। इस मौके पर दुनियावी सतह पर मशहूर यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर महेंद्र भंडारी को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को मृतक ऑर्गन डोनर के बारे में भी विचार करना चाहिए। छोटे टापू देशों की मजबूती को और बढ़ाने के लिए मौसमी खतरों का संचालन करना, इसी मकसद से आज रेस आइलैंड्स परियोजना को शुरू किया गया। ये अफ्रीका के छोटे टापू देशों के आयोग की पहल है। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला चौथा देश मॉरिशस है, जिसके लिए ग्रीन फंड से वित्तीय मदद मिल रही है। सरस्वती मुचिया के कत्ल के मामले में नई बात सामने आई है। मेजर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनकी बहू और उनके भाई को गिरफ्तार किया। ये शक किया जा रहा है कि मृतक के भाई 54 साल के प्रीतम और 29 साल की उनकी बहू खुशबू उनकी हत्या की साजिश में शामिल हुए होंगे। याद रहे पिछले जुम्मे को थ्रियोले में अपने ही खेत में सरस्वती मुचिया को बेजान पाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक गला घोंटकर उनका कत्ल किया गया होगा। फिलहाल जाँच जारी है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आमसभा के संदर्भ में विदेश मंत्री रितेश रामफल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलसिले में एक डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए। इस पहल से नवीनीकरण, निवेश और टेक्नोलॉजिकल तरक्की के मैदानों में नए सहयोग होंगे। और आज से पोप लियो 14 फ्रांस के दौरे पर होंगे। पेरिस में एक बड़ी मास सभा लगाई जाएगी, जहां आधे मिलियन से ज्यादा लोग हिस्सा लेने वाले हैं। प्लास डे ला कोंकोर्द, आर्क दे ट्रायंफ और शांज़-एलिज़े में के इलाकों में हिफाजती वजहों से पुलिस की घेराबंदी है। आज फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा ओरली हवाई अड्डे पर पोप लियो का स्वागत किया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play.

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Geet, Nritya aur Parampara.
4: की ओर से आप सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत है। हमारी टीम में आज उरूसा जी बैठी हुई हैं, साथ दे रहे हैं कविश और प्रोडक्शन सीट पर बैठे हुए हैं रितेश महावीर जी। आज हम गीत और

0: नृत्य पर बात ना करके संगीत के बारे में चर्चा करेंगे, और संगीत में भी एक वाद्य यंत्र आता है तबला, उस पर हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की अतिथि हैं वर्षा रानी वुजागिया, और एक इस तरफ बैठी हुई हैं कथक करने वाली, और पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं, बेला रामधारी जी, आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप दोनों MGSSS की टीचर्स हैं, अध्यापिकाएं हैं, और आप वहाँ पर नृत्य सिखाती हैं, आप वहाँ पर गीत संगीत से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि संगीत आपके लिए क्या है।
1: नमस्कार। मेरे लिए संगीत न केवल मनोरंजन है बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम है, और संगीत मन को अवश्य रूप से शांति देते हैं और हमें अपने संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हैं। और ऐसे भी होता है अगर हम लोग कुछ कहना चाहते हैं और हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो संगीत के द्वारा हम उसको व्यक्त कर सकते हैं।
0: सुंदर माध्यम है संगीत अभिव्यक्ति के लिए।
1: जी,
0: शास्त्रीय नृत्य में, शास्त्रीय संगीत में कौन कौन से मुख्य वाद्य यंत्र जो प्रयोग किए जाते हैं?
1: दरअसल संगीत जो क्लासिफिकेशन ऑफ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो चार भागों में विभाजित हैं। जो पहला आता है वो है अवनद वाद्य, यानी कि मेम्ब्रानोफोन इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद आता है तत्वाद्य, घनवाद्य और सुशील वाद्य। जो तबले, ढोलक, ढोलकी हैं ये सब मेम्ब्रानोफोन जो अवनद वाद्य में उसमें आता है। तब तत्वाद्य में जैसे सितार है, वीणा है, वायोलिन है, इसमें आता है। और सुशील वाद्य बांसुरी, हारमोनिका, ट्रम्पेट, ये सब आता है। और जो घनवाद्य हैं जो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट हैं, इसमें आता है मंजीरा, करताल, चिमटा, झाल। तो हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसमें कई प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है।
0: बहुत सुंदर आपने बताया कि अलग अलग वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में। चलिए अब तबला को केंद्रित करते हैं, क्योंकि आप तबला के विशेषज्ञ हैं, आपने PhD की हुई है तबला में, तो ये एक बहुत बड़ी उपाधि है कि आप डॉक्टर वर्षा रानी वुजागिया हो चुकी हैं तबले के माध्यम से। और यहाँ पर मैं आपको दो गीत सुनवाना चाहूँगी, उसके बाद हमारी चर्चा बिल्कुल जारी रहेगी तबला वाद्य यंत्र पर।

0: संगीत, नृत्य और परंपरा।
1: श्रोताओं, आपने दो गीत एक साथ सुने। एक 1964 का गीत है, वो कौन थी, जो था लग जा गले। और साथ ही आपने दूसरा गीत जो सुना वे 1965 के वर्ष में आया, ओ मेरी जोहरा जबी, जो कि वक्त फिल्म का गीत है। ये दोनों गीत में आपने अगर ध्यान देकर गीत सुना हो तो उसमें तबला बजाया जाता है। प्रश्न मेरा इधर आएगा वर्षा जी से कि आपका झुकाव कैसे तबले की ओर गया, जबकि आप हिंदी पढ़ाती हैं, साथ साथ में आपका झुकाव तबले की ओर कैसे?
2: जो मेरी रुचि है संगीत, वो बचपन से ही रही है, लेकिन धीरे धीरे तबले की ओर मेरा जो विशेष आकर्षण वो बढ़ा। इसकी जो लय बोल, अलग अलग जो ध्वनियाँ हैं, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। और ये प्रश्न आता है तबले ही क्यों?
1: बिल्कुल,
2: अभी ये इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जो मैं बचपन में मेरी जो माताजी के साथ मैं कीर्तन में जाती थी, तो वहाँ पे उस समय मैं 6 या 7 साल की थी, तो हम लोगों को जो लड़के लोग हैं मंडली में, उन लोगों को फोर्स करना पड़ता है कि आ जाओ बजाने के लिए। तो मैं ये सब देखती थी, अरे उन लोगों को वो लोग फोर्स कर रहे हैं, तो मैं ऐसे ही एक ढोलक था, मैं बजाने की कोशिश बिना कुछ सीखे कोशिश करती थी कि गाने के साथ लय के साथ कुछ ना कुछ
1: अकम पे। हाँ,
2: तो मैं सुन सुन के करती थी। तब मेरी जो माताजी, उसने देखा कि मेरी आकर्षण बहुत है इस वाद्य पे। तब CPE के बाद उसने मेरी जो एडमिशन की है वो महात्मा गांधी संस्थान में, सर्टिफिकेट कोर्स आता है तबले में, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ है। मैं फॉर्म 1 में थी उस टाइम, तो सर्टिफिकेट 1, 2, 3 ये सब लगातार हुआ है। तब उसके बाद एडवांस किया है महात्मा गांधी संस्थान में। तब HSC के बाद मैंने BA हिंदी, जो मेरी फर्स्ट डिग्री है वो BA हिंदी में है। मैं तब उसके साथ साथ मैं डिप्लोमा तबला करती थी। तब मुझे चूज़ करना था कि आगे क्या करूं। तब जो मेरी जो लगाव था वो तबले की ओर ज़्यादा था, तो मैंने कहा कि नहीं, हिंदी को न करते मैं आगे नहीं करूँगी, तबले पर ज़्यादा ध्यान दूँगी। तब उसके बाद जो मेरे जो बैचलर डिग्री है यहीं पे मेरा हुआ है फर्स्ट, और मैं पहली लड़की हूँ जो मॉरिशस में BA तबला कि यहाँ पे किया है। और उसके बाद मेरी जो मास्टर्स और PhD है मैंने इंडिया भारत में, जो मेरी यूनिवर्सिटी है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ।
1: बहुत बहुत बधाई इसके लिए कि आप प्रथम महिला हैं जिन्होंने तबला में PhD करके मॉरिशस में अपनी कला को प्रवाह दिया, क्योंकि

0: बहुत कम लड़कियां, जैसे आपने स्वयं कहा कि बहुत कम लड़कियां होती थी, लड़कों को ज्यादा फोर्स किया जाता था तबला बजाने के लिए, तो कहां आपने पाया कि महिला होते हुए आपने कहां इसमें कुछ आकर्षण ना होते हुए जबरदस्ती हो या आपको कोई समस्या आई हो कि आप महिला होते हुए तबला बजाती हैं, किसी ने कोई कमेंट किया हो, किसी ने बुली किया हो आपको, कुछ ऐसा एक, हुआ आपके जीवन में?
1: एक्चुअली वो एक महिला तबला वादक के रूप में जो मेरी यात्रा है बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक तो था,
0: पर कोई चुनौती नहीं आई?
1: वो चुनौती तो जरूर आई, ये जो है कि क्योंकि पहले तो तबला वादन हम लोग मानते थे कि ज्यादातर पुरुष लोग करते थे, और जो मेरी जो पढ़ाई इधर का भी हुआ और जो इंडिया में भी हुआ, क्लास में मैं अकेली लड़की थी, जो तो चुनौती तो आती है।
0: कितने पुरुष थे आपके साथ
1: जो कक्षा में? मेरी जो भारत के जो मास्टर्स क्लास में 25,
0: ओके,
1: और उसमें 25 में 24 पुरुष और मैं अकेली
0: महिला। तो ये एक सराहनीय कदम है कि एक महिला ने अपने कला को ध्यान में रखते हुए अपने कदम बढ़ाए, भारत तक पढ़ने गई और उसमें महारत करके ही लौटी।
1: जो मेरा जो मानना है कि संगीत में कोई भेदभाव तो नहीं होता है, कला केवल आपकी जो साधना है और समर्पण को पहचानी जाती है, ये हम लोगों को ये मानना चाहिए करना है।
0: हाँ, वो अंदरूनी हाँ होनी चाहिए तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। पर आप कह रही हैं कि आपको कोई चुनौती नहीं झेलनी पड़ी कि भाई महिला होते हुए तबला बजा रही हैं?
1: कभी कभार तो होता है, पर क्या करें, हम लोगों को माइंडसेट को एक्चुअली बहुत पावरफुल फोर्स होना चाहिए कि हम लोगों को करना ही है।
0: तबले के साथ कौन से ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो कि एक साथ चलते हैं? हारमोनियम मैंने अक्सर देखा है कि हारमोनियम और तबला एक साथ
1: जैसे कि इंडियन क्लासिकल में शास्त्रीय संगीत अगर हम लोग देखेंगे, अगर तबला का एक एकल वाद्य यानी कि तबला सोलो कर रहे हैं तो हारमोनियम का वो लहरें देते हैं
0: जी।
1: और जैसे कि हम लोग अगर फोल्क का देखेंगे तो तबले के साथ साथ हम लोग मंजीरा, हारमोनियम, कीबोर्ड, वायोलिन, सारंगी, ये सब बजता है। तबले के साथ तो बहुत सारा जो हम लोगों का वाद्य है बजा सकते हैं।
0: शास्त्रीय नृत्य पर हम जाते हैं तो 8 प्रकार के नृत्य होते हैं, उसमें तबले का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में सबसे अधिक होता है?
1: कथक में।
0: कथक में, क्योंकि फुटस्टेप्स होते हैं, पैरों का प्रदर्शन अधिक होता है। मेरा प्रश्न आपकी ओर जाता है कि जब आप कथक करती हैं तो तबले का आनंद, केवल तबला बज रहा हो तो आप कथक कर पाती हैं?
2: जी बहन जी,
0: उसमें क्या आपको बहुत सहूलियत मिलती है कि आप अपने पैरों का प्रदर्शन जो नृत्य का माध्यम है उसमें सशक्त
2: हो सकते हैं? अगर हम कथक नृत्य कर रहे हैं
0: जी,
2: तो वो जैसे कि आपने कहा, सशक्त किस प्रकार बनेगा? तबले की धुन से ही। तो अगर तबला ना हो तो हम शायद उस लय को, उस ताल को
0: पकड़
2: नहीं पाएंगे, अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे।
0: तो
2: तबला हो तो कथक नृत्य जो है पूरा हो जाएगा, आसान हो जाएगा
0: जी। मतलब वो लय ताल आप पकड़ पाती हैं जब तबला बजता है। यहाँ पर मेरा प्रश्न आता है कि एक दायां और एक बायां दोनों एक साथ बजते हैं, उसके प्रारूप पे हम बात करें तो एक थोड़ा सा लंबा होता है, एक गोल मटोल सा थोड़ा छोटा होता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ऊपर भी दो चक्कर होते हैं काले से, आप उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि वो क्या है?
1: एक्चुअली वो तबले अलग अलग भागों में विभाजित है
0: जी।
1: जो काले का जो आते हैं उसको बोलते हैं स्याही
0: जी।
1: वो स्याही किसमें बने हैं? हम लोग वो राइस को, चावल ग्लू को, वो उसको एक पेस्ट बनाते हैं और उस पर हम लोग लगाते हैं इसको सुखाने के लिए।
0: काला रंग डाला हाँ, जाता है, वो काली स्याही डाली जाती होगी हाँ,
1: इसमें आते हैं। तो इसमें ही तब दोनों उसमें अलग अलग ध्वनि उपलब्ध होती है, और जो स्याही अगर बजेंगे उसमें वो क्लोज साउंड आएगा, और जो मैदान और किनार में बजेगा उसमें खुला बाज, हम लोग ओपन बोल वो बजाते हैं।
0: अगर स्याही ना हो तो तबला पूर्ण नहीं होता है।

0: होता है।
1: तो अगर स्याही कहीं से टूट गई है, निकल गई है, तो वो बर्जिंग, असर होता है,
0: बर्जिंग साउंड होता है, तो हम लोगों को पूरा निकाल के उसको चेंज करना पड़ता है। ये स्याही इसमें एक महत्वपूर्ण
1: योगदान है उसका।
0: इसमें एक अगर एक छोटा भी निकलता है इसमें, तो पूरा पूरा परफॉर्मेंस बर्जिंग साउंड आता है इसमें।
1: वो सही
0: साउंड तो एकदम अगर
1: संगीत नहीं आएगा,
0: संगीत नहीं आएगा।
1: और उसकी जो साइड की रस्सियां होती हैं उन्हें भी लकड़ी डालकर, छोटे छोटे लकड़ी
0: उसमें, उसको
1: जो मैंने देखा लकड़ी डालते हैं,
0: गट्टा बोलते हैं,
1: उसको टाइट किया जाता
0: जी,
1: है
0: जी। उसको हम लोग, उस तबले को हम लोग चून करते हैं इसके साथ, वो हथौड़ी के साथ, वो गट्टे को हम लोग, वो अगर पिच के हिसाब से हम लोग चूनिंग करते हैं, अगर नीचे करेंगे तो वो हाई पिच में जाता है, अगर वो एडजस्टमेंट के लिए गट्टे तबले में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट था
1: चीज़ है। और ऊपर से कई लोग चाहे ढोल बजाते हैं, चाहे तबला बजाते हैं, पाउडर का प्रयोग करते हैं।
0: अभी आप ऐसे देख रहे हैं, मेरे हाथ अभी थोड़ा सा स्वेटिंग हो रहा है,
1: पसीना आया हुआ है,
0: वो आता है, वो नेचुरल है। तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा पाउडर लगाते हैं, ताकि अगर पसीने के साथ उस सियाही में बजेगा तो वो जो ब्लैक है वो तो निकल जाता है, हम लोगों के हाथ में चिपका है, तो उस जो पाउडर लगाते हैं उसको प्रिवेंट करता है
1: कि स्याही को,
0: हाँ, ताकि तबले खराब ना हो और हम लोगों का हाथ भी वो अच्छे से हम लोग साउंड भी निकाल सके।
1: चलिए, बहुत सुंदर आपने चीज़ें बताई हमारे। अब गीत, दो गीत हम चलाने वाले हैं, उनको ध्यान से सुनिए, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: गीत नृत्य और परंपरा।
3: श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि आज हमारी चर्चा जो है तबले पर केंद्रित है। हमारे दर्शक, हमारे श्रोता जो अभी अभी जुड़े हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और अभी अभी आपने जो दो गीत सुने उनमें तबले का कितना प्रयोग हुआ ये आपने सुनकर जाना होगा। टाइगर जिंदा है में 2017 में ये फिल्म आई थी और इसमें तबले का खूब प्रयोग हुआ, दिल दिया गल्ला जो आपने अभी सुना, और उसके साथ ही ओरे पिया अभी अभी जो गीत सुना आपने, आजा नचले, वे भी 11 वर्ष पूर्व की फिल्म है। तो कहाँ हमने शुरुआत की 1964 से 2011 तक हम आ चुके हैं, 11 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं कि इसमें भी तबले का प्रयोग कितना भरपूर हुआ। तो वर्षा जी, आप जो आज PhD करके आई हैं, कितनी युवा पीढ़ी को जोड़ पा रही हैं तबले के माध्यम से, और कितनी आज की जो जेंजी कहेंगे वो जुड़ पाते हैं आपके साथ संगीत के माध्यम से?
4: जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को भारतीय शास्त्रीय संगीत और तबले से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगीत केवल एक कला नहीं बल्कि हमारी जो संस्कृति है और विरासत है उसका एक हिस्सा है।
3: बिल्कुल।
4: और जब

0: बच्चे इसे सीखते हैं तो उसमें अनुशासन, एकाग्रता और आत्मविश्वास भी विकसित होते हैं। तो जो मेरा प्रयास है, मैं नई पीढ़ी को परंपराओं को समझने और उनसे जुड़े उनके जो उन लोगों को जो पसंद है, जो गाने वो लोग सुनते हैं, मैं उसी गाने को लेके मैं उसमें तबला डालती हूँ, क्योंकि उन लोगों का गाना भी एकदम अलग है हम लोगों की तरह जैसे हम लोग सुनते थे पहले।
1: इसीलिए मैंने चार अलग अलग समय के गीत बजवाए ताकि लोगों को पता चले कि उस समय 1964 में और 2017 में फर्क नहीं है, म्यूजिक वही है, संगीत वही है, तबले का प्रयोग, हारमोनियम का प्रयोग हर जगह वही हुआ, पर बोलों में फर्क आ चुका है, माध्यम थोड़ा सा और विकसित हो चुका है, पर फिर भी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य में वाद्यों का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे भी ये प्रश्न रहेगा, आपसे भी ये प्रश्न रहेगा कि जब आप कथक करती हैं तो तबले का वाद्य यंत्र जितने भी हैं जो शास्त्रीय संगीत में जुड़ते हैं उसका माध्यम वही है, पर आज बच्चों का झुकाव किसी और ओर जा रहा है, तो उनको जोड़े रखने के लिए आप दोनों से मेरा प्रश्न है कि किस प्रकार हम प्रयास कर सकते हैं कि युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति की ओर खींचे रखें और साथ ही अपनी परंपराओं का निर्वाह करते रहें।
2: शायद जिस प्रकार वर्षा ने कहा, उस संस्कृति को बनाए रखते हुए उसका नवीनीकरण करना, उसको परिवर्तित करना, लेकिन पूरी तरह से नहीं, उनकी रुचि के अनुसार
1: जी।
2: तो अध्यापक पर, अध्यापक की वह शक्ति है कि वह जानेगा कि उसके छात्र किस प्रकार होते हैं, तो किस प्रकार वह
1: उनको ढाल पाएगा
2: या फिर किस स्ट्रैटेजीज का प्रयोग वह करेगा ताकि जो आजकल आधुनिक छात्र हैं जो उसकी कक्षा में रुचि रख सके।
0: मैं कुछ जोड़ना चाहती हूँ इसमें, जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ, हम लोगों के तबले में वो हम लोगों में वो ताल आते हैं, जैसे कि एक सिंपल मैं लेती हूँ दादरा ताल जो 6 बीट्स माना जाता है, धा धिन्ना धा तिन्ना, मैं उन लोगों को ये सिखाती हूँ। तो जो अभी जो आते हैं वरे क्या नहीं करना है, मैंने उनको बोलो एक गाना दे दो, तो वो लोग गाने देते हैं, मैं डालती हूँ, तब मैं यही धा धिन्ना धा तिन्ना बजाती हूँ और वो लोग ऐसे चकित हो जाते हैं, अरे ये कैसे हो रहा है। तो और जो हम लोग जहाँ पे हम लोग काम करते हैं MGSS मौका में, हम लोग नाटक करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोग जैसे कि एक्टिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी तबले का जो म्यूज़िक है उसमें जोड़ते हैं हम लोग। और क्या है ना कि जैसे कि अभी जो मॉडर्न जो फ्यूजन सॉन्ग आते हैं जो रिमिक्स वो लोग करते हैं, तो उसमें भी ये जो धा तिन्ना है उसमें भी हम लोग डालते हैं, तो वो लोग बहुत ही यानी कि सीखने का मन और बढ़ जाता है
1: उनका, उनकी रुचि बढ़ जाती है,
0: क्योंकि यही क्लासिकल हम लोग उन लोगों के गाने में हम लोग उसको डाल रहे हैं, तो उन लोगों को अच्छा लगता है और बहुत पॉजिटिव है कि वो लोग सीखते हैं उसको अच्छे से।
1: कहीं ना जब आप कह रहे हैं तो कईयों को होता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए किसी वाद्य यंत्र के साथ जोड़ा जाता है, कोई वायलिन बजाता है, कोई अपना स्ट्रेस कम करने के लिए सितार माध्यम चुनता है, क्या तबला भी इस थेरेपी में जुड़ पाता है?
0: बिल्कुल, संगीत तनाव कम करने और जो हम लोगों का जो मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक होती है, और जो ताल वाद्यों में वह एक विशेष बात है कि वो जो हम लोगों का जो नियमित लय है और उसके जो जो ध्यान केंद्रित वो जो लय वो जाता है वो हम लोगों को मदद करता है कि फोकस करने का, तो वो स्ट्रेस तो
1: कम हो सकता है, वो एक थेरेपी भी हो सकती है।
0: जी जी,
1: एक रेगुलरली अगर कोई नियमित रूप से
0: संगीत वो और लय का प्रयोग म्यूजिक थेरेपी में हम लोग उसका प्रयोग किया जाता है।
1: बहुत सुंदर आपने बात बताई। क्या लोक संगीत जो हमारे यहाँ पर गीत गवाई है, गम्मट है, उसमें भी तबले का प्रयोग होता है?
0: जो प्रमुख वाद्या हैं जैसे कि गीत गवाई में, गमत में, वो गमत में तो तबला
1: हमने टीवी में देखा कि पहली 2 तारीख को जो गमत दिखाए जाते हैं MBC के माध्यम से वो तबला बजाते हैं, भरपूर तबला
0: है।
1: गीत गवाई
0: में हम लोग ढोलक का प्रयोग करते हैं, पहले तो वो होता है ना ढोलक

0: पूजा करते हैं तब वो लोग शुरू करते हैं। और अन्य लोक ताल वाद्यों का भी प्रयोग होता है, पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो आधुनिक हैं वो लोग और भी इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, जैसे कि गीत गवाए में हम लोग देखते हैं ढोलक के अलावा कोई कहीं तो ढोल भी बजा रहे हैं, वो जैम्बे भी बजा रहे हैं, वो अपने पर ध्यान में रखते हुए जो हम लोगों का जो पारंपरिक वो उसको
1: परंपरा के अनुरूप नहीं है। परंपरा में तो हम ढोलक ही बजनी चाहिए, पर कई लोग वो कोई लकड़ी का डिब्बा होता है वो भी बजाते हैं, कई लोग टेबल पर भी अपना म्यूजिक बजा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तबले के साथ साथ ये भी चल सकता है। भाई जिसके पास तबला नहीं है उसके लिए वो बजाना आसान है
0: नहीं, पर तबला के साथ प्रैक्टिस करना मेरे लिए तो कोशिश करनी चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट पे ही हम लोग प्रयास करें।
1: तो बच्चे जो आपसे सीख रहे हैं आप उनको बताती हैं कि कौन सा तबला लेना चाहिए?
0: जी जी।
1: या कि वे आपके यहाँ आते हैं तब तबले का प्रयोग करते हैं, घर पर उनके तबला ना हो तो वो किस प्रकार अपना अभ्यास कर पाएंगे?
0: जो अभी हम लोगों के जो स्कूल के बच्चे हैं, जो एक क्लास में तो 25-30 बच्चे हैं जिसके पास सभी के पास तो तबले नहीं है क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं, तो क्या करते हैं मैं पहले क्लास में ही उन लोगों को दो जो तबले जो हम लोगों का दायां बायां था वो लोग उसको ड्रॉ करते हैं उसमें पेपर में, जो A4 पेपर में उसको वो ड्रॉ करते हैं, तो वो सही वो मात्रा में वो स्याही ये सब डालते हैं इसमें, और वो मैं बोलती हूँ कि उसमें आप लोग अपने टेबल पे उसको चिपका दीजिए, तब इसी में वो लोग करते हैं।
1: तभी मैंने कहा टेबल का प्रयोग होता है।
0: वो उसमें वो हम वो क्योंकि सभी के पास वो नहीं है ना कि उसमें रुचि है कि आगे करें, क्योंकि तबले का वो कॉस्ट भी ज्यादा है तो सब लोग नहीं
1: कितना
0: करते।
1: होगा अभी एक तबला
0: अभी तो 10,000 के आसपास
1: है। जी, तो सभी के लिए ये आसान नहीं है कि वे अपनी रुचि के लिए एक तबला खरीद पाए।
0: पर अभी क्लास में और भी ऐसे बच्चे हैं जो रुचि बहुत दिखाते हैं, खासकर आजकल की जो लड़कियां हैं, क्योंकि एक वो लोग मुझे भी देखते हैं क्योंकि हमेशा उन लोगों के पास
1: आपने एक उदाहरण सेट कर दिया।
0: जी, क्लास में बहुत सारे लड़कियां हैं और वो लोग उसको ना क्लास में करते हुए सर्टिफिकेट भी करते हैं, यानी कि जो मैंने किया था अपने टाइम में सर्टिफिकेट 1, 2, 3 जो महात्मा गांधी संस्थान में, वो लोग भी ऐसे करते हैं, यानी कि जो लंच टाइम में है वो लोग आएंगे प्रैक्टिस करेंगे रियाज करेंगे और उसको सीरियसली एग्ज़ाम्स भी देते हैं इसका, यानी कि ना रुचि हॉबी के तौर पर नहीं करते हैं पर उसको वो लोग सीरियसली ले करते हैं।
1: तो उनकी रुचि के साथ साथ हमारी संस्कृति का भी निर्वाह हो रहा है और वे अपनी पारंपरिक यंत्र जो वाद्य यंत्र हैं उनसे जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि ये एक पारंपरिक वाद्य यंत्र में आता है तबला हारमोनियम, ये हर एक शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग होता ही है। मैं आप सहमत होंगी इसके लिए, क्योंकि कथक के लिए चाहे भरतनाट्यम हो चाहे उड़ी के लिए हो सभी में तबले का प्रयोग होता है। चलिए एक और गीत सुनिए, आनंद लीजिए और उस पर चर्चा फिर जारी रहेगी।

0: संगीत नृत्य और परंपरा।
1: श्रोताओं, आपने ये गीत सुना। धुरंधर फिल्म 2025 की ये फिल्म रही, जिसमें इस गीत में तबले का खूब भरपूर प्रयोग आपने महसूस किया होगा सुनते समय। तो आपको ये बताने के लिए, सुनाने के लिए श्रोताओं, ये हमने गीत चलाए जो आज इस कार्यक्रम में सभी में तबले का भरपूर प्रयोग हुआ। ये जानकारी हमारे साथ वर्षा रानी जी ने बांटी थी, उनको आभार प्रकट करेंगे। और अब हम पूछना चाहेंगे कि आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो है, हमारी संस्कृति से जुड़ी रहे, उनका प्रयास

0: इतिहास इसको संजोने में रहे और साथ ही अपनी परंपराओं से कटे नहीं जड़ों को सशक्त कर पाए, इसके लिए आज का विचार आपकी ओर से,
1: मेरे लिए
0: आप दोनों की ओर से होना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, मेरे लिए तो संगीत और तबले मैं बोलूँगी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है
0: जी,
1: यह अनुशासन, साधना, अभिव्यक्ति और संस्कृति से जुड़ने का एक माध्यम है। एक शिक्षिका के रूप में मेरी यही कोशिश रहती है कि जो नई पीढ़ी है केवल तबले बजाने न सीखे बल्कि उसके पीछे का जो परंपरा है, ताल है, सांस्कृतिक है, उसका जो महत्व है उसको समझे,
0: समझ के बजाएं।
1: जी
0: बिल्कुल। आप बेला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप एक कथक की नृत्यांगना हैं, हिंदी भाषा से जुड़ी हुई हैं, छात्रों को हिंदी पढ़ाती हैं, तो आपका आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या विचार है?
2: मेरा विचार है कि आजकल हमारा जीवन तनावग्रस्त हो गया है और बच्चे जो है अलग अलग कुमार्ग पर जा रहे हैं, तो एकमात्र माध्यम है कि वे नृत्य से, वाद्य से, संगीत से जुड़े। और मेरी आशा है कि जो माता पिता हमें, जिन्होंने हमें सुना आज और वर्षा से प्रोत्साहित अवश्य हुए होंगे, वे वाद्य से जुड़ जाए, ताकि कुमार्ग पर ना जाए, संगीत
0: से जुड़े,
2: नृत्य जुड़े।
0: बिल्कुल, तो ये एक माध्यम है अपने चरित्र निर्माण का भी, ये एक माध्यम है सही रास्ता अपनाने का भी। मार्गदर्शिका वर्षा जी हैं जिन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 24 पुरुष उनकी कक्षा में थे, वह अकेली महिला थी। तो ये एक प्रशंसनीय प्रयास रहा आपका कि आपने अपनी कला को भरपूर जिया, क्योंकि ये जीने का एक माध्यम है, अपनी कला के साथ न्याय कर पाई, उसमें आपके माता पिता ने आपको सहयोग दिया, ये सबसे सराहनीय कार्य उन्होंने किया, पर आपने उस कला को भरपूर जिया, भरपूर सीखा और आज आप PhD करके तबले की मेरे ख्याल से प्रथम महिला है जो कि मॉरिशस में तबले पर PhD कर आई हैं। इसके लिए आपने इतनी सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की, भरपूर आभार जाता है आपको, और आपको भी वो, आप हमारे कार्यक्रम में भाग लेती रहती हैं और साथ ही कथक के माध्यम से आप अपनी शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से, कलाओं के माध्यम से जुड़ रही हैं संस्कृति के साथ, अपनी जड़ों को संजो रही हैं, संस्कृति को संजो रही हैं और अपनी परंपराओं से सबको जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, युवा पीढ़ी हो या जो भी अनुभव। अभी अगले महीने हम दुर्गा पूजा की ओर बढ़ पाएंगे, तो ये भी हमारी संस्कृति का एक भाग है जिसमें नृत्य होता है और उसमें जब भजन गाए जाते हैं तो तबले का भरपूर प्रयोग होता है, चाहे वे लोक संस्कृति हो, चाहे वे शास्त्रीय संस्कृति हो, सभी में गीत नृत्य भरपूर होता है और गीत नृत्य से अलग ना रहते हुए भरपूर आनंद भी ले, साथ साथ में इस कला के प्रयास को आगे बढ़ाते रहें। आज हमारी टीम ने सहयोग दिया, इतने सुंदर गीत जिनमें तबले का प्रयोग होता है आप तक पहुँचे, आपकी जानकारियां तबले के लिए वर्षा रानी जी ने साझा की हमारे साथ, बहुत बहुत आभार बहुमूल्य समय देने के लिए इस कार्यक्रम में, पूरी टीम के साथ अंजू को आज्ञा दे, धन्यवाद, शुभ संध्या।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
1: नमस्कार और आदाब. साल की शुरुआत में हवाई अड्डे पर एक मुस्लिम महिला को गिरफ्तार किया गया था और उसकी हिरासत में गमीज पाए गए थे, जिनका मुतालिया करने के लिए इन्हें फोरेंसिक

0: साइंस लैबोरेटरी भेजा गया और अब शक सही निकला है, गमीज में सिंथेटिक ड्रग्स थे। ऐसे ही दूसरे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास बिस्कुट थे जिनमें गांजा था और लॉलीपॉप्स भी जिनमें सिंथेटिक ड्रग्स होने का शक था। इस बढ़ते खतरे के मद्देनज़र फॉरेंसिक अधिकारियों ने सावधान रहने की अपील की है। मॉरिशस में एक खिलौने को खुलेआम बेचा जा रहा है। कई देशों में इस खिलौने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इसे स्क्वीजी डंपलिंग कहा जाता है। दरअसल ये पाया गया कि ये खिलौना बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन के लिए एक रोड मैप तैयार करने में सरकार रफ्तार को और तेज करना चाहती है। कृषि उद्योग मंत्री की सरपरस्ती में कल एक गोल मेज बैठक लगाई गई ताकि बायोमास की क्षमताओं को बेहतर तरीके से विकसित किया जा सके। मॉरिशस के इंडस्ट्री अथॉरिटी की पहल पर यह राउंड टेबल लगाया गया जिसमें सभी पक्षों ने एक ही मकसद से शिरकत की, 2035 तक 60% रिन्यूएबल ऊर्जा का उत्पादन करना। छोटे टापू देशों की मजबूती को और बढ़ाने के लिए मौसमी खतरों का संचालन करना, इसी मकसद से आज रिसाइलेंस परियोजना को शुरू किया गया। ये अफ्रीका के छोटे टापू देशों के आयोग की पहल है और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला चौथा देश मॉरिशस है। विदेश में आज से पोप लियो 14 फ्रांस के दौरे पर हैं। पेरिस में एक बड़ी महासभा लगाई जाएगी जहां आधे मिलियन से ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे। प्लास डे ला कोंकॉर्ड, आर्क दे ट्रायंफ और शांज़िलीज़े के इलाकों में हिफाजती वजहों से पुलिस की घेराबंदी है। आज फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा ओली हवाई अड्डे पर पोप लियो का स्वागत किया गया। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज के चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। वैसे तो श्रोताओं आप जानते हैं कि हर शुक्रवार को हम कानून से जुड़े जो मामले हैं वो लेकर आते हैं, लेकिन आज का हमारा एक विशेष कार्यक्रम हम लेकर आए हैं और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच हैं डॉक्टर नीतू जैन। जी हाँ, डॉक्टर नीतू जैन, आप एक प्राकृतिक चिकित्सक हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं स्वास्थ्य और हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में, यानी कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको लेकर अभी जो हमें समस्या चल रही है, जो टेंशन चल रही है कि उनका स्वास्थ्य आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। और आजकल की जो पीढ़ियाँ, अभी आप देख सकते हैं कि पहले ज़माने में हमारे जो दादा परदादा थे 100-100 साल तक जीते थे, एकदम स्वस्थ रहते थे, और अभी आप देखेंगे कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, आर्टरीज ब्लॉक हो रहे हैं, बेहोश गिर रहे हैं, मोटापा आ रहा है, डायबिटीज़ तो जैसे हर किसी को 35-50 के बाद बहुत ना एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो गई है। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है ये सब जानेंगे और इसके बारे में सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन भी लेकर आए हैं। तो चलिए मिलते हैं हम डॉक्टर नीतू जैन के साथ। डॉक्टर नीतू जैन, नमस्ते।
3: नमस्ते,
2: आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद वेदिता जी।
2: तो आज जैसे हमने कहा कि हमारा जो कार्यक्रम है इस पे हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अभी जो पीढ़ी कौन सी समस्याओं से जूझ रही है इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी जब हम नॉर्मली बात करते हैं डॉक्टर्स की, आप डॉक्टर हैं, हम जब डॉक्टर की बात करते हैं, जब कोई बीमार होता है तो वो क्या करता है, वो हॉस्पिटल जाता है, क्लिनिक जाता है, इंजेक्शन लगाता है, ड्रिप लगाता है और दवाई खाता है। आपके पास इसका अलग सॉल्यूशन है जहाँ पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो कि एक प्राकृतिक चिकित्सक करता है, उसका काम होता है कि आपको ऐसी दवाइयाँ दे जिसमें साइड इफ़ेक्ट ना हो। और आप एक फाउंडर भी हैं पियास की, और इसका आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगे सबसे पहले।
3: हाँ, प्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और अलाइड साइंसेस का एम है कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं छोटी छोटी टिप्स से। जैसे आज आप हम सबको पता है कि किसी के पास भी टाइम नहीं है, सबको पूछे तो बोले टाइम नहीं है करके, तो उसके लिए हम क्या करना, तो हमने इजहार किया है छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एक मिनट के लिए योगा आपको नहीं टाइम मिलता,
2: एक मिनट के लिए योगा।
3: अगर जैसे मानिए आपको पूरा एट ए स्ट्रेच आपको टाइम नहीं मिलता 30 मिनट्स 40 मिनट्स, तो आप 1 मिनट की प्रैक्टिसेस इन बिटवीन मिडस्ट ऑफ लाइफ आप कर सकते हैं। मिडस्ट ऑफ लाइफ आपके लाइफ के बीच में, जैसे आप काम कर रहे हैं, आप चेयर पे बैठे हैं,

0: या आप ऑफिस में सोफे पे बैठे हैं, तो आप उठ के कुछ ऐसी प्रैक्टिस कीजिए जिसके कि एक मिनट में आपने 59 मिनट्स अपना काम किया और एक मिनट के लिए एक प्रैक्टिस की, तो जिससे कि आपको तुरंत हेल्प हो सकती है और आपके अगले 59 मिनट्स बहुत आराम से आप काम कर सकते हैं। तो डूइंग एंड पॉज इन बिटवीन मिडस्ट ऑफ लाइफ, काम के मध्यांतर दौरान उसी वक्त आप छोटी छोटी प्रैक्टिस सीख के हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे स्ट्रेस 59 मिनट्स में जो आपने स्ट्रेस गेन किया है
1: जी,
0: वो तुरंत आप एक मिनट की प्रैक्टिस करके आप तुरंत उसको खत्म कर सकते हैं।
1: ये तो
0: ऐसी टाइप की प्रैक्टिसेस हमने बहुत इजहार की है और उन प्रैक्टिसेस को हम कराते हैं
1: जी, जी,
0: तो
1: जी।
0: हमने 40 ईयर से हमारा एक्सपीरियंस है कि जब हम एक घंटे की जो प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको कोई दिन सेट नहीं हुआ 30 मिनट्स 20 मिनट्स, तो आप वो प्रैक्टिस मिडस्ट ऑफ डे कि डे के दौरान आपने अपना काम किया 59 मिनट्स और आपने एक मिनट की कोई प्रैक्टिस की। जैसे आप छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, स्माइल बहुत अच्छी है। तो अगर आपको लगता है कि ऑफिस में आप दूसरी कोई प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप आंखें बंद करके बैठ जाइए और बड़ी वाली स्माइल,
1: ये आप मुझे बोल रहे हो कि ये जो योगा सिखाते हैं इसका हिस्सा है?
0: 101% उसका हिस्सा है। योग मीन्स कोऑर्डिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, कि मन को शरीर के साथ रखना। तो आप कोई भी जब क्रिया करते हैं, प्रोसेस करते हैं और मन को जब शरीर के साथ जोड़ देते हैं, उसी को योग कहा जाता है। तो जब आपने स्माइल की तो वो आपको आनंद की तरफ लेके जाएगा,
1: डेफिनेटली,
0: राइट। तो वो एक और हमारे बॉडी की शीट है
1: जी,
0: हमारे बॉडी की एक लेयर है, परत है। तो आपका आनंदमय कोश जगने लगेगा। तो ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हम बहुत सारी कराते हैं।
1: ओके, क्योंकि कोई इंसान जब काम पे गया है, उसको बहुत सारा काम है, वो स्ट्रेस में है, तो अगर हम उसको कहेंगे स्माइल करो, तो वो तो और भी गुस्सा करेगा कि मुझे इतना स्ट्रेस है, मुझे इतना काम है, कोई आके मुझे बोल रहा है स्माइल करो। अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया कि ये रियल मीनिंग ऑफ स्माइल क्या होता है। स्माइल करना लाइक ऐसा नहीं होता कि आप किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप खुश हो गए तो स्माइल किया। आपके कहने का मतलब मैं यहाँ पर ये समझती हूँ कि इंसान अपने आप को खुश कर सकता है, यानी कि वो कहते हैं ना कि आपकी खुशी, आपका सुकून आपके हाथ में है, लेकिन किसी ने ठीक तरह से कभी सिखाया नहीं कि ये कैसे होता है। आपने बोला आप काम कर रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, आपको स्माइल करना है, हमें नहीं पता कि ये स्माइल जो है योगा के हिस्से में आता है, तो पॉज करो एक मिनट के लिए और स्माइल करो। हाँ, ये बात अलग है कि लोग आपको देखेंगे तो बोलेंगे कि क्या हो गया, दिमाग खराब तो नहीं होगा, ये बैठ के क्या करे।
0: आप सही कह रहे हैं।
1: तो ये अभी आप हमें बता रही है, तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं रेडियो के साथ, टीवी के साथ, उनको पता है कि ये जो कोई देख लेगा कि कोई बैठ के स्माइल कर रहा है, वो स्माइल नहीं कर रहा है, वो एक तरह से अपना योग कर रहा है, योगा कर रहा है, तो ये नॉर्मल सी बात है। वो क्या कर रहे हैं, अपने स्ट्रेस को भगा रहा है। थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता था कि ये जो स्माइल करना है, ये भी हमारे बैठकर ऐसे स्माइल करना, यानी कि आप अपने स्ट्रेस को भगा रहे हैं।
0: जैसे आप स्माइल करते हैं ना, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, और जैसे ही आप वर्तमान में आ गए तो सारे के सारे स्ट्रेस तुरंत चले जाते हैं
1: जी,
0: और आपके ब्रेन से सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ऐसे टाइप के हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, जो कि आपको स्माइल करने से मिलने लगते हैं।
1: वाव, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं, आपने बहुत, जैसे हमें कहते हैं ना कि लॉटरी मिल गई, ऐसा लगता है कि आपने ये बात कह के हमें एक ऐसा बड़ा तोहफा दे दिया है जो कि हमारे पास है, लेकिन हम उसका कैसे इस्तेमाल करें हमें पता नहीं था। सो अभी जितने भी हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, यही कहूँगी कि आप लोग भी एक घंटे के बीच में कहीं ना कहीं एक मिनट निकालें और स्माइल कीजिए, क्योंकि स्माइल की जो वैल्यू होती है, अभी डॉक्टर साहब ने हमें अच्छी तरह से समझा दिया। चलिए, तो स्माइल तो हो गया, अब आगे।
0: हाँ, अब देखिए, हम लोग खाना खाते
1: हाँ,
0: ठीक है, खाना हाँ? खाना पक्का खाना ही पड़ेगा
1: जी।
0: अब चाहे कितने भी हरी में, खाने को प्रेयर की तरह लीजिए, खाने को प्रेयर की तरह, जैसे कि आप प्रेयर में उठते हैं बीच में,
1: हाँ
0: उठ के,
1: नहीं, नहीं, नहीं,
0: एक बार प्रेयर के लिए आप बैठ गए तो आप उठते
1: नहीं, नहीं, नहीं,
0: आप आंखें खोलते हैं, इधर उधर देखते
1: नहीं,
0: नहीं,
1: कंसंट्रेट करते हैं,
0: कंसंट्रेट करते हैं प्रेयर पे। तो आप खाने पे उसी प्रकार से कंसंट्रेट कीजिए। अगर आपको, आज की डेट में सबको पता है हेल्दी खाना क्या है, ठीक है, पर कैसे उसको खाना है वो बहुत कम लोग उसको प्रैक्टिस जीवन में करते हैं। भगवान ने 32, आप जब धरती पे बॉर्न हुए तो आप 32 टीथ

0: लेके, राइट, हम 32 टूथ लेके आए हैं, राइट, तो उनका यूज हम सही ढंग से करें. तो उनको हम धीरे धीरे चबा चबा के खाएं, और अगर चबाने के साथ आपने स्माइल भी जोड़ दी दोनों, तो आपका खाना, आप भूल जाएंगे वर्ड एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस एंड कॉन्स्टिपेशन, और ये वर्ड्स आपके जीवन से निकल गए, तो फिर कोई दूसरी बीमारी बनना शरीर में पॉसिबल नहीं है.
1: हमें तो ये पता है कि खाना ज़रूरी है, लेकिन धीरे धीरे खाना, वैसे खाने को बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे खाना चबा के खाते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब तक खाना गर्म है लोग उसको खाना पसंद करते हैं, और बहुत से लोगों को जल्दी होती है, वो स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं घर पे, आप उनको कभी भी नहीं देखोगे कि वो आराम से बैठ के खाना खा रही हैं. वो खाना सबसे पहले परोसती हैं, फिर उसके बाद सबको देख लेती हैं, फिर बैठती हैं, जल्दी जल्दी खाती हैं, क्योंकि बाकी लोग खा रहे हैं, किसी को कुछ चाहिए तो वो खुद उठ के जाती है, और उसका ये होता है कि 5 मिनट में खाना ख़त्म कर लो, क्योंकि उसको बर्तन धोने हैं, किचन साफ़ करना है, बाकी लोग आराम से खा रहे हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी खाती हैं. तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है. मैं चाहती हूँ कि हमारी जो महिलाएँ हैं स्पेशली, और जो लोग किचन का भार संभालते हैं, वो हो सकता है कोई जेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई लेडी ही हो, लेकिन किचन में जो खाने बनाने वाला होता है, सर्व करने वाला होता है, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए एक मैसेज होना चाहिए.
0: इसीलिए जैसे जो खाना बनाती है तो उसको तो सबसे पहला हक है कि वो पहले खुद खाए.
1: आपको लगता है कि वो,
0: हाँ, वो पहले खुद खाए, और अगर उनको भूख नहीं लगी तो बाद में खाना चाहे तो बाद में खाए, पर शांति से खाए. जितना टाइम उन्होंने किचन में बिताया खाना बनाने में, कम से कम उतना टाइम खाने में बिताए, तो उनको सच में मजा आएगा अगले काम करने को. और नेचुरल स्ट्रेस जब आप अच्छे से चबाते हैं तो आपका स्ट्रेस जीरो होने लगता है. अब क्योंकि हमारे पूरे दांत पूरे ब्रेन के हमारे नस नाड़ियों से कनेक्टेड है
1: जी,
0: तो वो कॉन्स्टेंटली आपको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं जब आप चबा रहे होते हैं. आपने देखा होगा गुस्से में बंदा क्या करता है,
1: हाँ,
0: तो उसी को चबा लो पहले खाने को ही, तो ये सब करने की जरूरत आपको
1: नहीं
0: पड़ेगी, नहीं कभी नहीं पड़ेगी. राइट, तो खाना इसलिए धीरे धीरे बहुत चबा चबा के खाना है कि जिससे कि खाना आपका डाइजेशन मुंह में होना शुरू हो जाता है, तो आपके डाइजेशन सिस्टम को भी आराम मिलेगा, काम कम रहेगा,
1: हाँ,
0: फिर आपको जितना भागना आप मस्ती से भाग पाएंगे.
1: क्योंकि जितने भी लोग होते हैं जब जल्दी जल्दी खाते हैं तो खाने को अच्छी तरह से चबा नहीं पाते हैं, तो हमारा जो डाइजेशन होता है ना वो ठीक से होता नहीं. क्यों? क्योंकि जैसा आपने कहा कि हम सबको 32 दांत मिले हैं, तो चबाइए फिर खाने को अंदर डालिए, ताकि हमारा जो सिस्टम है अंदर का उसको ज़्यादा मेहनत ना करने
0: और
1: पड़े.
0: वहीं से आपकी लार मिक्स होती है सलाइवा, और सलाइवा इज वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिसिन जो कि एंटीसेप्टिक भी है और उसके साथ साथ में एल्कलाइनिक है. तो उसकी वजह से आपका खाना उसके साथ जैसे ही मिक्स होता है तो वो बॉडी के अंदर जब जाता है तो उसका डाइजेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन तीनों बहुत अच्छे से होते हैं, और जब ये तीनों बहुत अच्छे से होते हैं तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे मिलने लगता है.
1: तो यानी कि ये जो लोग कहते हैं ना कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, तो उनको इतनी सारी दवाइयों के लोग टिप्स देते हैं, उनको दवाइयां बोलते हैं, जबकि आपके पास सॉल्यूशन आपके मुंह के अंदर आपका सलाइवा है. अगर उसका सही इस्तेमाल करें, धीरे धीरे खाना खाएं, तो आपको ये एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि हमें नहीं पता था. इसके लिए डॉक्टर जी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद. छोटी छोटी चीज़ें बता रही हैं जो हम रोज़ करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान जाता ही नहीं इसमें,
0: क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई. ये सब प्राइमरी मेडिसिन में आता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम प्राइमरी स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं
1: जी,
0: तो अगर उनको हम प्रैक्टिस में कर लें तो हम अपने हार्मोन्स को, अपनी बॉडी को पूरा बैलेंस में रख सकते हैं
1: जी.
0: फिर जैसे मानिए कि कोई मेडिकेशन पे है, कोई दवाइयाँ ले रहा है काफ़ी सालों से, तो उनकी दवाइयों का भी असर अच्छा आएगा, क्योंकि जब आप दवाइयाँ लेते हैं और खाना ढंग से नहीं खाते तो वो दवाई भी इतना अच्छा एक्ट नहीं कर पाती
1: जी.
0: जिसको भी अगर रहना है तो आपको नहीं रहना, बिना दवाई के रहना है तो उसका भी रास्ता है. आपको जैसे जीवन जीना है सारा रास्ता है. हम लोग प्यास में इंटीग्रेटिव करते हैं
1: जी.
0: कि जैसे मानिए कि मॉडर्न मेडिसिन से हम आपको समझते हैं, जैसे हम डायग्नोसिस करते हैं.

है आपका ब्लड के थ्रू, एक्सरे के थ्रू, अगर जरूरत है तो हम MRI या कुछ भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन अगर जरूरत है तो वो करवाते हैं, तो जिससे कि आपकी बॉडी को, आपके शरीर में क्या चल रहा है उसको और

0: क्योंकि आपका पूरा शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है
1: जी, जी,
0: ये मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और पूरा ब्रह्मांड भी पंच तत्वों से बना हुआ है
1: जी।
0: तो इसलिए हमारे सारे सॉल्यूशन पंच तत्वों से आते हैं। तो इन पंच तत्वों में आपके शरीर में जो भी कमी होती है उससे रिलेटेड आपको डिजीज होती है। जैसे मानिए किसी को एसिडिटी है
1: जी,
0: तो इसका मतलब उनमें फायर एलिमेंट अग्नि तत्व बढ़ गया है।
1: तो अग्नि अगर बढ़ गया है तो
0: क्या तो उससे उनको एसिडिटी ज्यादा हो रही है। अगर वो बैलेंस रहता है तो आपका डाइजेशन अच्छा होता
1: है। तो उसका सॉल्यूशन
0: फिर हम लोग ये करते हैं कि आपके पेट पे हाइड्रो पैक्स देते हैं, मड़ के पैक्स देते हैं जो कि अर्थ से आता है, मिट्टी का पैक, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करते हैं जिससे कि वो थर्मल इफेक्ट से आपकी एसिडिटी खत्म हो जाती है या उसमें थोड़ा सा कमी हो जाती है जिससे कि आप खाना ढंग से खा पाए।
1: तो ये जो पैक होता है ये तो आप अपने बॉडी के ऊपर रखते हैं,
0: ऊपर रखते हैं
1: ना,
0: तो हमारी पूरी स्किन एक दूसरे के लेयर से कनेक्टेड है।
1: हाँ, यानी कि आप जब वो मड पैक लगाते हैं तो उसका असर अंदर होता है,
0: अंदर तक जाता है, क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर भी अवेलेबल है स्किन के लास्ट लेयर पे। जब भी तो आपने टच किया, देखिए आप गर्म पे टच करते हैं तो कैसे आपका हाथ तुरंत
1: बाहर कर लेते ना,
0: तो ये हुआ आपका
1: जी जी
0: प्रिवेंटिव डिफेंस मैकेनिज्म कि आपके हाथ अपने आपका ब्रेन आपके बॉडी को बचा रहा है
1: जी,
0: राइट। तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर का कम्युनिकेशन भी राइट खाने से, राइट ढंग के खाने से, राइट ट्रीटमेंट लेने से बढ़ता है, तो जिससे आपकी बॉडी में जो हो रहा है वो धीरे धीरे इन फाइव एलिमेंट्स के चिकित्सा से वो धीरे धीरे बदलाव आने लगता है।
1: तो ये तो हमने अग्नि की बात कर दी,
0: अग्नि की बात की। अब जैसे मानिए कि किसी को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है तो उसमें उनका पृथ्वी तत्व और
1: अर्थ,
0: पृथ्वी तत्व और जल तत्व बढ़ गया।
1: पानी का,
0: हाँ पानी का, तो उसी से उसका ट्रीटमेंट भी होगा कि उनके जल को बैलेंस करने के लिए बॉडी में फिर से पानी दिया जाएगा, या तो गर्म या तो ठंडा या तो मिक्स के कॉम्बिनेशन में या फिर जूसेस के फॉर्म में या सूप्स के फॉर्म में, तो उससे उनका ट्रीटमेंट हो सकता है और उससे वो ठीक हो सकते हैं।
1: इसीलिए किसी को सर्दी जुकाम होता है तो उनको काढ़ा पिलाते हैं।
0: हाँ, उनको काढ़ा पिलाते हैं या हर्बल टीज पिलाते हैं या अदरक का काढ़ा पिलाते हैं या काली मिर्ची डाल के काढ़ा पिलाते हैं, गार्गलिंग करने का बोलते हैं, तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है
1: जी।
0: तो उससे कि आपका कफ बाहर आने लगता है ऐसा। तो ये हो गया आपका। हम जब पांच एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो पांचों एलिमेंट्स आप सबको पता ही है, हम लोग नाम कह देते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश
1: जी।
0: ये पांच तत्व है। तो जब हम अब जैसे आज फास्टिंग कर रहे हैं तो आपने स्पेस को बढ़ाया है अपने शरीर में, ठीक है। जब हम धीरे धीरे खाना खाते हैं तब भी हम स्पेस बढ़ाते हैं शरीर में। जब आप स्पेस तत्व बढ़ाते हैं, आकाश तत्व बढ़ाते हैं, तो शरीर में हीलिंग होना शुरू होती है। ओके। और फिर अभी हमने पृथ्वी के बारे में बात कर ली, जल के बारे में बात कर ली, अग्नि के बारे में बात कर ली, आकाश के बारे में बात कर ली। अब एक तत्व रह गया जो कि एयर के बारे में, जो कि हम प्राणायाम के थ्रू, योगा के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू, जो कि कांस्टेंट आप ब्रीदिंग ले रहे हैं तो उसमें भी आपका कंटिन्यूस एयर तत्व जा रहा है
1: जी,
0: ठीक है। वायु तत्व आपका आपके बॉडी में जा रहा है, पर जब आप वायु तत्व को ले रहे हैं तो उसको अगर आप प्रॉपरली अवेयरनेस से ले लें तो उसका असर और अलग आता है। जैसे कि आपने अवेयरनेस से स्माइल की कि लगा कि अब बहुत ज़्यादा काम हो गया, थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, तो आँखें बंद करके आपने स्माइल किया और एक मिनट के लिए आप स्माइल करके बैठ गए। ऐसे ही आप डीप ब्रीदिंग एक मिनट के लिए, जो कि आप अगले एक बार 50 मिनट्स 55 मिनट्स आपने काम किया और उसके बाद में आपने एक मिनट का गैप छोड़ा और आपने स्माइल किया
1: जी,
0: नेक्स्ट आवर में आपने 59 मिनट काम किया और उसके बाद में आपने एक मिनट का गैप छोड़ा और उसमें आपने डीप ब्रीदिंग किया
1: जी,
0: ठीक है, धीरे धीरे पेट को फुलाया और धीरे धीरे पेट को अंदर ले गए, ठीक है। तो हम ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि जो कि किसी को नुकसान ना करे। ये इसमें आप खुद कर सकते हैं, पर हम आपको आप हमारा लिंक भेज देंगे अगर आप कहेंगे तो, उसमें काफ़ी सारे मेडिटेशन है, ब्रीदिंग के लिंक्स हैं जो कि आप घर पे बैठे भी कर सकते हैं
1: जी।
0: जब तक आप हमसे जुड़ते नहीं आप आ नहीं पाते
1: जी। ऐसा। तो चलिए, हमने अभी पांच तत्व के बारे में भी बात कर ली, अभी हम खाने के बारे में

0: बात करते हैं, सब कहते हैं हेल्दी खाओ हेल्दी खाओ हेल्दी खाओ, ठीक है। लोग जो है आजकल जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, पहले के ज़माने में ये सब तो होता नहीं था। और जैसे मैंने कहा ना कि अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे जो दादा परदादा थे वो तो गन्ने के खेत में काम करते थे, रोपाई करते थे, कोई मेसन का काम कर रहा है तो लगातार उनका जो हाथ, उनकी जो बॉडी है, उनके पैर हैं, चल रहे हैं हाथ। आजकल लोग जो हैं कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, उनकी बॉडी जो है ना कहीं स्टिफ हो जाती है। सब कहते हैं कि गर्दन में पेन है क्योंकि वो ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं और उनका पूरा फोकस हाथ में होता है, तो पूरा ये हाथ, पूरा ये शरीर जो है, तो ऐसे में हमने तो ये बता दिया कि आप बैठ के रिलैक्स करो, लेकिन कभी कभी स्ट्रेच करना ज़रूरी होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग अपना कंप्यूटर छोड़ के एक मिनट के लिए बाहर जाके अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, ये ज़रूरी है।
1: अब जो छोटे छोटे काम है जैसे कोई फाइल उठा के लानी है तो वो आप खुद करिए, चाहे आप लोगों को रखिए आपके साथ में, पर बीच में उठ के आप खुद जाके आइए। जब आप चलते हैं तो आपके पैरों को ऑक्सीजन का सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उसकी वजह से फिर आपको पैरों में भी दर्द नहीं होता। जब आपके पैरों में दर्द नहीं होता तो आपके बॉडी में जो हाथों में आपको दर्द है माउस की वजह से या कंप्यूटर या फोन की वजह से, हाँ, तो आप धीरे धीरे हाथों की मूवमेंट करके चलिए
0: जी,
1: तो उससे वो दर्द भी आपका चला जाएगा। और आप बैठ के धीरे धीरे कंधों को ऊपर नीचे करना है, रोटेशन करना है बहुत धीरे धीरे पर ध्यान रख के, और आंखें बंद करके, जैसे ही आप आंखें बंद करके प्रैक्टिस करते तो उसका असर आपको जल्दी और फास्ट मिलता है।
0: हाँ, क्योंकि फोकस जाता है कंधे पे और आप रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं। जब आप आंखें खोल के कर रहे हैं तो आप ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब आंखें बंद करके कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा मैं फील कर रही हूँ कि वो मूवमेंट स्लो हो जाता है।
1: एग्जैक्टली, तो उससे क्या होता है कि आप मूवमेंट को भी बैलेंस में करते हैं, आप गलत नहीं करते और 100% आपका रिजल्ट इंस्टेंट आपको मिल जाता है।
0: ये तो हम भी जानते हैं कि स्ट्रेच करना ज़रूरी होता है। कहते हैं कि जब आप सुबह उठे, जैसे आप बिस्तर से उठे, आपको कुछ लोग होते हैं अलार्म लगाते हैं और ऐसे उठते हैं जैसे कोई जंग लड़ने जा रहे हैं, सब कुछ उनका जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी होता है। और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि इंसान जो है वो कहते हैं ना ब्यूटी स्लीप चाहिए, तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मेरी तो नींद पूरी नहीं हुई, मैं 8 घंटे सोती नहीं हूँ। आपको लगता है कि वो 8 घंटे की जो स्लीप है जिसमें वो उठते हैं और थके होते हैं, और वो 6 घंटे या 5 घंटे का स्लीप जहाँ पे इंसान उठता है तो सुकून के साथ उठता है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। आप मुझे उस फ़र्क के बारे में बताइए।
1: अंडर और ओवर, कुछ भी आप अंडर करते हैं ओवर करते हैं आपकी बॉडी के लिए, तो उसमें आपको हमेशा लेजीनेस या लथार्जिकनेस बनी रहती है। पर अगर आप बेबी की तरह सोते हैं, छोटे बेबी की तरह, तो आपको तुरंत नींद आ जाती है। तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ।
0: अच्छी,
1: 0, 1, 2, 3, 4, ओके। तो आप कैसे करेंगे उसको देखिए कि जैसे 4 आवर्स पहले आप सोने के कोई भी जो बहुत ज़्यादा मेहनती काम है उसको बंद कर दीजिए।
0: ओके,
1: ठीक है। कोई भी एक्सट्रीम एक्सरसाइज जैसे आपने जिम का बताया या आपने योगा का बताया, तो जो कि फिजिकल पार्ट है योगा का, वो आप जहाँ तक हो नहीं कीजिए, और कर रहे हैं डायनेमिक नहीं कीजिए, धीरे धीरे आप कर सकते हैं, ठीक है। 4 घंटे पहले, 3 घंटे पहले आप खाना, पेट भर के खाना छोड़ दीजिए, 3 घंटे पहले आप खा लीजिए
0: जी,
1: ठीक है। 2 घंटे पहले आप कोई भी जैसे कॉफ़ी है, टी है, वो 2 घंटे पहले ख़त्म कर दीजिए
0: जी,
1: ठीक है। कोई भी स्टिमुलेशन जो कि आपके ब्रेन को स्टिमुलेशन दे सकता है, एनर्जी ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, कर लीजिए जो भी 2 घंटे पहले। 1 घंटे पहले पानी को मिनिमम कर दीजिए, या आप
0: लेकिन कुछ लोग हैं जो सोने से पहले पानी पीते हैं,
1: हाँ 1-2 घूंट आप पी सकते हैं,
0: हाँ,
1: या कोई वजह से आपने पूरे दिन में नहीं पिया और कुछ वजह हो गई तो बात अलग है। अगर आपको रात को सोना है तो 1 घंटे पहले या 1/2 घंटे पहले पानी को जरूर बंद कर दें, ठीक है। और 0, सोते समय मोबाइल
0: मत देखो,
1: देखो नहीं, सुनना है तो आप रिलैक्सेशन, हमारे मेडिटेशन है वो डाल के आप सुन सकते हैं, तो जिससे कि आपको नींद बेबी की तरह चुटकियों में आ जाएगी। अगर आप इनको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 को फॉलो करते हैं तो तुरंत आपको नींद आ जाएगी और आप बच्चे की तरह सोएंगे। उसमें अगर आपको 2 घंटे भी मिले हैं तो आप फिर इलेक्ट्रिक करंट की तरह सुबह उठेंगे।
0: वाह।

0: और जो आपने हरी का कहा, अगर आप छोटा सा काम कर लेते हैं कि अपने खाने को बदल के धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं, तो आप डायनेमिज्म रहेगा, आप में डायनेमिक रहेंगे आप. पर इंग्लिश वाला हरी खत्म हो जाएगा, हिंदी वाला हरी आ जाएगा. और आपका सारा काम काफ़ी शांति से करेंगे, तो जिससे कि स्ट्रेस भी कम से कम क्रिएट होगा और आपकी लाइफ मस्ती से जाए.
1: तो जितने भी हमारे श्रोताओं ने, दर्शकों ने अगर मिस कर दिया, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 0, 1, 2, 3, 4 हैं, 4 घंटे पहले जो भारी एक्सरसाइज होता है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, 4 घंटे के सोने से 4 घंटे पहले हो जाना चाहिए. और जैसा आपने कहा कि खाना जो है 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेनी चाहिए, 2 घंटे पहले आप जो है
0: कोई भी एडिक्शन, चाय,
1: पानी, कॉफी, उसको रोक दीजिए.
0: 1 घंटे पहले पानी.
1: और फिर जब रात को सोना है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, एक्सेप्ट इफ़ यू आर लिसनिंग टू, यानी कि जो म्यूज़िक सुन रहे हैं.
0: कोई मेडिटेशन आप करना चाह रहे हैं तो वो सब अलाउड है.
1: हाँ,
0: तो वो करते करते आप सो जाइए.
1: हाँ,
0: और दिन में प्लान ऐसा कीजिए कि जैसे कि आप स्लो खाइए, स्लो पीजिए, इन दो पे फोकस कीजिए ज़्यादा.
1: जी,
0: तो आप स्लो खाएंगे और स्लो बोलेंगे तो आपकी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया दोनों बन जाएगी.
1: कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब खाना खाते हैं तो मोबाइल देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग टीवी देखना पसंद करते हैं डिनर टाइम पे, तो मुझे लगता है कि ये सब आदतें जो हैं थोड़ी छोड़नी पड़ेगी ना,
0: बदलनी पड़ेगी, नहीं तो आप अपने ब्रेन को हर वक्त स्ट्रेस में और आप स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो जिससे कि ब्रेन को नहीं पता चल रहा कि मैं खाना पचाऊँ कि टीवी देखूँ.
1: हाँ,
0: तो आप दोनों का मजा नहीं ले रहे. आपका ब्रेन एट ए टाइम एक काम को बहुत अच्छे से कर सकता है. हम मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं. हाँ, वो ट्रेनिंग से वंस इन अ वाइल अच्छा है, पर रोज नहीं.
1: हाँ, लेकिन जहाँ तक आपकी बॉडी का सवाल है, जब आप अपने बॉडी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ज़रूरी होता है कि आप अपनी बॉडी को वो टाइम दें जो उसको चाहिए, चाहे वो सोने के लिए हो, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो उसको रिलैक्स करने के लिए हो, क्योंकि हम सब कुछ अपने बॉडी के लिए ही करते हैं. अगर हमें सजना संवरना होता है तो बॉडी के लिए होता है.
0: Right.
1: खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को ही एनर्जी मिलती है, यानी कि जो भी हम करते हैं वो पूरी तरह से हमारे आसपास ही घूमता है. तो चाहे आप खूबसूरत दिखना चाहते हो, चाहे आप हैप्पी दिखना चाहते हो, हेल्दी दिखना चाहते हो, जो भी करते हो अपने बॉडी के लिए करते हो, तो करो, तो टाइम लेकर आराम से करो. चलिए, ये तो हमने बात कर ली. अब हमारे सोने की, खाने की, पीने की, अभी जब खाने की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा आजकल लोग हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन कहाँ तक हेल्दी खा रहे हैं ये मुझे नहीं पता. आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि जब हेल्दी खाने की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, सारा खाना पैक हो जाता है, पहले से ही पैक हो जाता है, रेडी होता है, रेडी टू ईट, ये हेल्दी फूड है, इसमें ये है, ये है, ये है, पहले से पैक, एक हफ्ते से पैक होकर रखा गया है, ये हेल्दी फूड है. आप इसके बारे में बताइए.
0: हाँ, देखिए, जो चीज़ स्टोर हो गई और अगर आपके शेल्फ में या प्लास्टिक में पैक हो गई तो वो उतनी हेल्दी नहीं रहती, और धीरे धीरे आपका फूड उसमें माइक्रो प्लास्टिक
1: जी
0: या माइक्रो जो एजेंट्स होते हैं वो एंटर होने शुरू होते हैं, और वो इनडायरेक्टली आपके बॉडी में एंटर होते हैं. तो हो सके तो आप कम से कम जैसे भी 80-20 का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, कि 80 आप खाइए डायरेक्ट जो कि आपको डायरेक्ट मिलता है
1: जी,
0: यानी कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और 20 आप खाइए जो आपने पैक किया हुआ है
1: जी.
0: अगर आप उसका रेशियो फॉलो करते हैं तो आप इसको तो भी हेल्दी कैटेगरी में रख सकते हैं. सिंपल में बताया कि 20% आप जो करते हैं, यानी कि ह्यूमन जो करता है, पैक करता है या बॉक्सेस में बंद है या शैशेज में है, वो 20%.
1: हाँ,
0: और 80% जो कि डायरेक्ट सोर्सेस से आपको मिलता है, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन्स हैं, तो इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन रखिए तो वो हेल्दी खाना आपको रहेगा. कोई बात नहीं, जैसे आपको जूपे हैं.
1: हाँ,
0: तो वो पैक है. हाँ, आपके क्लिंग फिल्म में पैक है.
1: हाँ,
0: ओके, या डब्बे में पैक है, ठीक है, वो लीजिए. उसके साथ में आप उतनी की उतनी सलाद और सब्जी
1: जी,
0: राइट. अगर आपका जूपे 10 ग्राम्स का है तो आप 80 ग्राम्स या 90 ग्राम्स सब्जी उसके साथ ले लीजिए
1: जी,
0: तो आप इसको कॉम्पनसेट करेंगे और वो आपको हेल्दी खाने की तरफ लेके जाए.
1: जब हम हेल्दी खाने की बात करते हैं तो आपके हिसाब से जब हेल्दी खाना होता है, लोग कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा घी है,

0: मैं तो जानती हूँ घी हेल्दी होता है, तेल मुझे पता है, अगर आप वही जो तली हुई चीज़ें होती हैं समोसे पकोड़े वगैरह उसी ऑयल में अगर रोज़ जो बेचने वाला फ्राई कर रहा है तो हमारे लिए हेल्दी नहीं होता है। लेकिन अगर घर पे आप लोग एयर फ्रायर का यूज़ कर रहे हैं या बेक कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये जो स्टीम की हुई चीज़ें होती हैं इसको तो आराम से खा सकता है इंसान।
1: आपको इसका पकोड़ों का एक छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं, आप खा सकते हैं नो डाउट, पर उसको कैसे करना है उसको हम समझते हैं। एयर फ्रायर का यूज़ या डीप तला हुआ क्यों हमारी बॉडी में हेल्प नहीं करता अच्छे से और क्यों ये जंक माना जाता है उसको हम समझते हैं। आप फैट जो है ना हमारी बॉडी में, चाहे घी हो तेल हो या नट्स हो, उनको हम डायरेक्ट कच्चा खाएं, पकाएं नहीं ज़्यादा, तो वो हमारी बॉडी में सही उपयोग होता है। ठीक है, अगर जब आप उसको गर्म करते हैं और यूज़ करते हैं तो वो आपके बॉडी को ब्लॉकर की तरह काम करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ
0: जी।
1: आपको पता है कि हमारी बॉडी में पूरे होल्स हैं
0: जी,
1: ओके, जो कि कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, तो जैसे आपने गैस स्टोव पे होल्स होते हैं, गैस स्टोव को बाहर आने
0: वो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
1: गैस के बाहर आने, आप उस पर ऑयल डाल दीजिए, वो जलेगा ही नहीं। आप करके देख लीजिए प्रैक्टिकली। तो इस वजह से जब हम बॉडी में तला हुआ ज़्यादा खाते हैं तो इंटरनल बॉडी में ब्लॉकेज डेवलप होती है और उसकी वजह से आपके सारे सिस्टम और प्रोसेसेस, फिर आपका उसी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है
0: जी जी,
1: ठीक है, उसी वजह से कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आपको कहीं ब्लॉकेज हो सकता है। तो वैसी सारी प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए आप फैट को कच्चा खाइए
0: जी,
1: रॉ खाइए, आप घी लीजिए, आप उसको ब्रेड पे लगा के खाइए, चावल में डाल के खाइए, ऐसे कैसे
0: कच्चा
1: कच्चा, ऑयल को भी ऐसे ही खाइए, तो
0: सैलड में,
1: सैलड में खाइए आप, ब्रेड पे लगा के खाइए, ऐसे ही पी लीजिए, वो जैसे आपको समझ में आता है, पर जितना रॉ होता है वो उतना ज़्यादा हेल्दी होता है, स्पेशली फैट के मामले में। तो फैट आपको रॉ ही लेना है और आप घी जरूर लीजिए अगर आपको पसंद है तो, और नहीं तो आप सबसे ज़्यादा प्लांट बेस्ड ऑयल, वो ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि हम लोग प्लांट के बिना नहीं रह सकते
0: जी,
1: प्लांट हमारे बिना रह सकते हैं
0: जी,
1: तो इसीलिए हम जितनी चीज़ें प्लांट बेस्ड लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी होता है और हमारा डाइजेशन उसमें ज़्यादा अच्छा होता है।
0: और जब हम लोग कहते हैं कि अगर आपको वज़न कम करना है तो चावल खाना बंद कर दीजिए,
1: नहीं वैसा कोई नोशन नहीं है कि चावल और गेहूं या फिर मिलेट्स उससे आपका वज़न कम होगा, नहीं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो कि वज़न को बढ़ाते हैं, प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें मिलके, और बॉडी में दूसरे बहुत सारी चीज़ें कंपोनेंट है, अगर आपकी लथार्जिक लाइफ है तो आपका वज़न पक्का बढ़ सकता है और सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ता है स्ट्रेस की वजह से
0: जी।
1: जब आप स्ट्रेस अंदर लेते हो आपके खाने का तरीका उसकी वजह से गलत हो जाता है कि जैसे आप बहुत अर्जेंसी में खा के चले जाते हो, आपका वज़न बढ़ने का आधे से ज़्यादा कारण वो है, या फिर आप जितनी कैलोरीज अंदर ले रहे हो या जितना खाना आप अंदर ले रहे हो उसको आप पचाते नहीं हो, क्योंकि आपका काम, जैसा कि आपने बताया कि आजकल हम कंप्यूटर या हम लोग सिस्टम ओरिएंटेड हो गए हैं, तो इसलिए छोटे छोटे बीच में गैप लेके माइक्रो प्रैक्टिसेस आप करिए तो जिससे कि आपका हेल्थ बढ़ा रहे और आपको ओबेसिटी ना हो।
0: तो स्ट्रेस तो आजकल हर कोई कहता है, ये बहुत बड़ी, ये स्ट्रेस जो है ना एक बहुत बड़ी वर्ड हो गई है आजकल, बहुत भारी वर्ड हो गई है, सब कहते हैं आह मैं बहुत स्ट्रेस ले रहा हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस की वजह से मैं बीमार हो गया, स्ट्रेस की वजह से मेरे बाल झड़ रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से चेहरे में झुड़ियाँ। ये जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो इसका कारण क्या होता है, और इसका सॉल्यूशन तो आपने बताया ही, लेकिन इसका मेन कारण क्या होता है? ओवर थिंकिंग।
1: हम लोग अंदर चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू करते हैं, हम बाहर नहीं फेंकते, ओवर थिंकिंग भी है, और उसके बाद में जैसे कि नींद लोगों की पूरी नहीं हो रही है, जब वो 8 घंटे बेड पे हैं, खाना वो ढंग से नहीं खा रहे हैं, उनको टाइम नहीं है, तो ये दो चीज़ें अगर आप करेक्शन कर लें कि आप अगर सोए हैं ठीक है बेड पे, पर नींद आपको सॉलिड आना, तो नींद सॉलिड आने के लिए आपको, अगर नींद सॉलिड आती तो भूख भी सॉलिड लगेगी
0: जी,
1: तो ये दो चीज़ें आपकी करेक्ट हो गई कि नींद आपको सॉलिड आने लगी और भूख आपको सॉलिड, तो स्ट्रेस वर्ड आपका ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेस वर्ड के लिए 0 1

0: 1, 2, 3, 4
1: ये कॉन्सेप्ट आप एडॉप्ट कर लीजिए जो कि आपको समझ में आ गया है और उसको आपको करना है. उसको अगर आप फॉलो करेंगे सिंसियरली, 32 दांतों का पूरे वर्ल्ड में आजकल सबको पता चल गया है, तो कम से कम अगर आप कितना भी हरी में हैं तो 20 बार जरूर अपने एक बार मुंह में आपने कुछ डाला तो चबाइए कम से कम. ओके, और ये वाला आप फॉलो कीजिए 0-4 टेक्निक, तो इससे आपका स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा. और जो माइक्रो प्रैक्टिसेस हमने बताई है 1 मिनट की, कि जैसे आपने स्माइल करके बैठ गए हैं, ठीक है, फिर आपने डीप ब्रीदिंग किया अगले मिनट, फिर अगले मिनट आपने कॉन्शियस वॉक की, मस्ती से वॉक कर रहे हैं, तो वैसा वैसी सारी प्रैक्टिस छोटी छोटी आप कीजिए जिससे कि आपको
0: रिजल्ट
1: तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए.
0: मैं अभी थोड़ी कॉन्शियस हो रही हूँ अपने स्माइल के बारे में और मैं स्माइल के साथ साथ जब मैं ब्रीथ भी कर रही हूँ ना, तो मैंने कभी अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं दिया. वो तब होता है जब हम लोग बैठते हैं योगा के लिए, डीप ब्रीथिंग करो तो ये हो जाता है. लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा, जब आप बात करें तो मेरा ऑटोमेटिकली मेरा जो दिमाग है ना वो मेरे सांसों पर आ रहा है और मैं फील कर पा रही हूँ कि हाँ मैं ब्रीथ कर रही हूँ. तो हमें अपने ब्रीदिंग पर हमेशा हमें कॉन्शियस रहना चाहिए जब आप सांस ले रहे हो, जो कि हम करते नहीं है. क्योंकि जब हम बात मैं आपसे बात कर रही हूँ, किससे बात करते तो हम अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान नहीं देते. लेकिन जब आप ध्यान देते हैं तो आपकी सांसें गहरी हो जाती हैं, एंड यू कैन फील, आप ये अंदर तक जा रहा है और इसे हम फील कर सकते हैं, जो कि शायद पहले हमने कभी कोशिश नहीं की, शायद हमें पता नहीं था. लेकिन अभी आई होप कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो अपने सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, अपने ब्रीदिंग सिस्टम पर ध्यान दे रहे हैं. और अगर आप लोग हमारे सुन रहे हैं इस समय, अगर आप लोग उसके बारे में एक बार सोचें, एक बार सोचने की कोशिश कीजिए, तो जब आप सांस ले रहे हैं उस पर ध्यान देंगे तो अंदर कुछ लगता है कि कुछ असर हो रहा है.
1: ह्यूमन बीइंग, आपने जो कहा वो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, बहुत अच्छा है. ह्यूमन बीइंग कॉन्शियस बीइंग है, एंड नॉट ओनली कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस बीइंग है. तो जो आप चीज़ें ध्यान से, जितना ज़्यादा अवेयरनेस और ध्यान से आप करते हैं उसमें उतना ज़्यादा बदलाव और आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है. तो अभी हम कहते हैं ना ध्यान से करना, बी केयरफुल, राइट. तो वो केयर फ्री का एटीट्यूड आप जितना अडॉप्ट करते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपनी अंदर की दुनिया से कनेक्ट करने के लिए. और जितना आप अंदर की दुनिया से अपने साथ कनेक्ट रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता है कि अब हमें कैसे खाना है, कितना खाना है, कब नींद आ रही है. तो आप फिर तुरंत अच्छा सोने लगेंगे. और जितना आप डीप सोएंगे, साउंड सोएंगे, उतना आपका स्ट्रेस लेवल जीरो होने लगे.
0: कुछ लोगों का मानना होता है कि जो लोग रात को सोते हैं खराटे लेते हैं, कहते हैं ये घोड़े बेच के सो गई तो खराटे लेके, यानी कि ये बहुत अच्छी नींद सो रहा है, ये गलत है.
1: खराटे लेना अच्छी नींद लेना नहीं है. खराटे जो ले रहे हैं उनका माइंड नींद में भी चल रहा है
0: जी,
1: उनका माइंड अभी शांत 100% नहीं हुआ है. तो खराटे ठीक है, थोड़ा सा कभी बीच में खराटे आ जाए बात अलग है, पर कंटिन्यूस खराटे लेना एक टाइप की बीमारी माना जाता है और उसको ठीक करना चाहिए.
0: और उसको ठीक करने का कोई इलाज?
1: हाँ, उसको ठीक करने का, जो कि हमने कहा, अब डीप ब्रीदिंग करते करते सोइए, सोते सोते बेड पे जब तक आपको नींद नहीं आती आप मेडिटेशन कीजिए या फिर साइलेंट लाफिंग.
0: साइलेंट लाफिंग यानी कि ओके, अच्छा ये साइलेंट लाफिंग होता है, यानी कि आवाज मत करो,
1: पेट को हिलाते जाओ, बेड पे रहो पेट हिले, जब आप हंस रहे हैं तो पेट पूरा अंदर की तरफ खाली हो जाए.
0: ओ,
1: पूरा अंदर खींचते जाएं आप, और उसको रिदम से करें. जितना रिदमिक आप करना शुरू करेंगे ना तो आपके अंदर की रिदम
0: मैं कोशिश कर रही हूँ.
1: आपने बहुत अच्छा किया है.
0: मैं कोशिश कर रही हूँ करने
1: तो वो सेटल होने लगेगी और आपको नींद चुटकियों में आ जाएगी, जो कि खराटे
0: जी
1: के बिना वाली होगी.
0: तो यानी कि जितने भी लोग खराटे लेते हैं वो घोड़े बेच के नहीं सोते, उनको बीमारी है. और इस बीमारी को ठीक करने का सही तरीका है कि आप अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए. और अगर आपने जैसे बताया कि साइलेंट लाफिंग, यानी कि मुंह बंद, हंस रहे हो, पेट अंदर जा रहा है और आपकी पेट जो है वो हिल रही है, इसका मतलब ये है कि ये आप एक्सरसाइज कर रहे हो. अगर आप रोज़ करते हो

0: तो ये खनाटे लेना। लेकिन क्या इसको नोज से नेजल का कोई प्रॉब्लम, कोई लोग कहते हैं नाक बंद है ये है, तो ये जो डीप ब्रीदिंग करते हैं तो खुल जाता है?
1: अगर आपका ध्यान भी उसी तरफ चला गया और आप नोस्टिल में एंटर करना सीख गए, इसीलिए बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसीजर कराने पड़ते हैं। जैसे हमने 26 वर्ड एक साल में सीखे थे, ए बी सी डी ई एफ जी,
0: जी जी
1: राइट, तो इसीलिए इसके लिए थोड़ा सा टाइम अगर आप देंगे, फिर आपको एक एक मिनट की प्रैक्टिसेस
0: आराम
1: से कहीं पे भी बैठ के कर लेंगे और अपने लाइफ को स्ट्रेस से बचा के जॉय की तरफ लेके जा पाएंगे और मस्ती से जीवन जीना शुरू कर देंगे।
0: तो ये जो लोग कहते हैं स्ट्रेस है, ये जो जैसा आपने कहा कि हमारी जो लाइफ है, हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, इसमें सारी परेशानियां हमने खुद डाली हैं। हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, हम यहाँ से वहाँ भागते हैं, हम ठीक से सोते नहीं हैं, रात को रील्स देखते हैं, फिर उसके बाद जो भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देर से खाना खाते हैं, रात के 10-11 बजे खाना खाते हैं, जैसे खाना खाया थक गए सो गए खराटे ले लिए, यानी कि हम अपने आप को, ये कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, तो ये हम अपने हमारे ये जो सिचुएशन है कि हम बीमार हैं, ओवरथिंकिंग हो रही है, हमारा वेट गेन हो रहा है, इस सब की जिम्मेदारी हम खुद हैं, क्योंकि हमें अपनी जो लाइफ है उसे प्लान करना नहीं आ रहा है ना।
1: बिल्कुल सही है। तो इसलिए अगर आप वेलनेस सेंटर्स में जाके अपने आप को हेल्प करते हैं तो उससे आपकी बॉडी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन्स हो जाता है और आपका डिटॉक्स, जैसे आप घर को रोज क्लीन करते हैं, बॉडी के अंदर को आपने कभी क्लीन किया, मन के अंदर को आपने कभी क्लीन किया?
0: नहीं।
1: तो ध्यान जो है, ब्रीदिंग जो है, वो मन के अंदर को करता है, मेडिटेशन जो है और आपकी 5 तत्वों की जो चिकित्सा है वो आपके शरीर की, आपके इमोशंस की, भावना की क्लींजिंग करता है। तो अगर वो आप पीडियोट्रिकली बीच बीच में, जैसे 3 महीने में 6 महीने में अपने आप को थोड़ा टाइम देके वो अगर कर लें तो अच्छा है। आप स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, जाते हैं क्या, पूछ रही हूँ मैं आपसे?
0: नहीं, हम गए थे ना
1: ठीक है, पर कभी हम हेल्थ स्कूल गए?
0: नहीं।
1: हाँ, तो अभी जमाना है हेल्थ स्कूल जाने का। तो अपनी हेल्थ को बनाने के लिए कुछ आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी ना,
0: जी जी,
1: सीखनी पड़ेगी। तो हमने सालों बिताए हैं, 20 साल 15 साल अपने एजुकेशन के लिए, तो हेल्थ के लिए कम से कम 5 साल एट ए स्ट्रेच, नहीं बीच बीच बीच में, जो कि आप चाहे 2 साल में 3 साल में 4 साल में 5 साल में बीच बीच में आप थोड़ा टाइम अपने आप को देते रहिए, तो जिससे कि आपका स्ट्रेस वर्ड 0 होने लगेगा या मिनिमाइज होने लगेगा, काम तक रहेगा और उसके बाद में मस्ती मस्त।
0: अभी मैंने अभी तक जो भी सीखा आपने आपसे, मैं इसी कंक्लूजन पे आती हूँ कि आप जो भी करो बी कॉन्शियस
1: 100% बी सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ अवेयर एंड फिर करो।
0: आप सांस ले रहे हो, आप अभी आपने सारी जो समस्याएं हैं सबका समाधान दिया, आपने बोला ना कि स्माइल करो, तो हम तो स्माइल देखते हैं लोगों को, हेलो कैसे हो, स्माइल करते हैं।
1: आप स्माइल दूसरों के लिए कर रहे हैं,
0: हाँ,
1: अब से अपने लिए भी करिए।
0: तो वही, तो अभी आप अपने लिए करोगे और जब आप करोगे तो आप उस पर ध्यान दे रहे हो, है ना, आप उसके बारे में सोच रहे हो, उस पर ध्यान दे रहे हो, तो खुशी और ज़्यादा दुगनी हो जाती है। अभी मैं बात कर रही हूँ, हंस रही हूँ, दुगनी हो जाती है। जब आप खाना खा रहे हो तो एवरी बाइट को एन्जॉय करो, जो हम नहीं करते, मैं खुद नहीं करती।
1: आपने इतना मुश्किल से खाना बनाया उसको एंजॉय कर।
0: मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं 5 मिनट में खा लेती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना पड़ता है, क्योंकि आपको और भी बहुत कुछ करना होता
1: मुझे
0: है।
1: मुझे वेदिता जी पक्का विश्वास है कि आज ही से आप बदल देंगे।
0: हाँ, मैं अभी से बदल देंगे।
1: हाँ,
0: तो
1: और
0: ये
1: आज आप इत्मीनान से खाना खाएंगे, शांति शांति से बैठ के आप खाना खाएंगे, ठीक है? तो कम से कम 40 मिनट्स आपको बैठ के खाना खाना है
0: जी,
1: फिर आप देखिए बेड में जाते कैसे सो जाते हैं आप।
0: हाँ, तो ये भी होता है ना कि आप तो 40 मिनट, चलो 30 मिनट मेरे सामने खाना है, 30 मिनट लेके मैं आराम से बैठ के खा रही हूँ, तो मेरे बगल में जो लोग हैं कहते हैं देखो 30 मिनट लेती हैं खाना खाने के लिए, तो ये एक ताना बन जाता है कि अरे यार ये तो 30 मिनट तक बैठती हैं खाना खाने के लिए, वो ताना मारते हैं, तो उस ताना ना सुनने की वजह से लोग जल्दी जल्दी खाते हैं। तो अभी अगर कोई कुछ कहे, तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप अगर कम से कम 30 मिनट अपना जो खाना है उसको

0: आराम से बैठ के धीरे धीरे खाएं, उसको फील करें, उसको एंजॉय करें, है ना,
1: उसको
0: एंजॉय करें। अगर हर कोई ऐसा करने लगेगा तो कोई ताना मारने वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्या है ना कि लोग जैसा कि ना भागा दौड़ी हो रही है आजकल लाइफ में,
1: वो ताना ने उनको क्या समझा नहीं है कि वो जरूरी है आपके शरीर के लिए। एक बार उनको समझ में आ जाएगा ना कि वो आपके शरीर के लिए जरूरी है। आप जो दौड़ रहे हैं वेदिका वेदिता जी, वो सिर्फ इसीलिए कि आप थोड़ा जो भी हरी में खा रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि उसको अब जब शांति से खाएंगे तो आपके घर में, आपके ऑफिस में और ज़्यादा शांति, स्ट्रेस फ्री लाइफ क्रिएट होनी शुरू होगी, तो उसका असर सबको दिखना शुरू होगा।
0: और मुझे ये भी लगता है कि जब आप एक अपने घर में माता, चलो माता पिता हैं सब कोई हैं, भाई बहनें होती हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, फिर एक टाइम आता है सिर्फ पति पत्नी और बच्चे रह जाते हैं, तो मुझे लगता है कि घर का जो कामकाज होता है उसको शेयर करना बच्चों के साथ, और एक पति का जो योगदान होता है, वो कहते हैं ना कि हम तो घर में, हम तो वी आर द मैन ऑफ द हाउस, तो क्या होता है कि वो करते नहीं है कुछ, बहुत कम ऐसे होते हैं जो खाना बनाते हैं।
1: होता तो ऐसे है कि गृह लक्ष्मी तो आप हैं।
0: हाँ,
1: गृह लक्ष्मी तो आप हैं।
0: सब कुछ करना पड़ता
1: है। गृह लक्ष्मी तो हमने सुना नहीं आज तक,
0: तो हमें तो क्या करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है ना घर पे, तो
1: वो आपकी महानता है कि आप उसको करते हैं
0: जी।
1: और करते रहिए, दूसरों को भी धीरे धीरे उसमें सहयोगी बनाइए कि थोड़ा वो भी आपको हेल्प कर सके।
0: आज की जनरेशन में हम देख रहे हैं कि लड़के जो हैं अभी खाना पकाने में थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और घर के काम काज में भी जो आज की जनरेशन है, मैं उनके बारे में बोल रही
1: हूँ, वो लोग हाँ। वो बहुत समझदार हैं।
0: मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि वो नहीं कहते कि भाई हम तो मैन ऑफ द हाउस हैं, हम झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे। वो पहले करते, कहते तुम कपड़े पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो, हम झाड़ू पोछे में करते हैं, तो मैं खाना बना, तुम ये करो। तो ये जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो ऐसे कपल्स जो होते हैं, वो कपल्स जो हैं, मैं कह सकती हूँ कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो बैठ के 30 मिनट खाना खाएंगे, वो बीच बीच में हंसेंगे, वो बीच बीच में अपना, पता है जब दोस्त की तरह, आप ये जो आपने अभी समझाया, अगर हमारी जो अभी की जो जनरेशन है ये सीखते हैं तो आने वाली जो जनरेशन है इसी के साथ बड़े होंगे। तो अभी अगर हमने इस पीढ़ी को समझा दिया, सिखा दिया कि जो भी करो उस पर ध्यान दो, सोच समझ के करो, कॉन्शियस रहो उस पर कि आप क्या कर रहे हो, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, तो आपने वो क्या करेंगे, उनके बच्चे उनको फॉलो करेंगे, वो उनको सिखाएंगे कि नहीं बेटा खाना हमेशा इतना टाइम लेकर खाना चाहिए, आपको टाइम लेकर ये सब करना चाहिए, समय के साथ ये सब करना चाहिए। वो जब बैठेंगे और ऐसे हंस रहे हैं तो बच्चा आएगा, वो भी आके बैठ जाएगा, वो भी कर रहा है, तो वो बच्चा जो है अपनी माँ को हंसेगा नहीं, क्योंकि मम्मी ने उसके पहले बता दिया कि हंसना ज़रूरी होता है। तो वो बच्चा घर पर बैठ के एक टाइम आएगा जो वो भी करेगा ऐसे, क्यों हंस रहा है। दूसरी बात ये भी है कि आप थोड़ी देर बैठ के सांस ले रहे हो, आप टीवी देख रहे हो,
1: आप सेल्फ कॉन्शियसली आपको ब्रीदिंग,
0: आप बच्चे को बेटा एक्सरसाइज करो, चलो ब्रीदिंग करो, वो बच्चा करेगा, तो धीरे धीरे करके बच्चे की आदत हो जाएगी। तो बच्चे को सिखाने हर एक जनरेशन का, अगर अभी हमने इस जनरेशन का समझा दिया तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो इसी के साथ, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई परेशानी होगी, क्योंकि हम मानते हैं कि हम एक मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर सब कुछ, इतना सब कुछ आसान हो गया है। जैसे कहती है ना, पहले लोग साइकिल लेके खेतों में काम करते थे तो डोले शोले बनते थे और उनका एक्सरसाइज होता था, उनकी उम्र लंबी होती थी, डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि जितने भी शुगर होते, क्योंकि चीनी इंसान क्यों लेता था, एनर्जी के लिए काम कर रहा है, उसको वो चीनी चाहिए क्यों, उसको कार्ब्स क्यों चाहिए, 10 पराठे क्यों खा रहा है, उसको वो कार्ब्स चाहिए क्योंकि उसको बर्न करना है। लेकिन आजकल जो है हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग बर्न नहीं करते। हाँ, जो लोग जिम जाते हैं वो करते हैं,
1: इसीलिए आज की डेट में हमें कॉर्पोरेट फूड खाना चाहिए, कॉर्पोरेट फूड जो कि आपका इजीली डाइजेस्ट हो सके
0: जी,
1: तो हम लोग कॉर्पोरेट फूड पे ज़्यादा फोकस करते हैं।
0: जब हम कॉर्पोरेट फूड की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है?
1: कॉर्पोरेट फूड में जैसे कि हमने बात किया कि 80% जो कि नेचुरल सोर्सेज से आपको मिलता है, सारे नट्स हो गए, सीड्स हो गए, विटामिन जो कि सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे कॉर्पोरेट फूड में आते हैं जो कि फास्ट डाइजेस्ट होते हैं आपके सिस्टम में।
0: और कुछ खाना ऐसा होता है जिसको आप कच्चा ले सकते हैं, कुछ होता है जो आपको स्टीम करना पड़ता है।
1: ये जो कॉर्पोरेट फूड है वो मैक्सिमम चीज़ें आप रॉ ले सकते हैं
0: जी,
1: वही कॉर्पोरेट फूड है जो आप रॉ ले सकते हैं और जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होता है, उसको हम कॉर्पोरेट फूड का कैटेगरी दिया है। क्यों कैटेगरी दिया है?

0: कि जैसे कि कॉरपोरेट फूड, फास्ट डेवलपमेंट होता है कॉरपोरेट बिजनेस का, इसीलिए इस फूड में भी आपको फास्ट डाइजेशन मिलता है। छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप अगर आप संतरा खाते हैं और एक ब्रेड खाते हैं तो कौन सा जल्दी डाइजेस्ट होगा?
1: संतरा।
0: संतरा, तो इसलिए संतरा कॉरपोरेट कैटेगरी में आ गया कि जो कि आपके शरीर को तुरंत न्यूट्रिशियस देगा और तुरंत हेल्थ देगा।
1: लेकिन जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो या स्टीम करना पड़ता है या तो फिर उसको
0: जो, हाँ, जो नहीं कच्ची खाई जा सकती उनको आप स्टीम कीजिए।
1: आप क्यूकम्बर खा सकते हैं, चलो ये तो ठीक है,
0: क्यूकम्बर खा सकते हैं,
1: कैरेट ग्रेट कर सकते हैं, चुकंदर हो गया,
0: मूली हो गया, रेडिश हो गया, वो सब आप जो कच्चा खा सकते हैं, काफी लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सारे आप कच्चे खा सकते हैं। तो वो जो जो आप कच्चे खा सकते हैं डार्क ग्रीन कलर के, तो वो सब आप कच्चे खाइए। जो आपको लगता है कच्चा नहीं खाया जाता आपसे, उसको बॉयल कीजिए, स्टीम कीजिए, बेक कीजिए, एयर फ्रायर कीजिए और आप खाइए।
1: बिल्कुल,
0: तो वो आपको कॉर्पोरेट फूड की तरफ ले।
1: मैं सच्ची कहूँ, अगर मुझे और एक घंटा मिलता आपसे ऐसे बात करके तो मैं आपसे बहुत कुछ और निकाल सकती थी। और लेकिन जितना भी हमें आज मिला उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर नीतू जैन, क्योंकि आपसे हमने बैठे बैठे बहुत ऐसी छोटी छोटी टिप्स सीख लिए जो कि मुझे लगता है कि अभी जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको पता चल गया कि भाई इतना आसान है
0: हेल्दी रहना,
1: हेल्दी रहना
0: और वेलनेस की तरफ रहना पूरी जिंदगी। आप लाइफ में मजा करने के लिए, बीमार पड़ने के लिए नहीं है, तो हम मजा करना,
1: म्यूजिक चलता है डांस करो, लेकिन खुश हो के, कॉन्शियस होके डांस करो, बोलो कि खुश हूँ डांस करो, तो ये होता है। तो हमारा जो कार्यक्रम है यहाँ पर अफसोस समाप्त होने जा रहा है। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप मॉरिशस आएंगे तो आपसे फिर कुछ और सीखने का हमें पूरा मौका मिलेगा।
0: धन्यवाद, धन्यवाद वेदिता जी,
1: आप बहुत बहुत बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत धन्यवाद। तो चलिए श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का जो कार्यक्रम है, आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त होता है। एक स्पेशल कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए जहाँ पर हमारे साथ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर नीतू जैन ने हमें जीने का बहुत सिंपल सा, साधारण सा हमें कुछ ऐसे नुस्खे दिए हैं जो बहुत इजी हैं और इसमें आपको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे,
0: कहीं भी कर सकते हैं, एनीवेयर एनी टाइम।
1: तो अभी अभी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो चलिए आप लोग भी कीजिए, खुश रहिए। और इसी के साथ जाने का समय हो गया है, आज्ञा दीजिए, शुभ दिन।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
4: नमस्कार और आदाब. साल की शुरुआत में हवाई अड्डे पर एक मुर्शन महिला को गिरफ्तार किया गया था. उसकी हिरासत में गमीज थे जिनका मुतालिया करने के लिए इन्हें फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजा गया और अब शक सही निकला. गमीज में सिंथेटिक ड्रग्स थे. ऐसे ही दूसरे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास बिस्कुट थे जिनमें गांजा था और लॉलीपॉप्स भी जिनमें सिंथेटिक ड्रग्स पाए गए. इस बढ़ते खतरे के मद्देनज़र फोरेंसिक अधिकारियों ने सावधान रहने की अपील की है.

0: है। मुर्शस में खिलौने को खुलेआम बेचा जा रहा है। कई देशों में इस खिलौने पर पाबंदी लगाई गई है। इसे स्क्वीजी डंपलिंग कहा जाता है। दरअसल ये पाया गया कि ये खिलौना बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। मेड इन मोगिस लेबल के लिए एक प्रोग्राम लागू है। 87 सेक्टरों में 31 उद्योग इस प्रोग्राम के लिए काम कर रहे हैं। मुर्शस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की पहल पर मुर्शस कमर्शियल बैंक सहायता दे रहा है और कल मौका में प्रमाण पत्र दिए गए। मौके पर स्थानीय उत्पादकों ने वर्तमान चुनौतियों पर बात की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफ्रीका के सबसे बड़े रईस ज़ादा नाइजीरिया के करोड़पति आदिको दांगोते ने ऐलान किया है कि वो इथियोपिया और जिबूती के बीच ईंधन के नए पाइपलाइन के निर्माण के लिए $660 मिलियन की वित्तीय सहायता देंगे। ये परियोजना 120 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन के लिए है जो 400 मिलियन लीटर ईंधन को स्टॉक करने की क्षमता रखेगा। 18 महीनों में काम शुरू किए जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: Chitti aayi hai, aayi hai, chitti aayi hai.
1: Aapki chitti mili, aapki chitti mili.
3: शुक्रवार 25 सितंबर घड़ी मिला लीजिए 4:03 हो रहे हैं। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज आपकी चिट्ठी इस कार्यक्रम को लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बिल्कुल ठीक हैं। और आज एक ऐसी चिट्ठी के बारे में बात करेंगे, आज एक ऐसी चिट्ठी पर बात करेंगे, आज एक जीवन के ऐसे पहलू पर नज़र दौड़ाएंगे जहां पर एक दोस्त दूसरे दोस्त को चिट्ठी लिख रहा है। अपने रिश्तों के बारे में बात करते हुए, अपने संबंधों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत वही रिश्ते होते हैं जिसे हम बिना किसी शर्त के अपनाते हैं। इसलिए अगर आज हमें अपने से कोई शिकायत है तो उस शिकायत को दिल में लेकर हमें बैठना नहीं चाहिए, बल्कि उसके बारे में बात करनी चाहिए, पहलुओं को समझना चाहिए और एक दूसरे को माफ़ करने की क्षमता होनी चाहिए। और अभी के समय में यदि हम रिश्तों की बात करें दोस्तों, तो रिश्ते अपने आप में बहुत ही उलझते जा रहे हैं। रिश्तों के उलझाने से ज़्यादा रिश्तों को सुलझाने पर हमें ध्यान देना चाहिए। अभी के समय में हर कोई अपने अपने लाइफ में बहुत ही बिजी है। तो चलिए इस चिट्ठी को ही शुरुआत करते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त को ये चिट्ठी लिख रहा है अपने संबंधों के बारे में बात करते हुए। लिखा है, आज बहुत दिनों बाद तुम्हें चिट्ठी लिखने का मन हुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन आज दिल में बहुत सी बातें जमा हो गई है। ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम सब इतने बिजी हो गए हैं कि अपने ही घर के लोगों से बात करने के लिए आजकल वक्त नहीं मिलता है। कभी सोचता हूँ जिस घर में हमने बचपन बिताया, जहाँ पर माँ की आवाज़ से सुबह की शुरुआत होती थी, पापा की डांट में भी प्यार छुपा होता था, भाई बहनों की नोक झोंक से घर में जो मुस्कुराहट है वो जिंदा रहती थी, आज उसी घर में सबके पास अपना अपना कमरा है, अपना फोन और अपनी दुनिया है। और घर का हर सदस्य अपनी दुनिया में इस तरह से खोया हुआ है कि एक दूसरे पर ध्यान तब जाता है जब एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, एक दूसरे का ख्याल तब आता है जब किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या हमारे रिश्ते सिर्फ ज़रूरतों तक सीमित रह गए हैं। हम एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं। हम एक ही छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे की भावनाओं को आज नहीं समझ पाते हैं। एक दूसरे से इतना दूर हो गए हैं कि चाहकर भी इस दूरी को मिटाना आज कितना मुश्किल लगता है ना। चलिए रिश्तों की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है रिश्तों के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। रिश्ते नहीं होते हैं तो हमारा जीवन अपने

आप में बहुत ही अधूरा सा होता है। कभी किसी कारणवश माता पिता से दूर जाना पड़ता है तो जैसे कि एक जीवन में खालीपन सा आ जाता है। वहीं पर जब रिश्तों में नोकझोंक बढ़ जाती है, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, तो वो रिश्ते और भी भारी लगने लगते हैं। हम एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं, शायद इसीलिए आज मैं तुम्हें ये खत लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जिसने कभी भी मुझे बेगाना नहीं समझा। राज नाम का दोस्त अपने रमेश नाम के दोस्त को चिट्ठी लिखकर अपने रिश्तों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके आपसी रिश्ते में इतनी दूरियां आ गई है कि कभी कभार बात करने भी जाता है तो उसे अपने ही घर में अकेलेपन का एहसास होता है। तो चलिए अभी के लिए एक गाने के साथ आगे बढ़ते हैं और आप हमारा साथ देते रहे। रेडियो मनोरंजन पर आपकी चिट्ठी मिलेगी।

0: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
1: आपकी चिट्ठी मिली आपकी चिट्ठी मिली चलिए आपकी चिट्ठी मिली रेडियो मनोरंजन पर आप सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को और बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर राज ने अपने दोस्त रमेश को चिट्ठी लिखी है अपने परिवार के हालातों के बारे में बात करते हुए बदलते संबंधों के बारे में बात करते हुए और उसी चिट्ठी को हम आप तक कुछ सुना रहे हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज लिखता है तुम्हें याद है ना बचपन में हम कितना छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते थे माँ के हाथ का खाना पापा के साथ बाजार जाना भाई के साथ टेलीविज़न के रिमोट को लेकर लड़ना बहन के साथ कपड़े और अन्य चीज़ों को शेयर करना तब ये सारी बातें जो थी इनकी कीमत हमें समझ में नहीं आती थी ये कितने प्रेशियस है ये तब हम समझ नहीं पाते थे आज ये सारे अनुभवों को जब हम जी नहीं पा रहे हैं तब इनके इम्पोर्टेंस को हम समझ पा रहे हैं होता है ऐसा जब ज़िंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है तब उन चीज़ों की कद्र नहीं होती है या कह सकते हैं उन चीज़ों की अहमियत नहीं होती है लेकिन जब ये चीज़ें हमें मिलना बंद हो जाती है जब इनका एहसास हम नहीं कर पाते हैं तब हमें लगता है कि हमारे जीवन से क्या है जो छूट रहा है राज आगे लिखता है अपने दोस्त रमेश को कि हमें लगता था कि ये सब हमेशा ऐसे ही रहेगा कुछ भी नहीं बदलेगा हम ऐसे ही हंसते खेलते रहेंगे एक दूसरे के साथ नोक झोंक करते रहेंगे और जीवन जो है आगे बढ़ता रहेगा चलता रहेगा लेकिन वक्त के साथ लोग किस तरह से और कितने बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता जिम्मेदारियां बढ़ जाती है रिश्तों के बीच अनजानी सी खामोशी आ जाती है और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं लोग व्यस्त हो जाते हैं ये तो समझ में आता है लेकिन जब रिश्तों में खामोशियां बढ़ जाती हैं जब एक दूसरे से हम बात नहीं करते हैं या सामने वाला कुछ कह रहा है और उसका जवाब नहीं मिलता है तब ये सारी बातें बहुत चुभती हैं दोस्त आज तुम अगर मेरे साथ होते तो शायद ये इतना मुझे जो है ठेस नहीं पहुंचती या इतना दुख नहीं होता लेकिन आज एक दोस्त तुम भी दूर हो तो फिर इन सभी बातों की कमियां और भी महसूस हो रही हैं राज आगे लिखते हुए जोड़ता है कि

किसी को नौकरी की फिक्र है तो किसी को बच्चों की पढ़ाई की, किसी को घर के खर्च की तो किसी को अपने भविष्य की। हमारी जिम्मेदारियों ने इस तरह से हमें घेर लिया है कि हम जो है अपने रिश्तों की मिठास को भूलते जा रहे हैं, कल को ये भूलते जा रहे हैं कि ये रिश्ते ही है जो हमारा सहारा है, जो हमारा साथ देते हैं। और सबसे अजीब

अपनी परेशानियां दुनिया से कह देते हैं, लेकिन अपने ही घर वालों से समय के साथ कहने से झिझकते हैं और ये सोचते हैं कि कहीं सामने वाला हमें गलत ना समझे या हम उनकी नज़रों में कम न नज़र आए। जिनके साथ हमने बचपन बिताया, जिनके साथ छोटी से छोटी खुशियां हमने बांटी, बड़े से बड़ी बातों को शेयर किया, आज उन्हीं को हम अपनी परेशानियां कहने से डरते हैं। तो फिर किस तरह के संबंध हम आज जी रहे हैं? बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है, लेकिन संबंधों में इस तरह से बदलाव आएगा रमेश, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और वहीं पर कभी ईगो आ जाता है हमारे बीच, हमारा अहंकार आ जाता है, तो कभी गुस्सा आ जाता है, तो कभी डर आ जाता है, और इन सब के चलते हमारे रिश्ते इतने बदलते जा रहे हैं कि क्या कहें।

0: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
1: आपकी चिट्ठी मिली की चिट्ठी मिली चलिए आप लोगों की जो भी चिट्ठियां हमें मिलती हैं यहाँ पर आपकी चिट्ठी मिली इस प्रोग्राम में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं इस कहानी के साथ जो हम तक पहुंची है किसी के ज़रिए जिनका नाम तो हम नहीं कह पाएंगे लेकिन रिश्तों की बात करते थे जब भी हम रिश्ते नाते संबंधों की बात करते हैं तो कोई जब अपनी कहानी सुना रहा होता है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये तो हमारी ही कहानी है हमारी ही जीवन की दास्तां मानो कोई सुना रहा है ना। और चलिए ऐसा ही होता है जीवन में जो है कभी कभार हमारी कहानी एक दूसरे की कहानियों से मेल खाती है। राज आगे रमेश को लिखता है कि मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं या कह सकते हैं कि प्यार करते थे लेकिन प्यार जताना मानो जैसे भूल गए हैं। आज माँ बार बार कहती है कि बेटा थोड़ा वक्त मेरे पास भी बैठ जाओ और मैं कहता हूँ माँ अभी बहुत काम है। पापा कुछ कहना चाहते हैं लेकिन मैं उनकी बात अनसुनी करके फ़ोन में लग जाता हूँ। भाई की अपनी परेशानियाँ हैं और बहन अपने ज़िंदगी में बिजी है। धीरे धीरे हम एक दूसरे से जो है दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और जब एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ते हैं इसमें खटास आ गई है इसमें कड़वाहट आ गई है। आगे राज लिखते हैं कि कभी कभार मुझे भी मन होता है कि मैं बैठकर अपनों के साथ बात करूं लेकिन ज़िंदगी की जिम्मेदारियों में इस तरह से उलझ गया हूं कि क्या कहूँ। ज़िंदगी की जिम्मेदारियों में इस तरह से मैं बन गया हूँ कि क्या कहूँ। कभी समय निकालने का सोचता भी हूँ तो इस तरह से काम आ जाता है कि समझ में नहीं आता है कि काम को समय दूँ या अपने परिवार के सदस्यों को समय दूँ। भाई भी अपनी परेशानियों से जूझता है कभी कभार लगता है कि वो भी बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है। बहन भी अपनी परेशानियाँ लेकर पहले जैसे मेरे पास आया करती थी अपनी हर बात कहा करती थी आजकल वो भी खिंची खिंची सी रहती है। हमने ये मान लिया है कि परिवार तो अपना है जब चाहे बात कर लेंगे लेकिन ये भूल जाते हैं कि जैसे एक पेड़ को हम पानी नहीं देते हैं तो समय के साथ वो पेड़ सूख जाता है और धीरे धीरे मरने लगता है। रिश्ते भी कहीं ना कहीं ऐसे ही होते हैं। अगर रिश्तों को हम नहीं समझेंगे समय पर रिश्तों पर ध्यान नहीं देंगे रिश्ते पर विश्वास नहीं करेंगे प्यार नहीं करेंगे रिश्ता भी कहीं ना कहीं समय के साथ जो है मरने लगता है और वक्त के साथ रिश्तों में कमियां आने लगती है। वक्त के साथ रिश्तों में प्यार कम हो जाता है एक दूसरे के प्रति सम्मान कम हो जाता है संवाद कम हो जाता है अपनापन कम हो जाता है। रिश्ता जैसे कि हमने कहा एक पौधे के जैसे है और रिश्तों को भी पौधे के जैसे सींचना बहुत ज़रूरी होता है।

0: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
1: आपकी चिट्ठी मिली की चिट्ठी मिली
2: चलिए राज और रमेश की इस कहानी को हम आगे ले जाते हैं जो एक दूसरे के साथ ये बांट रहे हैं और राज आगे रमेश को लिखते हैं कि एक दिन माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। बात बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन जब मैं उनके पास बैठने गया तो उन्होंने इतना कहा कि तुम मेरे पास अब तो बैठते ही नहीं हो। ये बात छोटी सी थी लेकिन मेरे दिल को इस तरह से चुभ गई कि क्या कहें। उनकी आवाज़ में शिकायत कम और उदासी ज़्यादा थी। उस पल में मुझे महसूस हुआ कि हम अक्सर अपने परिवार के लोगों को चीज़ें दे देते हैं जो उनको चाहिए, उनकी ज़रूरत की चीज़ें लाकर दे देते हैं, लेकिन सबसे महंगी चीज़ जो है वही देना भूल जाते हैं। और ये एक ऐसी महंगी चीज़ है जो कहीं ना खरीदी जा सकती है ना कहीं बिकती है। यह है समय, प्यार, अपनापन और सम्मान। पैसों से तो हम आसानी से तोहफे खरीद सकते हैं, सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, ज़रूरी सामान खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत माता पिता को अपने बच्चों से होती है वो है उनका समय, उनसे मिलने वाला प्यार और सम्मान। माँ को महंगे तोहफे नहीं बल्कि बेटा चाहिए था। पापा को किसी बड़ी मदद की ज़रूरत नहीं थी बल्कि उनके पास कोई चाहिए था जो उनसे पूछे कि सब ठीक तो है, मैं आपके लिए कुछ कर दूँ। और शायद भाई को सलाह नहीं, उपदेश नहीं, एक दोस्त चाहिए था। बहन को कोई डांटने वाला नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उसकी बात को बिना जज किए समझ पाए। और तब मुझे समझ में आया कि कभी कभी हम परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन शायद वो नहीं कर रहे होते हैं जो उन्हें सच में चाहिए होता है। चलिए अभी हमारे कुछ बहुत ही खास दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, इस गाने को हम उनके नाम करते हैं। हमारे साथ दीपशिका है, गिनीशा है, नीतू है, तो ये प्यारा सा गाना आप सभी के नाम और हमारी दोस्ती के नाम।

0: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
1: आपकी चिट्ठी मिली आपकी चिट्ठी चले रेडियो मनोरंजन पर आपकी चिट्ठी मिले इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज की इस चिट्ठी को आगे ले जाते हैं, इस कहानी को आगे ले जाते हैं। राज लिखते हैं कि फिर एक दिन मेरे और मेरे भाई के बीच किसी छोटी बात को लेकर बहुत कहासुनी हो गई। हम दोनों ने गुस्से में एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें कही जो शायद नहीं कहनी चाहिए थी। घर में सब सामने थे लेकिन माहौल ऐसा था मानो कि हम दोनों के बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई जिसे पार करना आज बहुत मुश्किल लगता है और कभी कभार जो है हमारे बीच में ये दूरियां अब कड़वाहट बनते जा रही है। और अब जब हम एक दूसरे का सामना करते हैं तो एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पाते हैं।

मुझे लगता है कि पहले भाई बात करेंगे, शायद उन्हें लगता है कि मैं बात करूंगा, और इसी पहले कौन के चक्कर में दिन निकल रहे हैं। फिर मुझे एक बात समझ आई कि परिवार में एक दूसरे को जीतने से ज़्यादा एक दूसरे के रिश्तों को बचाना ज़रूरी होता है। हर बहस में जीत जाना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभार हार मानकर चुप रहने में भी समझदारी होती है। ईगो कुछ पल के लिए हमें मजबूती का तो एहसास दिलाता है, यह एहसास दिलाता है कि हम बहुत ही स्ट्रांग हैं, सामने वाला हमसे दब कर रह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ईगो हमारे रिश्तों को कब खराब कर देता है पता ही नहीं चलता। राज आगे लिखता है कि रमेश, मुझे लगता है कि आज के समय में परिवार की सबसे बड़ी ज़रूरत है एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। सिर्फ ज़रूरी बातें ही नहीं, बल्कि दिल की हर एक बात, हर एक जज्बात, हर एक एहसास। आज तुम्हारा दिन कैसे था, चाहे छोटा ही सवाल क्यों ना हो, ये सवाल अपने आप में आज मुझे लगता है बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि परिवार के दो सदस्यों के बीच बातें शुरू होती हैं। वो अपने दिल की बात कहता है, मैं अपने दिन का हाल सुनाता हूँ, और ऐसे बोलते बोलते कभी कभार हम एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो सालों से हमारे भीतर दबे हुए हैं। कभी माँ से पूछना कि उनका दिन कैसे रहा, बच्चे को सिर्फ पढ़ाई में कैसे चल रहा है, या कितने मार्क्स आए, या एग्ज़ाम की तैयारियां करनी है, इस बात पर जोर न देते हुए शायद बच्चों से हम उनके दिल की बात पूछें कि वो आज क्या करना चाहते हैं। किसी रिश्तेदार को महीने बाद मिलने से अच्छा है कि बीच बीच में एक दूसरे का हाल पूछते रहे। कभी कभी एक दूसरे के यहाँ जो हमारे बहुत करीब है, बस अचानक ही फ़ोन करके चले जाए कि चलिए आज मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे बीच की बड़ी बड़ी दूरियों को मिटा देता है, आज मुझे यह एहसास हो रहा है। आगे राज कहता है कि एक बात मैंने सीख ली है कि परिवार का मतलब ये नहीं है कि सब लोग हमेशा हमारी हर बात पर सहमत रहें। हर इंसान अपनी सोच, अपने सपने, अपने नज़रिए को देखता है, और हर एक के लिए अपनी सोच, अपना नज़रिया सही है। हम उन्हें सलाह दे सकते हैं, लेकिन अपने जैसा बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। माँ और पिता के बीच, बच्चों के बीच आज जनरेशन का गैप आ गया है। भाई बहन की पसंद अलग अलग हो गई है। पति पत्नी की सोच हर एक बात पर मिलती नहीं है, लेकिन अलग अलग सोच होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे रिश्ते अलग हो रहे हैं। तो आज इतने बड़े झगड़े के बाद रमेश, मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम सभी गलत है। हम सभी अपने रिश्तों को जो है ग्रांटेड ले लेते हैं, सोचते हैं कि ये तो यही है, कहाँ जाएंगे,

0: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
1: आपकी चिट्ठी मिली आपकी चिट्ठी मिली। चलिए आज के इस चिट्ठी को हम आगे ले जाते हैं और राज जो है अपने दोस्त रमेश को अपने घर के हालात बताते हुए अपने जज्बात लिख रहा है। राज लिखता है कि मुझे एक और चीज़ का एहसास हुआ कि परिवार सिर्फ खुशी बांटने के लिए नहीं होता है, मुश्किल के वक्त एक दूसरे का सहारा बनने के लिए होता है। जब दुनिया हमारी सफलता देखती है तो हमारे साथ बहुत लोग खड़े होते हैं, लेकिन जब हम किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं, किसी कठिनाई का सामना कर रहे होते हैं, तो तब कहीं ना कहीं हमारा परिवार ही है जो हमारे साथ खड़ा होता है। ज़िंदगी जो है हमें मिली है ताकि हम अपने परिवार के साथ अच्छे से बिता पाए, इसलिए किसी अपने को उस वक्त हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जब उन्हें सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत होती है। हो सकता है कि उसे सल्यूशन की ज़रूरत ना हो, बस वो आपका साथ चाहता हो, और कभी कभार इन्हीं छोटी छोटी बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। आज जब मैं मुड़कर देखता हूँ रमेश, तो लगता है कि हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, नौकरी, पैसा, घर, गाड़ी, नाम, सोशल स्टेटस, लेकिन अगर इन सब के बीच हम अपनों को ही खोते जा रहे हैं तो फिर इस खुशी को हम किसके साथ बांटेंगे। आगे राज लिखता है कि आखिर में मेरे दोस्त

मैं तुमको बस इतना कहना चाहता हूँ कि परिवार परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन परिवार जो है प्यार करने के लिए ज़रूर होता है। हर घर में जो है मतभेद होते हैं, गिले शिकवे होते हैं, कभी आंसू होता है, कभी दर्द होता है, कभी छोटी मोटी नोकझोंक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं सब के बीच रिश्तों की जो खूबसूरती है वो नज़र आती है। काफ़ी दिनों बाद इस ख़त के ज़रिए मुझे तुमसे बात करने का मौका मिला, अपनी दिल की बात कहने का मौका मिला, और जो है उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे यहाँ भी सब कुछ अच्छा है और तुम मेरे इस ख़त का जवाब ज़रूर दोगे। तो चलिए, यहाँ पर आज का ये जो खत था, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को लिखा था अपने घर परिवार की बातों को बताते हुए, अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हुए। कभी कभार हमारी ज़िंदगी में दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्त इसलिए नहीं होते हैं कि हम उनसे कुछ ले पाए या उन्हें कुछ दे पाए, बस दोस्त इसलिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं जो हमारे दिल की बात समझ पाए, जिन्हें हम बेझिझक सब कुछ कह पाए, और हमें पता है कि वो दोस्त होने के नाते हमें जज नहीं करेगा, हमारी बातों को गलत नज़रिए से नहीं देखेगा। तो चलिए, आज इसी के साथ आपकी चिट्ठी मिली ये प्रोग्राम ख़त्म होने को चला। आपका साथ हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5 बजे जो है आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कलाकार के बाद, और हमारी आपकी मुलाकात अभी 5 बजे से होगी रेडियो मॉरिशस पर। तो आप हमारा ऐसे ही MBC रेडियो पर साथ देते रहिए। धन्यवाद। RM3 रेडियो।

0: 94.6, 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
1: घड़ी मिलाते चला 5:03 हो गए अभी अभी सुन ले जा बहुत ही रोचक कार्यक्रम कलाकार के बात अभी आए लेकिन उससे पहले आपकी चिट्ठी मिली और अभी के लिए कलाकार के बाद
2: कलाकार के बाद कार के बाद
1: प्यारे प्यारे श्रोतागण भाई बहन लोग संगत्या लोगन कैसे हुआ जा आज तो शुक्रवार के सांझ बहुत ही खुशी हो गल हुआ काहे कि कल से वीकेंड शुरू होत बाते तो चला आज हमनी के कलाकार एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि दो से भले तीन कलाकार हमनी के स्टूडियो में उपस्थित होवन जा जोन पहल का कलाकार है सभी लोग ओकर आवाज त जाने ल जाओ ओकर आवाज अभी सुनब जा तो लोग असमंजस में पर जब कि ई आवाज हमनी के स्टूडियो में कैसे स्वागत कर ली सर तो चला ई आवाज पहले

ने सुना एक गाना के रूप में। चलो सुना। और अभी आवाज सुनबा तब पहचान जाएबा कि ये हमनी के जो कलाकार होवन ई होवन के, तो लोग अभी ओकर आवाज सुनबा जा।

जी हाँ, कलाकार के बात डोन जोन चलीला हर शुक्रवार के सांझ 5 से लेकर 6 बजे तक, बल्कि 5 से लेकर 5:50 तक। और ठीक 5:50 पर आप लोग सुन जाकिर जानकी के प्रोग्राम हमारी धरोहर। और बीच बीच में कलाकार के बाद प्रोग्राम में आप लोगों के हम मौका देवब जा कि हमने के प्रश्न के उत्तर देव जा, जो हमने के कलाकार गाए, जो हमने के कलाकार बात करियन, तो ओकर से हम एगो छोटा सुन प्रश्न निकाल के तोहर से पूछब जा। और हम तो जानिला कि तो लोग तो प्रश्नोत्तर के खूबे खूबे जवाब अच्छी तरह से देवे रजा। ई जोन प्रोग्राम है तोहर मनपसंद प्रोग्राम है, और ई जोन चैनल है तोहर मनपसंद चैनल रेडियो मनोरंजन और रैम फ्री है। हमनी के श्रोतागण, हमनी के भाई बहन लोग, संगतिया लोगन, साथी लोगन, मित्र लोगन, इतना दोस्त के हम तब प्यारी वाची तोहर के बोल देनी है सर, तो चल हमनी के कलाकार के आवाज में ई धमाकेदार एंट्री में है सुना एगो भजन होई, नहीं तो गाना होई, तोहलोगे अंदाजा लगा हुआ जा।

0: वो तेरा जो हरि गुण गाया जप ले हरि का नाम रे बंदी मत कर तू अभिमान मत कर तू अभिमान रे बंदी झूठी तेरी शान रे मत कर तू अभिमान
1: मत कर तू अभिमान रे बंदे और ई जन गाना रहल हमनी के कलाकार के बहुत ही मधुर आवाज में सुनला जा गाना नहीं बल्कि बहुत ही भावुक भाव भरा भजन रहल और ई जन हमनी के कलाकार होवन ई होवन श्री विनय रामदू जी। विनय जी आपका स्वागत बा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद रोशन भाई कि आप लोगों बुलाई ला जा और हमने की जितना श्रोता लोग हों सा जितना हमने की सुनत हों सा उन लोगों को प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार तो हर स्वीकार कर रहे हों सा हमने के जो कलाकार हमने के जो श्रोतागण होन और लोग जाने खोजत रहन जा कि इतना मधुर आवाज में है भजन से के शुरुआत कर लग कलाकार के बाद प्रोग्राम के बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर आवाज विनय रामदू जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद रोशन भाई।
1: और तुहर जो परिचय है इतनी तू कोनो परिचय के मोहताज नहीं हुआ काहे कि बहुत ही प्रचलित एगो कलाकार हुआ मॉरिशस में और खासकर बॉलीवुड गाना में तो और तुहर जो आवाज है बिल्कुल हरिहरन जी की तरह मिलते जुलते बा लेकिन जो भजन रहल हम अनुमान लगेली कि ई जो आवाज

0: रहा थोड़ा बहुत हटके अनूप जलोटा जी की तरह तो नहीं कर ला
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: और भजन गाय में बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा ना विनय भाई जी।
1: हाँ जी
0: हाँ।
1: वैसे तो हमारा लोकाशों मिलल बा काफी समय तक हम भजन उजन करते ली भजन मंडली में और धीरे धीरे तब एगो झुकाव होल तनी बॉलीवुड गाने की ओर।
0: बहुत अच्छा।
1: संगीत में और क्लासिकल म्यूजिक।
0: हाँ जो शुरुआत हो रही तो हर संगीत के सफर के वो भजन से शुरू होल।
1: हाँ जी हाँ।
0: माता पिता के आशीर्वाद से बड़े जन गुरुजन के आशीर्वाद से आज हैजा हुआ जा
1: जी हाँ।
0: और तो हर साथ एगो कलाकार बा एगो बहुत ही बढ़िया जोन गायोला एगो गायिका हुआ न जेकर नाम है बिंदिया जी। नमस्ते बिंदिया जी।
2: नमस्ते भाई जी।
0: बिंदिया जी तोहरो कहाँ बोल तोहरा तोहर चर्चा तो बहुत जगह होला और हमनी के बताओ कहाँ रहेला जा और चला विनय भाई से पूछब जागे पहले कहाँ रहेला जा भाई विनय जी।
1: वैसे तो हमने तनी सुन लेस में रही ला सर फ्लाक के जिला में।
0: अच्छा।
1: और जस्ती प्रेसिजेमेंट तनी सुन सेंट जूनियर विलेज और बिंदिया सेंट दे फ्लाक में रही ला और ऐसे वा
0: बहुत अच्छा
1: एगो बहुत ही प्यारा गांव है सेंट जूनियर विलेज एगो जोरी मोंटाइन हो वा उधर।
0: बहुत अच्छा। तो बहुत ही जैसे बोले ला सा पूर्वी क्षेत्र मॉरिशस में तो लग पावल जा बिंदिया जी भी वहीं पर और बहुत सारे प्रोग्राम है तो लोग साथ साथ में भाग ले रहा जा। तो चलो बिंदिया जी बिना समय गंवाए चले गो गाना तो हर आवाज़ में सुन लेला सब पहले तब विनय जी से हमने तब हमने विनय जी से प्रश्नोत्तर सुनब सा। बिंदिया जी तैयार हुआ? अच्छा कलाकार लोग के नहीं चाहे ना बोले कि हाँ नहीं तो नहीं हम समय हमेशा तत्पर रह लें जो अपन कला के प्रदर्शन करे खातिर। तो चला बिंदिया जी हमने सुनत है जा और श्रोतागण भी उत्सुक होवन जा तो हर आवाज़ सुने के। चला बिंदिया जी।
2: तो हम एक भोजपुरी गाना प्रस्तुत करना चाहूँगी।
0: अच्छा कोई बात नहीं ये तो भोजपुरी का कार्यक्रम है ये तो भोजपुरी के कार्यक्रम है तो यू आर मोस्ट वेलकम बिंदिया जी। चलो
2: दादा बिहार से आइलन दादी कलकत्ता से दादी कलकत्ता से दादा बिहार से आइलन दादी कलकत्ता से दादा बिहार से आइलन दादी कलकत्ता से दादा बिहार से आइलन दादा बिहार से आइलन दादी कलकत्ता से दादा बिहार से आइलन दादी कलकत्ता से दादा बिहार से आइलन दादी कलकत्ता से

के अपन जीवन बितैलन, कितनी लड़ुआ आके यहाँ गिरैलन।

0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर आवाज में ई भोजपुरी गाना तू गईला। तो चला विनय जी के लिए और बिंदिया जी के लिए जोरदार तालियों की गूंज हमनी सुनाब जा। चला जितना तलो की हमनी तारीफ करब जा, जितना प्रशंसा करब सा उतना ही कम हो। बाद में हमनी के मौका मिले तोहरो दोनों से एगो डुएट सुने के, हम ही एगो मांग करब, फरमाइश करब। तो चलो भाई विनय जी, अपन जिंदगी में बोला तू कौन कार्य करेला?
1: वैसे तो हम एजुकेटर है,
0: एजुकेटर हुआ जा
1: सेकेंडरी स्कूल में।
0: अच्छा।
1: और एंसेयो करीला परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूजिक क्लासिकल,
0: शिक्षक हुआ, संगीत सिखावेला,
1: संगीत लेकालो के कॉलेज में।

0: अच्छा
1: बहुत अच्छा और बिंदिया जी तू कहाँ करेला जीवन में
2: अभी तो हम कुछ सिर्फ गाना गा रही हूँ
1: बहुत ही तो बहुत अच्छा काम है तुहर बिल्कुल तनाव नहीं संगीत के प्रति झुकाव बा और लगाव भी ये हम काम करती तो बहुत अच्छा रहना मत खतिर जितना तनाव बा सब दूर हो जा जीवन में तो लोगों श्रोतागन बिंजा जी से तो नहीं सीखिया जा सारे तुम लोग काम काज छोड़ जा और संगीत से जुड़ा जा आज तो चलो भाई विनय जी हमने के बताओ कि भोजपुरी भाषा बहुत ही पसंद करेला
0: जी हाँ
1: कुछ सकबा बोले हमने के मातृभाषा भोजपुरी पर
0: भोजपुरी एगो बहुत ही हमर हिसाब से हैं बहुत ही एगो जुली एगो लोंगार सा एगो बहुत ही बढ़िया एगो एगो एगो
1: भाषा
0: भाषा हमने के अरु हमरा लोकाशा मिडल बा सीखे के तनी सुन भोजपुरी भाषा हमर दादी हमर नानी लोग संगे
1: और
0: उलो के संगे जब उलो के साथ रलक तब ले तो एगो ओसन एगो मौका मिलल कि तनी मनी भोजपुरी सीखे के अपन में बतियाए के शुरुआत में तो ऐसे नहीं रलक लको जैसे लड़का लोग अपन से भोजपुरी बतियालन सर तनी सुन अटपटा हो जाला तो धीरे धीरे तब एगो एगो एगो एगो एगो लाभचित बनल गते गते और ऐसे तो
1: नहीं सकब सब बोले तनी मनी तो बहुत ही बढ़िया तरीके से तो भोजपुरी बजावत हुआ बहुत अच्छा और हम इकर बहुत ही सराहना करीला हमेशा हमने के जो भाषा है कि तू आगे बढ़ते रहिए जैसे कि अभी बिंदिया बहन जी भोजपुरी के गीत लेके ही प्रोग्राम के आरंभ कर लन अपन तरीके से और तू एगो भजन कर ल कहे कि जो सब प्रोग्राम के श्री गणेश करीला जा हमनी के संस्कृति में बोला जाला कि पहले परमपिता परमेश्वर के सोच के ओकर आशीर्वाद लेके तभी हमनी शुभ कार्य शुरू करीला सा ना
0: जी हाँ
1: तब बहुत अच्छा लगल हमके कि कहे कि है प्रोग्राम में अला और एगो भजन के साथ शुरुआत कर ल और बिंदिया बहन जी एगो भोजपुरी गाना से ये प्रोग्राम के आगे ले गए लन तो बहुत ही धन्यवाद और हमने के बतावा अभी एगो बहुत ही अहम विषय पर हमने चर्चा करब जा एगो कॉन्सर्ट जोन हो बा के बारे

0: हुआ कि तुम हमने के सफर जो तुम्हारा संगीत के सफर हा हम जानी कैसे शुरुआत हो तुहर परंतु जब बॉलीवुड सॉन्ग्स जो फिल्मी गाना के जो हमने बात करी लजा ता सकब हमने के बतावे कि कितना प्रतियोगिता में भाग ले ले हुआ जा और कितना में विजय प्राप्त कर ले हुआ
1: अच्छा सबसे पहले लाने जिस जिनव का तो मैं 17 में पहला होला हम भाग ले रही
0: एमबीसी में
1: एमबीसी के होकर प्रतियोगिता गीत गाता चल में और उस समय शायद हम टूजू एटीजियन रही लेकल में
0: छात्र
1: हां छात्र और इस बीच में हमरा लुकाचो मीरा तनी सुन ई हिस्सा लेके ई रला की पहला होला जब भाग ले दी सा त सब चीज नया रलक ना तनी तो
0: नया माहौल
1: और हमनी उतना जुड़ल नहीं रही सा संगीत से
0: अनुभव नहीं रहा
1: अनुभव नहीं रलक एगो ग्रुप में नहीं रही सा कि जाते ही सा गाय सिपा हर सप्ताह एगो रिपीटेशन होता हो हिसाब से नहीं हो रलक लाकोज उले पुक था तनी सुन लेकोल तनी जस्ती पढ़ाई में ध्यान
0: पढ़ाई में ज्यादा हाँ
1: तो
0: और 90s के जो जमाना हर भाई विनय जी उमे देखब जा कि जो हमने के माँ बाप रलन जा इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं देवत रहन से लेगा लोग के ढेर पढ़ाई तब जब संगीत में समय मिली तब संगीत में ध्यान
1: हाँ जी बिल्कुल
0: ऐसे रहा हाँ।
1: तलाने का तो मैं जिसे मैं पार्टिसिपेट रही गीत गाता चल में पहला होला और मैं विजेता ने रही
0: कौन विजे, गाना
1: रही लाने का तो मैं जिसे तो मैं आवो दैनिया निकल रही उतरा न दिल में कोई और गाना
0: लेके
1: गाना लेके गरली और मैं ई बा की हम बहुत खुशी रही की पहला वाला टेलीविजन में पारित होता है और परिवार लोग देखा तो हाँ वे उजाता टेलीविजन में सिपाही के
0: लेकर और बोला जाए कि साला में तो सब बन गया
1: तो वो पहला रला को शुरुआत तब उकर बाद में 1999 में तब पार्टिसिपे ऑलरेडी दूसरी फॉर वो रला का साज और आवाज
0: अच्छा
1: प्रतियोगिता एमबीसी से
0: है सब याद बात हो रहा
1: हाँ साज और आवाज
0: कहाँ सब भुला ये सब
1: और वो मैं लिखी गर ली एगो गीत जो ना शायद बहुत लोग पसंद करे लंचा
0: अभी रे पसंद करे लंचा
1: वो गीत रला घूंघट में चेहरा आपका और काफी लोग सराहे लंचा है गानावा के और बहुत प्यार दे लंचा है गानावा
0: के
1: और उसे एगो एगो दूसरा एगो हौसला मिलल संगीत के क्षेत्र में तनी सुन आगे बढ़े के और तनी सुन तब उकर बाद में 2004 में तब एगो दैनिया कॉम्पिटिशन में भाग ले ली तब मैं गले रही एगो क्लासिकल सॉन्ग तेरी पायल मेरे गीत तब
0: एस पी बालासुब्रमण्यम जी की आवाज
1: हाँ ये तेरी पायल मेरे गीत
0: तब भाई विनय जी हम तुम्हारा एगो झटका दे अभी जाने ना काहे ई गाना में हम याद बात तेरे पायल मेरे गीत टाइटल सॉन्ग गए रहा ना और ही मैं तू पहले स्थान पर आ रहा
1: ला
0: आज जो है 25 सितंबर आज है बरसी एस पी बालासुब्रमण्यम जी की आज है ओकर बरसी तब बाद में है गाना गा लिया ओकर श्रद्धांजलि अर्पित करके
1: श्रद्धांजलि अर्पित करी के रूप में ठीक है
0: तो चलो ये तो हर जो कार्य है बहुत ही रिच म्यूजिकल कार्य जैसे बोली ला जा तमनी बढ़ब जा बिंदिया जी की ओर लेकिन बिंदिया जी की ओर से बढ़े से पहले गो बहुत ही सुशील सीधी साधी भोली भाली एगो नवयुवती यहीं जा बैठा बा सब बोले हमने के हो वन
1: ई हमर बेटी है
0: तो हर बेटी हो वन
1: हाँ हर्षी हर्षिता
0: हर्षिता अच्छा हर्षिता जी के नमस्ते कोई ओके का करत हो थोड़े संगे वो छात्रा हो
1: हर्षिता अभी छात्रा है अभी लिनवेस्ट मोरिस में कैथरीन माने मैं वो एस्टिडियन है
0: अच्छा
1: और ओकर एगो वो खुशीरेला गीत गाई के और ओकर एगो संगीत के ओकर एगो एगो टोली बा
0: बहुत अच्छा
1: हर्षी इवेंट और वो लोग जैसे परफॉर्म कर रहे हैं हल्दी गीत इमली घोटा बहुत अच्छा
0: बहुत ही बढ़िया बात बा जैसे बोली लजा फ्रेंच में तिल पे तेलफीस तिल में तेलफी ऐसा सरकार सब बोले कि जैसा पिताश्री वैसी सुपुत्री तो हमने के बहुत ही आशीर्वाद बा तोहरा कि हमेशा तू आगे बढ़ते रह चाहे तुम्हारे पढ़ाई में हो चाहे तू संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे।

0: रहिया अपन माता पिता के नाम हमेशा रोशन करते रहिया काहे कि जन माता पिता होवन बहुत ही लाड़ प्यार से अपन बच्चा लोग के बढ़ावे न जा और रो के आशीर्वाद सदैव तुहरा तुहर पर रही बिंदिया जी
1: हाँ
0: नहीं भूले लिए हम नहीं सकब बचे जैसे कि हमने के भाई विनय जी बोलन कि ओकर जोन प्रतियोगिता के जोन छोटा सुन किस्सा बा छोटा सुन नहीं बल्कि बहुत ही आकर्षक किस्सा बा तो हर प्रतियोगिता के जोन किस्सा है तनी ओकर बारे में बात करा जा
1: हाँ
0: बोला
1: पहला तो हम रेडियो प्लेटफॉर्म के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं जो हमरा के गो कलाकार के रूप में अपन परिचय देवे और अपन कला प्रस्तुत करे के खूबसूरत मौका देलन
0: बहुत अच्छा और बोला हमने के जो प्रतियोगिता के बारे में हम तुम्हारे से पूछत रहली
1: हाँ वैसे तो हमरा संगीत के क्षेत्र में बहुत रुचि बा हमर पति और हमर बेटियां भी साथ में एक भजन मंडली में गाते थे
0: बहुत अच्छा
1: जैसे अभी तक गा रहे हैं
0: अभी तक गा रहे हैं आप लोग
1: हाँ
0: बहुत अच्छा
1: और
0: और तो हर जो है नई को प्रतियोगिता में जो भोजपुरी प्रतियोगिता में भाग ले रहे लग जाना
1: हाँ
0: हाँ तो हम, एकर बारे में तनी चर्चा कर जा
1: यानी के देमिल जिसवित में शायद
0: हाँ
1: गमत देविलास रहल
0: अच्छा गमत
1: रेडियो प्रेस द्वारा प्रस्तुत
0: अच्छा,
1: किया जा रहा था
0: जो गांव में जो गमत होला ओकर में तू भाग ले रहे रहला जा और इमे कुछ हो रहल अमोलिया जा निकल रहला
1: पहले स्थान में
0: पहले स्थान पर निकल रहला का बात बा बहुत ही बढ़िया
1: फिर बाद में त्रियोले गांव में सब फिनालिस्ट जो थे गांव अलग अलग गांव से वहां पे उस प्रतियोगिता में गईली सा वहां भी पहला इनाम मिला हमरा
0: सभी जो है ना गांव के जो है ना विजेता रहे
1: हां
0: वो लोग के बीच में गो प्रतियोगिता होल और तू विजेता घोषित होला बहुत बढ़िया विद्या जी बहुत ही बढ़िया तो भाई विनय जी और बिंदिया बहन जी बहुत धन्यवाद आप लोग गए जा तो बाद में तो लोग के गो दुआत सुने के हमने के मन कर रहा था तो चलो पहले हमने एक गो प्रश्न पूछी ला जा हमने के श्रोतागण से नंबर मिला ला 4028070 का सौदे का तो मैं सुसान जिस पर हमने के नंबर मिला हुआ और हमने के बतावा कि जो गाना में भाई विनय जी बहुत ही वर्ष भर में चर्चित हो गल बहुत ही प्रसिद्ध हो गल घूंघट में चेहरा आपका जोन हरिहरन जी गैलन खाली तो लोग हमने के बोले के बा हई जोन गाना है फिल्म घूंघट में है इमे जोन अभिनेता है वो कौन है नहीं तो अभिनेत्री के नाम बता द अभिनेता या अभिनेत्री के आक्ते आक्तिस के नाम बताएब तो तू आज स्टार ऑफ द वीक घोषित हो जाएब तो चल हमने के बतावा और थोड़ी देर में हमने भाई विनय जी की ओर बढ़ब सर तो भाई विनय जी हमने के बतावा जब तक हमने के श्रोतागण फोन करिए जा
2: जी हाँ
0: एगो बहुत ही आकर्षक एगो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सर्ट हो के बा हमने के सकब बताए वो कॉन्सर्ट के बारे में के परफॉर्म कर रहा था कब होता कहाँ होता बोला
2: हेलो जितना श्रोता लोग हमने के सुनत हो सर शायद उन लोग के रेजो सोशियो में तनी सुन एगो उन लोग के तनी सुन एगो इन्फॉर्मेशन मिल गल हुई कि हमने ऑर्गेनाइज कर रहे थे ऐसा एगो म्यूजिकल कंसर्ट ई म्यूजिकल कंसर्ट लगभग चार महीना से प्रिपेयर कर रहे थे ऐसा तैयारी होता चार महीना से ओकर रिहर्सल चलता ओकर प्रिपरेशन चलता आलो हई जो एगो कंसर्ट होता ई मैं लगभग मॉरिशस से काफ़ी कुछ जो म्यूजिशियंस हो सा प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हो सा इमें खेला था सा इमें आठ गो म्यूजिशियन बा और ई कंसर्ट के ओकर एगो एगो मूल एगो एगो नाम दियाल बा दैट इज द बॉलीवुड मैजिकल 90s और इमें चली ओनली 90s के गाने
0: 1990 से लेकर 1999 तक बहुत बढ़िया
2: और इमें हाई जोन प्रिपरेशन चला था ये लगभग जैसे तोहरा बोला था चार महीना से चला था और हमने की तैयारी लगभग हो ही गलबा

0: और हो सप्ताह ली 3 अक्टूबर के हमने के कंसर्ट रही MGR ऑडिटोरियम बुका में और वो शुरू होता लगभग 7 बजे के आधा लगभग और हम इमें जो ऑडियंस लोग हम सा वो लोग सकियन सा अपन टिकट उतायो में खरीदे और उतायो में बहुत फासिल बा जिस लॉग इन चला करके और वो लोग के स्वाजिरी चला करके बॉलीवुड मैजिकल 90s और अपन अपन सियज सक बन सा स्वाजिरी करे
1: बहुत अच्छा MGI में हुई रात्रि के सात बजे
0: और ये कॉन्सर्ट रही 3 घंटा
1: 3 घंटा 90s तो बहुत ही बढ़िया जब
0: और इमें एक जोरी सरीक्षों प्रिपारे होलबा इमें बहुत बहुत तरह के सरप्राइज रही और हमने वो के एगो मौका मिली उमें हमने के रिवीव हुई के
1: अच्छा
0: 90s के ओकर गाने
1: तो चलो भाई विनय जी एकर बारे में चर्चा करब से पहले गो श्रोता के सुनने ल जा
0: जी
1: हेलो
2: हेलो
1: नमस्ते
2: नमस्ते रोशन जी
1: नमस्ते जी हंसते मुस्कुराते के हो
2: उषा
1: हो हाईलैंड से उषा जी बात करत हो अच्छा आपका स्वागत बा
2: ऐसे अच्छा हुआ जाना
1: अच्छा है सब विनय भाई के नमस्ते कर ल
2: हाँ नमस्ते बोला वगैरह पर कि हम खूब जानी लाऊंगी
0: था उषा जी प्रणाम नमस्ते
2: प्रणाम आपको भी नमस्ते
1: अब बिंदिया जी की भी प्रणाम कर ल
2: हाँ बिंदिया जी और उनकर बेटी के भी
3: नमस्ते नमस्ते उषा जी
2: नमस्ते
1: नमस्ते उषा जी
2: जब हाँ जी
1: बोल
2: हाँ बोल हाँ विनय के जब बहुत दिन से उकरा जानी ला जब से वो टेलीविजन में भाग ले ले रहा तब से
1: जाने ला
2: हाँ
1: अगर टेलीविजन में भाग नहीं लेते नहीं जानते
2: नहीं ना जाने टेलीविजन में सब देखी ला उनका रहा
1: हाँ तो यही तो बोला था रेडियो सोशल में ढेर एक्टिव हुआ है दूसरा काम नहीं बात हर हम मजाक कर रहे थे ये
2: हाँ हो
1: हाँ
2: ये हमने के पास
1: तो है ना हाँ और हमने के जो मोरिशन कलाकार है ना वो लोग के छाना हमेशा बढ़ावा दे के है ना
2: हाँ
1: कि भोजपुरी जगत में हमने के मोरिशस के जो संगीत के जगत में चमकता हुआ कलाकार हुआ अंजा है ना
2: हाँ
1: और दोनों जब साथ साथ चला हुए सब बिंदिया जो विनय जी था तहलका मच जाला अगला जो सप्ताह अगला शनिवार तू अपन कर्तव्य निभाइया चले ये हो कॉन्सर्ट में MGI हाईलैंड से MGI आके कितना लेता हूँ मेरी तो हरा जाए के हैं चलते चलते चल जाए
2: कितना कितना भाग ले ला ना हाँ। पूछता सब कितना मिला बातें चल गल है सब तब
1: बोला हमने के उषा जी जो हम प्रश्न पूछ ली विनय जी के जो गाना रहल हो फिल्मों में घूंघट में के अभिनेता बा और के अभिनेत्री बा बोला हमने के बोला
2: इंदर कुमार
1: और
2: ऐसा झुलगा
1: बाप फिल्म के बारे में पूछब तो सब जान जाए बतू लेकिन क्या बोला तुहरा बोला बहुत ही बधाई हो हाँ तू तो बहुत खुश हो गल ताली सुन के बहुत धन्यवाद उषा जी बहुत धन्यवाद ऐसे हमनी के कलाकार के तू हमनी के कलाकार जो होवन ऐसे वो लोग के बढ़ावा देते रहिए बहुत धन्यवाद चले गो दूसर श्रोता के सुनने ला जा लोग भी उत्सुक होवन हमनी के कलाकार से बात करे के हेलो
4: हाँ भैया जी नमस्ते
1: नमस्ते बहना जी कौन नाम है तुम्हार
4: कैसे हैं आप
1: ठीक है कानूत से अमृता जी हुआ अच्छा है सर हमारे पास अभी विनय जुवन बिंदिया जुवन कैसे अच्छा नहीं रहा बोला था
4: भाई विनय और बिंदिया बहन के दिनों के एक अच्छा लगता पर हम भी रुचि रखी ला हम जाएला हरदी में शादी की हरदी गीत गा
1: अच्छा
4: तो बहुत बढ़िया
1: कराओके तो कराओके जाने ला ना खड़ा होके गाई चाहिए चाहे ला है ना हाँ कराओके कब बैठ के नहीं गावा जाला है ना
4: खड़ा होके
1: बोला हमने के
4: बच्ची भी कायला कीर्तन भजन भाई मुकेश संगे मुकेश छेदी संगे
1: अरे वाह तू तो बहुत बढ़िया कलाकार के जाने ला मॉरिशस में बहुत अच्छा हमने के बतावा जो प्रश्न हम पूछे रली सा कौन जवाब दे बजा
4: भाई हमारे लगे एक एक जवाब
1: कोई बात नहीं बोला
4: आयशा जुल्का
1: हाँ किसके नाम जान गए

0: फटाफट जान गए आतेवा के ने जाने ला आतेवा के अफसोस अब इस दुनिया में नहीं हो अंजा इंदर कुमार तो चला हमनी के बता बहुत ही दोनों जवाब ठीक बा भाई विनय जी
1: हां बढ़िया
0: नीता तोहरे प्रश्न है तोहरे गाना तोहरे प्रश्न त हम बोलब तोहरा और अमृता जी और एगो और बहन रहल भुला गेल के नाम उषा जी अरे वाह उषा जी के दोनों के बधाई हो बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसे ही तू बतियाते रह मुस्कुराते रह ओके धन्यवाद
2: धन्यवाद भाई
0: धन्यवाद हाँ तो भाई विनय जी देखा तो हुआ तो लोग के कितना फैंस हो गए बा हम तो नहीं जाना तली कि मॉरिशस भर में इतना लोग तोहरा पहचाने लन जा हम तो खाली मजाक कर रहे थे जाता मजाक सच हो गल बोला हम नी के बोलत रहला कॉन्सर्ट के बारे में 90s 3 घंटा के एक बोल जला द नॉस्टैल्जिक 90s है ना
1: हां जी
0: नॉस्टैल्जिया के टू रिवाइव कर
1: पा हां
0: वो जमाना जो है बहुत ही बढ़िया जमाना है वो जमाना में हम कॉलेज में रहली कोनो कोनो के प्यार हो रहल कोनो के त शादी हो रहल कोनो के जन्म ले रहल और वो जो 90s है वो में कुमार सानू उदित नारायण साधना सरगम अलका याग्निक हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति ये सब के गाना रही अभी
1: हां बड़ा बड़ा
0: सगबम ने के बताए भाई जी के कौन-कौन कलाकार रहन तोहर अलावा
1: हमर अलावा रही बिंदिया
0: बिल्कुल
1: आज फीमेल सिंगर और इकर अलावा रही विराशा पितिया
0: हां जानी
1: और नीतुषा जो एमबीसी काम करेला
0: नीतुषा रामप्रोगस
1: हां जी
0: बहुत बढ़िया
1: नीतुषा और उकर अलावा रही हमनी की कोरस टीम और कोरस टीम में रही नाविशा और कृष्णा पनिया और रही अक्षय जुगन
0: अक्षय जुगन जी जो नबजिया में काम करेला कार्यरत हुआ हो जा तो बहुत ही बढ़िया तो चला हमनी कॉन्सर्ट के बारे में तो बात करब से लेकिन अभी का बोलब तोरा मन में बहुत ही खुजली होता तो लोग दोनों के गुड वाइब्स सुने के अब का बोलेला तोरा अनुमति से
1: हां हां बराबर हम एगो एगो लोकेशन प्रॉफिट करके हम खोज चली एगो ची अनाउंस करे के आज ई प्रोग्राम में जितना कोई हमने जानते थे कि जो श्रोता लोग हैं सा उन लोग सुने करियां सा अलो जितना श्रोता लोग हमनी संगे अभी संपर्क रखी तो उन लोग के स्पेशल उन लोग के लिए एगो टिकट उन लोग के लिए आधा जो दाम रहा वो करा एगो रेमीज में उन लोग के एगो कादो के रूप में
0: अभी दियो अब से क्या बात बात तो जो उषा जी और अमृता जी फोन कर लन उन लोगों के
1: उन लोग के हाँ उन लोग के रिक्वेस्ट करब कि जैसा सकियां सा हमनी के निवेगो टेलीफोन में ऑफ एयर सकी ले ले और हम हमनी के संगे संपर्क रखे के और उन लोग के वाउचर उन लोग के एगो कादो के रूप में एगो टिकट के आधा मोल पर उलके देव अब सा 50% रेमीज
0: इतना तो हर उदारता है इतना दयालु बन गए ला ये बोला जाओ हम के जो श्रोतागण हुवन फोन लगावेलन जा क्योंकि बहुत से फोन आवेला और लोग के फोन लग जाला तो लोग के एनकरेज और करे खातिर और लोग के हौसला बढ़ाए खातिर आधा दाम में टिकट में रिमीज देवत हुआ बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया भाई विनय जी
1: हाई कॉन्सर्ट में तीन क्वालिटी की कैटेगरी बा प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर
0: अच्छा
1: तो कोनो एगो कैटेगरी में जेली अंसा तो उमे 50% रिमीज हमनी के ओर से आज के स्पेशलमा जिस है एमिशन के दौरान जितना श्रोता लोग रही कांटेक्ट करी अंसा हमनी के है एमिशन में तो लोग के एगो एगो तोहफा के रूप में दिया
0: बहुत अच्छा भाई विनय जी और देखा तो हुआ तो लोग के इतना बढ़िया उपहार मिला था हमरे नहीं मिला था ये सब देखा तो लोग के मिल जाता फोन करके और कोई बात नहीं और जब तो लोग 90s के जमाने में जो गाना रहल जो बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो लायरिक्स रहल संगीत रहल चाहे वो नदीम श्रवण हो अनु मलिक हो या फिर आनंद मिलिन और जितना जो गीतकार रहन जैसे समीर आनंद बख्शी है सब जावेद अख्तर गुलजार जी ताई सब अगर सुने खोजत हुआ जात हमने के भाई विनय जी होवन हमने के बहन बिंदिया जी होवन ओकर टीम तत्पर हुवन जा हौ सप्ताह जानी हौ शनिवार के है प्रोग्राम में चार चांद लगाए खातिर अगर तो लोग आ जाए बजा तो कबो ई पछते बने काहे कि ई वंस इन ए ब्लू मून में होला 90s के जोन गाना है इतना ज्यादा तो लोग सुने ला जा हां लेकिन तो लोग के मिली परफॉर्मेंस लाइव देखे के एमजीआई में तो चला भाई विनय जी और बिंदिया जी एगो बहुत सुंदर सा एगो युगल गाना हमने के लिए प्रस्तुत करा अगर तोहरा

प्यार कर लूं मैं क्या अपना हाल ए दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता पहला नशा पहला खुमार उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं या मैं

0: नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हार, ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार,
1: उसने बात की

0: चले ये बहुत ही सुंदर सा गाना रहल पहला नशा पहला खुमार और ये गैलन अभी बिंदिया जी और विनय जी तेगो 90s के गाना रहल ये जोन फिल्म रहल जो जीता वही सिकंदर जो रिलीज हो रहल 1992 में तो हमने के जवाब दिया जा 402-807-0 पर इन 1992 के जो बाइसिकल रेस में जो आमिर खान रहली में और आयशा जुल्का के वो दूसर फिल्म से गाना लिए गैलन जा हमने के खाली ई नंबर पर बतावा कि इन जो इन गाना रहल जो विनय जी और बिंदिया जी गैलन असल में ओरिजिनली कौन दूगो गायक कलाकार गरेलन जा कौन गायिका रहल और कौन गायक रहल हमने के जवाब द और 50% जो टिकट है हमने के जो कंसर्ट बा भी 90s और कर में तो लोग भाग ले सक बजा तो चला जब तक कि फ़ोन के नंबर वा बजी फ़ोन बजी तब तक हमने के मध्य में होवन नवयुवती
1: हर्षिता
0: जो विनय जी की सुपुत्री होवन और वो हमने के गो हल्दी गान सुनाई खोजत हुआ जा एगो हल्दी गान तो चल हर्षिता जी कैसे हुआ जा How are you?
2: ठीक हूँ
0: ठीक हैं आप चलता हाँ। धीरे धीरे
2: हाँ धीरे धीरे
0: धीरे धीरे होले होले बहुत ही बढ़िया तो हमने के एगो छोटा सुनने को बहुत ही सुंदर सा हल्दी गान हमने के सुना हुआ जा
2: जी, जी,
0: सुना हुआ

0: धन्यवाद
1: धन्यवाद
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: कलाकार के बाद विनय जी और हर्षिता जी और बिंदिया जी के साथ और बहुत ही सुंदर सा हल्दी गान हर्षिता जी गेलन और साथ में दिलन बिंदिया जी साथ साथ बहुत ही धन्यवाद और हमने के संस्कृति के ऐसे ही तो लोग आगे बढ़ाते रह जाया रहिया तो अच्छा हमने के जो श्रोतागण हुआ चलो कैसे हमने प्रश्न तो पूछ ले रही सर कि हई जो गाना जो जीत हवे सिकंदर है ओकर में जो ओरिजिनल दो सिंगर्स है वो लोग के ललन जा हेलो
3: हेलो नमस्ते रोशन जी
1: नमस्ते आशा जी कैसे हुआ जा
3: अच्छा है रोशन जी और फादर फादर नमन करते हैं विनय जी के और उनका सुपुत्री हर्षिता जी के और मधुर आवाज वाली बिंदिया जी के
1: बहुत धन्यवाद
4: धन्यवाद
1: हाँ जी तो बहुत ही और तो बहुत ही 90s के शौकीन हुआ जा है ना
3: तो अभी अभी खाते बोले थे ना अभी विनय जी और बिंदिया जी के मधुर आवाज में हो जो मधुर द्वेद के लंज उत्तमन के मोह ले और यही खातिर तब बोली ला रोशन जी आप आज के कलाकार के बाद में ऐसा नैसा मोती चुन के आने लाना सबसे के मन
1: हाँ जी बिल्कुल देखा तो हमार सौभाग्य के बाद बात तो लगता सुनत हुआ जा हम तो लोग के देखत भी हैं बोले आशा जी कौन जवाब दे बजा
3: उदित नारायण जी और साधना सरगम जी
1: अच्छा तो हर जवाब हम लॉक कर रहे थे देखब जा तुहरा जवाब सही है कि नहीं ओके आशा जी और अगर सही हुई तो तुहरा 50% गमीज मिली जाए के हो 90s के कॉन्सर्ट में
3: जी जरूर अच्छा तो बहुत बहुत धन्यवाद और तीनों कलाकार के बेहद बेहद बधाई
1: धन्यवाद धन्यवाद आपको
4: धन्यवाद
1: चलो दूसरा श्रोता के हमने स्वागत करी ला जा हेलो हेलो
5: हेलो रोशन जी
1: नमस्ते ये तो राधा जी हुआ
5: हाँ बहुत बहुत धन्यवाद पहचान गए
1: हाँ जी
5: प्रणाम तोहरो प्रणाम विनय को भी और बिंदिया जी और उनकी सुपुत्री
1: हाँ
5: सबको मेरा नमन
1: हाँ जी हर्षिता जी नमस्ते
5: हाँ हर्षिता जी को हाँ। ऐसे हम विनय के छोटा से जाने ला मतलब कि आवातन शायद दूध बेचे हमने बगल
1: अच्छा ये तो हमने जानते
5: हैं गलती नहीं करत है तो
6: बराबर
5: हाँ तो हमने उनका ग्वाला बोलत रही सर भगवान तो ग्वाला रहा ना
1: अच्छा
5: तो हमने कहियो मौसम जिले ने हम उनका ग्वाला बोलत रही सर
1: अच्छा बहुत बढ़िया
5: हाँ तो कारण से हमने उनका छोटा से और हम जानी ला वो बहुत ही बचपन से ही वो बहुत प्रभावशाली बच्चा हमन और उनका आवाज भी बहुत बहुत ही मधुर बा बहुत सुंदर बहुत प्रसन्न थे
1: बहुत धन्यवाद राधा जी वैसे ही हौसला बढ़ते रहिए
5: हाँ बहुत अच्छा लगे रहा सुनने के कारण कारण की हमनी हो इस सबसे जुड़ा रहे सा ना
1: हाँ, संगीत
5: के क्षेत्र प्रोत्साहित करे के हमनी के लाइक आलो के
1: बहुत अच्छा राधा जी हमनी के जवाब द होय कौन
5: साधना सरगम जी और उदित नारायण जी
1: बहुत ही बढ़िया दोनों जवाब सही
6: हाँ बराबर
1: बराबर विनय जी बोले थे विद्या जी बोले थे सम्स अप बोले थे तो चलो
5: खूब खूब आशीर्वाद तीनों जना के खास हमार लड़का विनय की
6: बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी
1: चलो राधा जी और आशा जी के

0: ये बहुत बधाई हो, धन्यवाद धन्यवाद। तो चलो 5:27 तो हो गल बाय भाई विनय जी, अब तक केवल 3 मिनट बच गल बा। हाँ, 3 मिनट हमने के संक्षेप में एगो कंक्लूडिंग नोट हमने के द कि भोजपुरी के क्षेत्र में मॉरिशस के जो नागरिक लोग बा कैसे भोजपुरी के माने लंजा और कॉन्सर्ट के बारे में तनी हमने के बतावा दोनों मिल के, बिंदिया जी और विनय जी बतावा।
1: सबसे पहले भाई रोशन, हम एक चीज हम बहुत खुचतरी तनी सुन हाईलाइट करी के मैं कि हमने जैसे राधा जी अभी फेक अभी बोललक कि हमने लोकल आर्टिस्ट हैं सर, हमने अपन बहुत मेहनत करी ला सर एगो अपन एगो एगो मंच बनाए के ऑडियंस के बीच में, और जब देखा तो उतना हमने के मॉरिशन फैमिली में उतना कंसर्ट नहीं होला लोकल आर्टिस्ट लोग के, तो शायद है एगो एगो माध्यम बा कि है कंसर्ट के रूप में एगो लोकल आर्टिस्ट के सक्यन सा तनी सुन मोटिवे करे। आरो जैसे जानत हुआ जा कि जब भोजपुरी बात बोली रहा सा तो अभी हमनी के जे सकेला हमनी के भाई बहन लोगन जानत हुई बजा कि काल शायद एगो बहुत बड़ा एगो म्यूजिकल कंसर्ट होता हमनी के भाई या किशोर के मियाँ के, तो सबसे पहले हम बोलब कि हमनी जितना मॉरिशन लोग हैं सा भोजपुरी के जो हम
0: प्रेमी
1: हैं सा तनी सुन जुड़ल हैं सा इसे, तो हम एगो एगो एगो रिक्वेस्ट करब कि जितना लोकल आर्टिस्ट लोग हों सा प्लीज़ उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि
0: अच्छा।
1: जानते हैं वो क्या होता है कि हमने बहुत एगो एगो एगो हमने के एगो दूसरा एगो पर्सपेक्टिव है जब इंटरनेशनल जन सिंगर्स आते हैं मॉरिशस में, तो उन लोगों के लिए वजह हमने के एगो एगो दूसरा एगो पर्सपेक्टिव है क्योंकि
0: नजरिया है।
1: हाँ, उन वो लोग आगे से उन लोग वे लोग सुपर स्टार हैं, तो हम एगो मांग करब कि जितना लोग संगीत प्रेमी लोग हवन सा प्लीज़ जितना लोकल आर्टिस्ट लोग हवन सा उन लोग के प्लीज़ सपोर्ट कीजिए कि जिससे उन लोगों के हौसला मिली तनी सन कंसर्ट करे के आरो उन लोग के भी मौका मिली दूसर के दिल में जगह बनाए के।
0: बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रभावशाली शब्द बोल रहा जा विनय जी अंत में। तो चल हमने के जो मॉरिशस वासी होवन कलाकार लोग के मान करे लंजा और हमने के कलाकार के मान और शान बढ़ाई खातिर ही तो कलाकार के बाद प्रोग्राम बा। तो चल 5:50 तो हो गए बा विनय भाई, एगो पॉट टू छेना तोहर और बिंजा के रखे के अभी बिंजा जी इतना मौका नहीं मिली तोहरा सुने के अभी, तब बोलो तो हमके किरण जी चलाल होवन ओके चलना अभी लौटेन दे के। तो चलो विनय जी बहुत धन्यवाद, बिंदिया जी बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद रोशन भाई, और सबसे ज्यादा धन्यवाद जितना श्रोता लोग हमनी के सुने सुनलन सा और जो हमनी के कॉल करलन सा उन लोग के विशेष धन्यवाद। एगो दयनीय चीज हमनी बोलब चाह कि जितना लोग संगीत प्रेमी लोग हवन सा 90s के जितना भी फैन हवन सा प्लीज आइए MGI में आकर हमारा साथ दीजिए, हमें हौसला दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। टिकट ओटायो में है, उतना एक्सपेंसिव नहीं है, 600 है, और जितने लोग भी आज हमें कॉल किए हैं उन लोगों को 50% मैंने अपनी ओर से एक गिफ्ट के रूप में मैंने ऐसा मैंने दे दिया है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रण करने के लिए।
0: बहुत धन्यवाद विनय जी, बिंदिया जी और हर्षिता जी,
2: बहुत धन्यवाद भाई।
0: तो चलो हमने श्रोतागण 5:51 हो गए बा और कलाकार के बाद प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता। चलो ठीक 6 बजे आप सुनब देश विदेश के समाचार और अभी खतीर हमारी धरोहर।
3: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
4: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने देखब जा कि हमने के ई विश्व में कल्चरल हेरिटेज पॉलिसी मतलब सांस्कृतिक विरासत के जो नीति बा ओके कैसे निर्धारित करा गल और कहाँ तक ई लागू होता, खासकर दुनिया भर के गरीब देश के ग्रामीण इलाके

0: इलाका में, मतलब कि सबसे गरीब देश के सबसे गरीब इलाका में, बहुत देश में अनौपचारिक नीति अनकन्वेंशनल पॉलिसी साल 2000 से अमल में आने गलबा, और इमें यूरोप के ग्रीस से लेके बांग्लादेश भी शामिल बा। चाहे ई नीति अनौपचारिक तरीका से ही सही, लेकिन अपनावल गलबा, काहे कि समाज के ई विरासतीय पहलू से आर्थिक लाभ प्राप्त करे के जरूरत महसूस हो लगल बा। और 2008 में जोन आर्थिक तनाव, इकोनॉमिक क्राइसिस, जोन महंगाई रिसेशन चलल, और फिर एकर बाद जब कोविड 19 आल, त एकर से इस जरूरत और भी मजबूत हो गल। और जोन मुख्य वजह देवल गल उ रहल कल्चरल टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन के बढ़ावा देवे के। ई जोन शब्द बा खाली ई युग में विकास, ई जोन शब्द बा कल्चरल टूरिज्म, वो खाली ई युग में अपन महत्व के विश्वास नहीं दिलैलक, बल्कि एगो नवा बदलाव भी अनले बा धरोहर के दुनिया में, जहाँ सांस्कृतिक विरासत अब खाली सबके धरोहर और पहचान ही नहीं रह गल बा, बल्कि एगो आर्थिक वस्तु, एगो इकोनॉमिक कमोडिटी भी बन गल बा। ई एगो साधन बन गल बा पर्यटक लोग के आकर्षित करके एगो ठोस छवि के साथ आगे बढ़े के, जहाँ एगो राष्ट्र सकी अपन मूर्त और अमूर्त विरासत के प्रस्तुत करे। ई खातिर नीति भी अपनावल गल और पुराना कानून के आधार पर बनावल गल, जैसे आर्कियोलॉजी जैसन साइंस के नियम, कानून और एक्ट के अनुसार। भले ही इकोनॉमिस्ट लोग मानेलन जा कि ई पॉलिसी के ज्यादा अहमियत नहीं देवल गल बा, कहे कि ई उतना कुशल नहीं बा, और प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और अन्य खर्च लगेला ई में, और ई पॉलिसी के बेहतर करे के ज़्यादा इंसेंटिव भी नहीं बा। लेकिन ये सब नीति के महत्व तब समझ में आवेला जब जनसाधारण के एगो धरोहर और ओकर सलामती पर खतरा मंडराए लगेला, और तब एगो ऐसन समाधान के ज़रूरत पड़ेला तुरंत ही, जेके सकबा अपनावे। और ई दिशा में सकब्जा बोले कि ग्रीस जैसन देश के सांस्कृतिक नीति बांग्लादेश जैसन देश से बेहतर बा। फिर भी बांग्लादेश जोन की अपन सांस्कृतिक धरोहर खातिर मशहूर त नहीं है, लेकिन ओकर चार गो हेरिटेज साइट बा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होल। जबकि ग्रीस जैसन देश अपन समृद्ध आर्कियोलॉजी और सांस्कृतिक विकास खातिर मशहूर हवन सा, और अपन कानूनी ढांचा खातिर भी, लेकिन उन्हें सकल बा अपन देश में उतना अंकन करावे जितना कि बांग्लादेश। अब मॉरिशस के उदाहरण ले जा, ये एगो छोटा देश होते हुए भी अपन धरोहर के संरक्षण में जी जान से संलग्न बा। हमनी हियाँ कला और संस्कृति मंत्रालय बा, ई लोग के तहत नेशनल हेरिटेज फंड बा, और कितने ऐसन विरासत संस्था बा जे लोग के अपन एगो एक्ट बा, कानून बा, और जे लोग बहुत ही लगाव के साथ, बहुत ही डिटर्मिनेशन, कटिबद्धता के साथ विरासत के संरक्षण में काम करेलन सा। और इस सब विरासत के जनता तक प्रस्तुत करे में मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन भी बहुत हद तक कार्यरत बा, और ये मॉरिशस खातिर एगो गर्व की बात है। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

0: सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। सितंबर के आखिर में कई होटल पूरी तरह भरे हैं, पर्यटन क्षेत्र को एक नई गति मिली है। पर्यटन मंत्री किशोर जुवाल के मुताबिक इस साल 1.5 मिलियन पर्यटकों की तादाद तक पहुंचने के लिए सभी कदम उठाए जा चुके हैं। मिजिन ग्रुप ने वित्तीय साल 2025-2026 के दौरान 1.9 बिलियन रुपए का रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा दर्ज करने का ऐलान किया। ग्रुप ने आने वाले 5 सालों के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। साल की शुरुआत में हवाई अड्डे पर एक मुर्शन महिला को गिरफ्तार, उसकी हिरासत में कमीज थे, जिनका मुताला करने के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया। शक सही निकला, कमीज में सिंथेटिक ड्रग्स थे। और इथियोपिया और जिबूती के बीच ईंधन वाले पाइपलाइन परियोजना में अफ्रीका के सबसे बड़े रईस जादे द्वारा $600 मिलियन से ज्यादा निवेश। नमस्कार राधा। मुर्शिद में पर्यटन क्षेत्र को एक नई गति मिली है। सयाहों यानी पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी हुई है। सितंबर के आखिर में कई होटल पूरी तरह भरे हैं। पर्यटन मंत्री किशोर जुवाल के मुताबिक इस साल 1.5 मिलियन पर्यटकों की तादाद तक पहुंचने के लिए सभी कदम उठाए जा चुके हैं। कई संस्थाओं का पुनर्गठन हुआ है। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
1: मॉरीशस अभी भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सितंबर महीने के अंत में फ्लिकॉफ्लाक में ऐसे बहुत से लोग जो यहाँ की धूप, समुद्र और गंतव्यों की सुंदरता से लाभ उठाना चाहते हैं। कुछ लोग पहली बार के लिए टापू का दौरा कर रही है और अन्य लोग यहाँ की सुंदरता और स्वागत भाव से मोहित होकर प्रभावित होकर आते हैं।
2: Super expérience, ça fait 3 fois qu'on revient.

0: Et c'est de mieux en mieux, donc je recommande à tout le monde. Franchement, les gens sont super accueillants, super souriants, et ils partagent le peu qu'ils peuvent avoir, ils partagent avec tout le monde, et ça, c'est formidable.
1: Je crois que c'est la plus belle destination que j'ai faite de ma vie. On est tombé amoureux de cette destination, et je crois qu'on va finir par venir ici tout le temps, parce que c'est vraiment génial, quoi.
2: It's amazing here. I love the sun, I love the weather. It's very nice because you can finally relax. I'm from Germany and everything is stress. Everywhere is stress and now I can finally relax a little bit.
3: आंकड़े भी यही दर्शाते हैं। 2026 के पहले 8 महीनों के दौरान 2025 में इसी अवधि की तुलना में करीब 3% की वृद्धि। पिछले साल के मुकाबले इस साल के अगस्त महीने में आगमन में अहम बढ़ोतरी दर्ज। सितंबर महीने के आखिरी वीकेंड में बहुत से होटल में बुकिंग दर काफी अच्छी रही। होटल विला कागोलिन के सीईओ अलें पिनापागानी ने कहा,
4: Nous sommes à 100% de taux de remplissage. Nous avons une clientèle très fidèle. Comme vous pouvez le voir, c'est rempli partout. Et je pense que pour nous, ça paraît très prometteur devant.
3: पर्यटन मंत्रालय के स्तर पर प्राप्त हालिया आंकड़े पर्यटन आय में बदलाव दर्शाती हैं। पर्यटन मंत्री ऋषभ जुबाल ने कहा,
5: Après l'année record qui nous gagnait en 2025 et que nous gagnait une recette record et nous gagnait une arrivée touristique record et nous expect qu'il nous pouvait faire encore mieux que l'année dernière. Nous gagnait ça ben dernier temps là la guerre du Moyen-Orient. Moi bien dire qu'il nous fait preuve de résilience, d'une assez proactif. Nous met ben vol supplémentaire des Mauritius et nous aussi. Mise sur ben short haul, c'est-à-dire ben petit trajet, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, la Réunion et aussi l'Inde qui nous réussit faire. Mais comparativement, si nous guettons avec ben compétiteurs, c'est-à-dire les Seychelles et les Maldives, nous faisons mieux que ben.
3: इस सेक्टर को अतिरिक्त रूप से गतिशील बनाने के लिए अधिकारियों की ओर से अलग-अलग सेवाओं को पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री ने आगे बताया,
5: Nous peut guetter qui manière nous capable faire une réforme en profondeur. Donc là, moi, je pense à la Tourism Authority, la MTPA, l'école hôtelière sur Gaëtan Duval, qui n'ont eu fait deviner une académie d'excellence, et aussi nous avons le blueprint qui est déjà prêt, et aussi nous avons le rebranding of Mauritius, qui va le faire pendant fort longtemps, et qui nous peut aller de l'avant.
3: अंतिम तिमाही के नजदीक आने पर राष्ट्रीय उद्देश्य यही, इस गतिशीलता को बरकरार रखना और 2026 में 1.5 मिलियन पर्यटक आगमन के और करीब जाना या फिर इसे पार भी कर जाना।
6: साल की शुरुआत में हवाई अड्डे पर एक मुस्लिम महिला को गिरफ्तार किया गया था। उसकी हिरासत में गमीज पाए गए थे जिनका मुताला करने के लिए इन्हें फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजा गया। शक सही निकला, गमीज में सिंथेटिक ड्रग्स थे। ऐसे ही दूसरे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास बिस्कुट थे जिनमें गांजा था और लॉलीपॉप्स भी जिनमें सिंथेटिक ड्रग्स होने का शक था। इस बढ़ते खतरे के मद्देनजर फोरेंसिक अधिकारियों ने सावधान रहने की अपील की है। क्रिस्टेल लेब्रास, गीता सुनारान।
7: ऊपर से देखने पर ये साधारण जेली कैंडी जैसी लगती हैं, लेकिन इनके जरिए एक नए तरह के ड्रग तस्करी के मामले को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। आजसू के अधिकारियों की सतर्कता से तस्करों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। पुलिस प्रेस ऑफिसर DASP सुहेल लिडियाराम कहते हैं, पिछले साल आजसू ने फ्रांस से आने वाले एक व्यक्ति को विमान से उतरने पर गिरफ्तार किया था। कई सामान जैसे खाद्य पदार्थ, गमीज, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उनके पास से जब्त किए गए थे। आजसू की जांच के बाद पदार्थों को फोरेंसिक लैबोरेटरी FSL भेजा गया और नतीजों से पुष्टि हुई कि इन सिगरेट्स और गमीज में सिंथेटिक ड्रग्स पाए गए हैं और गांजा भी। स्थानीय तौर पर क्यूपिप के आजसू ने एक व्यक्ति को कुकीज के साथ गिरफ्तार किया था जिनमें ये पदार्थ थे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता भी कम नहीं है। कैंडी के रूप में ड्रग्स का सेवन गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा कर सकता है, खासकर कम उम्र के बच्चों और युवाओं के लिए। होम रिडक्शन यूनिट के डॉक्टर यश मधु कहते हैं, उन्हें कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, डिप्रेशन हो सकता है, मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है, दिल से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। अगर किसी बच्चे ने इसका सेवन किया है और वो अपनी सामान्य स्थिति में नहीं है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए।
8: Donc si jamais un enfant prend ça, vous devez trouver qu'ils ont fait la panorama, tout de suite vous amenez l'hôpital.

0: Là, nous, service d'urgence pour prendre le relais.
1: DASP सुहेल लिडियाराम कहते हैं, ऐसे मामले कम हैं, लेकिन जनता का ध्यान आकृष्ट करना बहुत जरूरी है। जांच अभी जारी है, लेकिन परिवारों के लिए संदेश साफ है, अधिकतम सतर्कता बरतना जरूरी है। कैंडी और दूसरी मिठाइयों की सही जगह और स्रोत की अच्छी तरह जांच करना और बच्चों को इस खतरे के प्रति जागरूक करना ही फिलहाल इस अदृश्य खतरे से बचाव का सबसे बेहतर तरीका है।
2: प्रधानमंत्री ने बालाक्लावा में अंतर्राष्ट्रीय यूरोलॉजी कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण में हिस्सा लिया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सेहत के क्षेत्र के कर्मचारियों को ट्रेन करने की अहमियत पर जोर दिया, खासतौर पर आधुनिकीकरण की दिशा में। सरकारी नेता ने कहा कि अस्पतालों में दर्ज संक्रमण दर बढ़ती जा रही है, इसलिए अब महारत बांटना और जरूरी हो गया। इस मौके पर दुनियावी सतह पर मशहूर यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर महेंद्र बंदारी को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि मुर्शस्को मृतक ओगांडोन के बारे में भी विचार करना चाहिए। काविन तापिसो, गीता सुनारान।
1: प्रोस्टेट कैंसर, पेशाब से जुड़ी संक्रमण की बीमारियां और किडनी में पथरी जैसी कई यूरोलॉजिकल बीमारियों से सैकड़ों मॉरिशस वासियों को जूझना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में तकनीक और बेहतर बुनियादी ढांचों की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ ज्ञान और विशेषज्ञता का आदान प्रदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोलॉजी कॉन्क्लेव इसी तरह ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें शामिल विशेषज्ञों में प्रोफेसर महेंद्र भंडारी भी हैं, जिन्हें यूरोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख विशेषज्ञों में गिना जाता है। वे अमेरिका के डिट्रॉइट में यूरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं। प्रोफेसर भंडारी की विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्रों में किडनी ट्रांसप्लांट भी शामिल हैं। उनके अनुसार मॉरिशस को मृत दाताओं से अंग दान की व्यवस्था शुरू करने पर विचार करना चाहिए।
3: विद एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन, पब्लिक अवेयरनेस,
1: उचित कानून, जनता को जागरूक करने, पारदर्शी वितरण और उच्च नैतिक सुरक्षा उपायों से मॉरिशस एक ट्रांसप्लांट प्रोग्राम विकसित कर सकता है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का आकलन केवल तकनीक और बुनियादी ढांचों के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि चिकित्सा कर्मियों की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
3: The renal transplant unit at the Nehru Hospital is an important step forward.
1: नेहरू अस्पताल में रिनल ट्रांसप्लांट यूनिट उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। देश में रिनल इलाज को ये मजबूत करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय यूरोलॉजी कॉन्क्लेव खास महत्व रखता है। इस तरह की वैज्ञानिक बैठक में न सिर्फ नए विकास के बारे में पता चलता है, बल्कि उनका अध्ययन करने, अनुभवों को बांटने और जनता के लिए बेहतरीन तरीके से इन्हें अपनाने का भी मौका मिलता है।
3: It can be adapted to the needs of our population.
1: प्रधानमंत्री द्वारा प्रोफेसर महेंद्र भंडारी को सम्मानित भी किया गया।
3: Dr. Ram Gulam represents a rare combination of analytical mind of a physician, the reasoning of a lawyer, and vision of a statesman. This makes a very formidable combination for Mauritius.
1: यूरोलॉजी कॉन्क्लेव के इस तीसरे संस्करण में मॉरिशस और विदेशों से यूरोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवर हिस्सा ले रहे हैं।
2: आज ग्रेट ब्रिटेन की अदालत के पुराने अध्यक्ष लॉर्ड डेविड न्यूबर्गर ने पोर्ट लुई में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। बरतानिया कानून के क्षेत्र में इनकी गहरी छाप रही है। लॉर्ड न्यूबर्गर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक आर्बिट्रेशन के क्षेत्र में मॉरिशस के आकर्षण को मजबूत होते देखना चाहते हैं। उन्होंने भविष्य में एक मॉरिशन आर्बिट्रेशन सेंटर के जरिए मुख्तलिफ व्यापारों के संदर्भ में अफ्रीकी उद्योगों से मॉरिशस का चयन करने की हिम्मत दी है। सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे, मेजिन ग्रुप ने वित्तीय साल 2025-2026 के दौरान 1.9 बिलियन रुपए का रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा दर्ज करने का ऐलान किया। रियल एस्टेट परियोजनाएं पूरी करने के साथ साथ कृषि, शिक्षा और मनोरंजन गतिविधियों की बदौलत ये मुमकिन हुआ। ग्रुप के निर्देशन ने आज ये ब्यौरा पेश करते हुए आने वाले 5 सालों के लिए एक रोड मैप के बारे में भी जानकारी दी। मिगन पुनपनायकन, गीता सुनारान।
1: मेजिन ग्रुप कई क्षेत्रों में कारोबार करता है, जिनमें कृषि, रियल एस्टेट, शॉपिंग सेंटर और शिक्षा शामिल हैं। जून में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए ग्रुप ने

0: 1.5 बिलियन मॉरिशियन रुपए के कारोबार की घोषणा की है। ये 2025 में दर्ज 3.4 बिलियन रुपए की तुलना में काफी बढ़ोतरी है। शुद्ध मुनाफा करीब 1.9 बिलियन रुपए रहा, जबकि एक साल पहले ये 139 मिलियन रुपए था। मेजिन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेबा कब्देविला जांगियाखों कहती हैं,
1: Cette année, effectivement, nous gagnons un bon résultat. Il y a eu une augmentation significative dans toutes nos bonnes opérations.
0: Real estate और जमीन से जुड़े कारोबार का turnover 4.6 बिलियन रुपए रहा। इसमें PFO में 1400 प्लॉट की डिलीवरी का अहम योगदान रहा। रियल एस्टेट एसेट्स के प्रबंधन में भी 24% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन भी अच्छा रहा, जहां कारोबार 1.3 बिलियन रुपए तक पहुंच गया, यानी 28% की वृद्धि। ग्रुप के अध्यक्ष इवान लेक्री कहते हैं,
2: réaliser qui nous racine dans l'agriculture et nous et a une grosse responsabilité envers le pays pour continuer à produire l'exportation pour l'exportation du sucre parce que ça ramène des devises étrangères qui sont short supply à Maurice et la sécurité alimentaire avec la production d'oignons, production de pommes de terre où Médine est le plus grand producteur. Mais le moteur qui amène le plus de revenus profitables pour nous, c'est le développement de nos activités opérationnelles.
0: ग्रुप अपनी 2027 से 2031 की रणनीति के तहत राजनीतिक साझेदारियां भी करने की योजना बना रहा है।
2: Tu peux assainir la compagnie, diminuer sa dette, et c'était ça le focus. À ce qui nous donne une bonne position, nous peut cause dans qui nous peut investir, dans qui nous peut développer, et comment nous peut créer la valeur durable pour tous les stakeholders de Médine. Et c'est ça la feuille de route 2031.
0: जहां तक मनोरंजन क्षेत्र की बात है, काजिला में 2,70,000 पर्यटक पहुंचे, इससे 586 मिलियन रुपए की आय हुई। पार्क इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के जरिए अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की योजना पर भी काम कर रहा है।
3: मेड इन मोहिस से लेबर के लिए एक प्रोग्राम लागू है। 87 सेक्टरों में 31 उद्योग इस प्रोग्राम के लिए काम कर रहे हैं। मॉरिशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की पहल पर मॉरिशस कमर्शियल बैंक सहायता दे रहा है। कल मौका में प्रमाण पत्र दिए गए। मौके पर स्थानीय उत्पादकों ने स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थन की मांग की। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के संदर्भ में विदेश मंत्री रितेश रामफल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलसिले में एक डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए। इस पहल से नवीनीकरण, निवेश और टेक्नोलॉजिकल तरक्की के मैदानों में नए सहयोग होंगे। न्यूयॉर्क में ही मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री रितेश रामफल ने बरतानी विदेश मंत्रालय में स्टेट सेक्रेटरी एड मिलीबैंड से मुलाकात की। शागुस पर खास तौर पर बात हुई है। मंत्री रामफल ने कहा कि एड मिलीबैंड ने एक हल ढूंढने के लिए बरतानी सरकार का इरादा दोहराया, एक ऐसा समाधान जिससे अमेरिका समेत सभी पक्ष सहमत हो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को श्रद्धालु अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। हमारी टीम आज पुस्तुफला के शिव सागर मंदिर गई थी, जहां की महिलाएं इस पूजा में भाग लेने के लिए एकत्र हुई थी। यचना मिश्रा की रिपोर्ट।
4: लाल साड़ी ओढ़े ये सभी महिलाएं अनंत भगवान की पूजा करने के लिए आज एकत्र हुई। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। हर उम्र के लोग ये व्रत रख सकते हैं, जिसकी पूजा विधि समुद्र या नदी किनारे की जाती है।
5: ढेर दिन से है व्रत पर रखेला, सोचबा तो हमार कुछ नहीं रहल। कैसे बाबा जी बोलत कि है व्रत करबा तो तोहर सब धन सब कुछ हो जाए।
6: छोटो से अपन घरे वो शादी होने रहल तब भी अपन कारम रहली पागे लौके ना कोनो सोनो बा तनी बरकत होला घर में, पति के काम में, सब परिवार के सुख शांति के लिए है व्रत रखेला।
7: स्नान करला के बाद सूर्य अर्पण करला सा अब घर में तब मिठाई पकैला सा तब दिया वो जला के और पूजा पाठ करला सा माला जापू करला सा और जो मिठाइयाँ पकैला सा चढ़ाईला सा फिर वहाँ से करके तब मंदिर आयला सा।
8: मामा दी भी तो इतना छिपे गए था कारमला गिट गेटली और सामने के लिए मुझसे मुखमास गाड़ी ले पिता छिपछी।
4: पूजा में अनंत सूत्र का विशेष महत्व है। इस सूत्र में 14 गांठें लगाई जाती हैं, जिन्हें भगवान विष्णु के 14

0: लोगों का प्रतीक माना जाता है। इन गांठों और इस व्रत की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं।
1: कथा भगवान विष्णु जो नवा कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोलेला, जब पांडव लोग 14 वर्ष खातिर वनवास रहा, विष्णु जी बोलन कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कि हम तो लोग के एक गो व्रत बतावत हैं,

0: तो नहीं दिन भर व्रत नहीं बा, ये व्रत आधा दिन खातिर है, चतुर्दशी। अविवाहित लोग जितना लोग जवान हवन शादी नहीं कल तो श्वेत उज्जर धागा बांधाला, और जितना कोई जुनबा शादीशुदा है वो पीला रंग के धागा 14 गांठ के बांध करके अपन हाथ में बांधेलन से अनंत भगवान के पूजा होला, और एकर में विशेष करके प्रसाद के रूप में पुआ चढ़ेला।
1: पूजा के बाद श्रद्धालु अनंत सूत्र को अपनी कलाई पर धारण करते हैं। ये सूत्र भगवान विष्णु की कृपा, रक्षा और अनंत शक्ति का प्रतीक है। अनंत भगवान की कथा सुनाई जाती है, जिसके बाद हवन किया जाता है।
2: ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम गंगाय नमः स्वाहा, अनंत देवाय नमः स्वाहा।
1: ये आधे दिन का व्रत होता है, लेकिन इससे प्राप्त आशीर्वाद आजीवन साथ रहता है।
3: मॉरीशस और चेन्नई के बीच नया सहयोग। मॉरीशस की स्वास्थ्य काबिलियतों को बेहतर करने के लिए अपोलो प्रोटीन कैंसर सेंटर के डॉक्टरों का डेलीगेशन मॉरीशस में है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू के साथ मुलाकात लगी, जिसके दौरान ये उल्लेख हुआ कि विदेश जाने के बजाय मरीजों को यहीं पर इलाज दिए जाएं। इसके अलावा नौजवान मॉरीशन डॉक्टरों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। पूजा सुकालू की रिपोर्ट पेश है।
4: मॉरीशस में कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में पहले से ही अच्छी विशेषज्ञता मौजूद है, लेकिन चिकित्सा के कुछ अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता और स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करना अभी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। चेन्नई स्थित अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर के साथ ये सहयोग न केवल मॉरीशस में उपचार की सुविधाओं को विकसित करने पर केंद्रित है, बल्कि ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगा।
5: आप सभी जानते हैं हमारे मॉरीशस के जो पेशेंट्स हैं, जो बीमार लोग हैं, हम भारत भेजते हैं तो बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन प्रश्न कभी ये उठता है कि अगर ये सब सुविधाएं मॉरीशस में हमें प्रदान की जाएगी तो हमारे लोगों के लिए, मरीजों के लिए अच्छा होगा। दो साल से जब से हम लोग यहाँ पर हैं, काफ़ी डॉक्टर आए हैं भारत से, लेकिन दो तीन ऐसे डिसिप्लिनस हैं जहाँ पर कम लोग आते रहे हैं। जैसे स्पाइन की बात करते हैं, कैंसर के बारे में आप सभी जानते हैं क्या समस्या है देश में, तो इन ये सब क्षेत्र में ये अपोलो के जो बड़े डॉक्टर हैं वे लोग हमको सहायता करेंगे, और आने वाले समय में यहीं पर ये सब सर्जरी हम लोग करेंगे।
4: प्रशिक्षण, व्यावहारिक अनुभव और विशेषज्ञों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से विशेष रूप से युवा मॉरीशस के डॉक्टरों को आधुनिक चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में नई दक्षताएं हासिल करने का अवसर मिल सकता है।
6: We need to develop a situation where patients in Mauritius have a trust in the local doctors. And for that, it may take time, it may take 4 to 5 years. But if Apollo can provide the senior faculty to come here periodically to train and to hold the hands of the local surgeons, upgrade the equipment, then I think it's realistic to believe that in 5 years, Mauritius can self-support their own medical care in neurosurgery.
7: We look forward to a cooperation between Mauritius and our Apollo hospitals. And we propose the partnership can bring specialist outreach, second medical opinions, telemedicine, teaching, training, clinical knowledge, exchange and structured access to advanced care.
4: मॉरीशस में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को विकसित करना, स्थानीय चिकित्सा विशेषज्ञता को मजबूत करना और मरीजों को बिना विदेश जाए अति आधुनिक उपचार उपलब्ध कराना, यही इस सहयोग के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। और आने वाले समय में चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में मॉरीशस और चेन्नई स्थित अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर के बीच नए समझौतों का रास्ता भी खुल सकता है।
3: अफ्रीका का सबसे बड़े रईस जादे नाइजीरिया के करोड़पति अली को दंगोते ने ऐलान किया कि वे इथियोपिया और जिबूती के बीच ईंधन के नए पाइपलाइन के निर्माण के लिए $660 मिलियन की वित्तीय सहायता देंगे। ये परियोजना 120 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन के लिए है, जो 400 मिलियन लीटर ईंधन को स्टॉक करने की क्षमता रखेगा। 18 महीनों में काम शुरू किए जाएंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान में अपनी सेना के सैन्य अभियानों की प्रतिरक्षा की। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा से मुखातिब

मुखातिब होने से पहले ही अनेक डेलीगेटों ने वॉकआउट किया। नेतन्याहू ने दावा किया कि जीत उनके ही देश की होगी और वो जंग को नहीं रोकेंगे। गजा में जेनोसाइड के इल्ज़ाम को उन्होंने झुठलाया। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने वीडियो के जरिए सभा को संबोधित किया क्योंकि अमेरिका ने उन्हें एंट्री वीज़ा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी अवाम खून खराबे, बर्बादी और भुखमरी का शिकार बना हुआ है, इसलिए उनका पैगाम अमन शांति के पक्ष का मरकज़ है। आज से पोपलियो 14 फ्रांस के दौरे पर हैं। पेरिस में एक बड़ी मास सभा लगाई जाएगी जहां आधे मिलियन से ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे। प्लास डे ला कोंकोर्ड, आर्क दे ट्रायंफ और शांज एलिजे के इलाकों में हिफाजती वजहों से पुलिस की घेराबंदी होगी। आज फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा ओली हवाई अड्डे पर पोपलियो का स्वागत किया गया। और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत हमारे इलाके में दक्षिण से आ रहे कुछ बादलों का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात आमतौर पर घने बादल होंगे और कल सुबह भी और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। कल दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे। दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लाटों में बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 22 से 24। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तापमान सामान्य से थोड़ा ज़्यादा होगा। और कल सुबह 5:56 पर सूरज उगेगा और शाम को 6:06 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की खबरें आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी शिवनाग्या की मदद मिली है. आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया. थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे. नमस्कार और आदाब. On NBC Play.

नंबर एक इंकर मैन स्ट्रीट वाली पिटो में 74 साल की 74 years old श्रीमती बिदवंती ओमिया, श्रीमती बिदवंती ओमिया पैदाइशी नाम दाउताल, जो सती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे मुरा फ्यूनरल पिछित रिबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंकबाव की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। पाउडर मिल रोड डंकन लेन पोम्पलमूस में 46 साल के 46 years old श्री विशाल ओरादन, श्री विशाल ओरादन जो विशाल माइनो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल साढ़े ग्यारह बजे इनकी पत्नी सुनीता ओराधन के घर पाउडर मिल रोड डंकन लेन पोम्पलमूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनूस त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। कौमाया लेन कौंडीमास्क पावे में 60 साल की 60 years old श्रीमती कुमारी प्रतिमा कौमाया, श्रीमती कुमारी प्रतिमा कौमाया पैदाइशी नाम जीवता जो गीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे इनके पति सामी कौमाया के घर कौमाया लेन कौंडीमास्क पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडीमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में दुबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

समय हुआ है नई सोच कार्यक्रम का। नई सोच कार्यक्रम लेकर आए हैं हम आपके लिए, ताकि ज़िंदगी आपकी हमेशा खुशगवार रहे, ताकि ज़िंदगी में आपको हमेशा नए नए रास्ते मिला करे प्रगति के लिए, नए नए रास्ते मिला करे सुखर शांति के लिए। नई सोच कार्यक्रम आपके नाम। जीवन के दिन बड़े होते हैं, जीवन के दिन बहुत ही गहरे होते हैं, अगर इस जीवन के हर पल को आप जीना सीख लें। जब जीवन के हर एक पल का फ़ायदा आप उठा पाएँ तो ये जहां आपके लिए बहुत खुशगवार जहां बन जाएगा। बड़े दिलवाले मूवी का ये गाना है, किशोर कुमार की आवाज़ है। इन विचारों को अपने जीवन में समा लीजिएगा, आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा।

चलिए जरा हम देखते हैं कि इस जहां में कितनी बातें होती हैं, कितनी आवाज़ें होती हैं, कितनी आवाज़ें होती हैं जो हमें बुलाती हैं। क्या उन आवाज़ों पे हमें गौर करना है, उन आवाज़ों के बुलावे पे हमें जाना है? इस बात का फ़ैसला तो हमको ही करना है, बस देखना है कि जो गाड़ी हमें बुला रही है क्या वो हमें सही मंजिल तक पहुँचाने वाली है। और अगर ये गाड़ी सही मंजिल तक पहुँचाती है तो क्यों न चढ़ जाए उसमें।

जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, जहां जीत की तमन्ना होती है वहां अक्सर हार मिल जाया करती है, पर इस हार से हमें कहां हार मानना है, इस हार से ही तो हमें सीख के आगे बढ़ना है और जीत तक पहुंचना है, जीत को हासिल करना है।

चलिए जरा दिल के बारे में सोचते हैं। जरा दिल शीशे की तरह होता है, दिल हो या शीशा टूट जरूर जाता है, बस शीशा थोड़ा शोर कर देता है पर दिल चुपचाप रह जाता है। इसलिए आप संभाल लीजिएगा, किसी दिल को टूटने मत दीजिएगा। जहां लगे आपको कि कोई दिल टूटने वाला हो उसे संभाल जरूर लीजिएगा।

चलिए दुआओं से भरा हुआ ये गाना सुनते हैं जिसमें हमारे उन महत्वपूर्ण लोगों के लिए दुआएं हैं जो हमारे इस जहां में सबसे ज्यादा हमें प्यार करते हैं।

बस इसी गाने के साथ समाप्त हो जाएगा नई सोच कार्यक्रम और आपने साथ दिया इसके लिए बेहद शुक्रिया। इस प्रोग्राम के बाद यानी कि नई सोच के बाद आपके लिए लेकर आएंगे दिलों की आवाज़।

0: दिलों की आवाज
1: दिलों की आवाज का है ये अंदाज हुजूर, इसी अंदाज में आप ही ठहर जाइएगा कि हम तो नहीं पेश करेंगे अपनी ओर से कोई गाना, आप ही बता दीजिएगा क्या पेश करें हम आपके लिए। आपके दिलों की आवाज जो पहुंचेगी हमारे पास तो हम वही गाना सुनवाएंगे जिसकी फरमाइश आपके दिल ने की हुई है हमसे। तो चलिए चलिए दिलों की आवाज कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पहले तो हम ये गाना आपके नाम करते हैं, उसके बाद आप ही अपने अपनों के नाम कीजिएगा अपनी पसंद के गाने। ये है दिलों की आवाज और इस दिलों की आवाज कार्यक्रम में थोड़ी सी दीवानगी तो होनी ही होनी है। ओम शांति ओम।

ओम शांति ओम का वो सीन जरूर याद आ गया होगा आपको, आपके चेहरे पर आपकी आंखों में वो मुस्कुराहट आ गई होगी जो मुस्कुराहट आती थी इस मूवी को देखते वक्त और इस मूवी को अप्रिशिएट करते वक्त। तो हुजूर आपकी आंखों की चमक हम कभी दूर नहीं होने देंगे। साजन मूवी का भी गाना तो आप सुनकर यूं ही खुश हो जाएंगे। ये गाना हम पेश कर रहे हैं अलका याग्निक की आवाज़ में और इसकी फरमाइश बागवा की सुदेवी जी की तरफ से। सुदेवी जी ने ये गीत मांगा है त्रियोली की दीदी ललिता के लिए, कुशल फैमिली के लिए और दीदी सुनीता, देवी नाम, मरेगा के केशिनी, प्रणीता और अमृतन परिवार, कुआहू परिवार के लिए। तो चलिए जरा हम हो लेते हैं साजन मूवी का ये गीत, सुन लेते हैं।

चलिए जरा आशिकी के लिए, आशिकों के लिए, हमारे सभी श्रोताओं के लिए हम अगला वाला गीत पेश करते हैं। यादों की कसम मूवी का ये गाना है और गाना आप सुनिएगा सुरेश वाडकर की आवाज़ में। इस गाने की फरमाइश हमारी श्रोता अनीता जी ने की है फ्लिकॉन फ्लाक से। फ्लिकॉन फ्लाक की अनीता जी ये गाना अपने पति राज के लिए मांग रही है। बेटे आंतिश अंकुश, बहू मनीषा अशीमा, पोती हिमेशा आदिया और पोते अंश के लिए। तो चलिए साथ मिलकर सुनते हैं, क्योंकि हमारे सभी सुनने वालों के नाम भी किया है अनीता जी ने ये गाना।

और चलिए जरा गिरीश हरलोल जी की पसंद का गाना सुनते हैं। गिरीश जी, आप हमें वादा कीजिए कि ये गाना जो सुनिएगा अपनी पसंद का, इसे गुनगुनाएंगे भी ज़रूर और आपकी आवाज़ हम तक भी पहुंचेगी। डोंट वरी, आपके लिए हम कुमार सानू की आवाज़ का ये गाना पेश करते हैं जिसकी आपने फरमाइश की है, मेहंदी रंग लाएगी मूवी से लिया गया।

तो चलिए सुनते हैं ये गाना कुमार सानू की आवाज में। इनफैक्ट ये गाना मेहंदी मूवी से लिया गया है।

0: continuous music. RM3.
1: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
2: दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में इस बार सुरीनाम से आई है ये आवाज़। सुरीनाम की किरण जी की है ये आवाज़। किरण जी ने फरमाइश की है कब्जा मूवी की गाने की। चलिए मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ सुनते हैं हम।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. रेडियो मनोरंजन के लिए है आपका सो रेडियो मनोरंजन नाम है इसका और है हमारा काम आपका मनोरंजन करना. हुजूर चलिए आप हमें बताइएगा कौन सा वाला गाना आप सुनना चाह रहे हैं. हम तो यहाँ पर हैं आपकी पसंद का गाना आप तक पहुँचाने के लिए. और इस बार जो गाना सुनिएगा धर्मात्मा मूवी का है, कंचन और मुकेश की आवाज़ का ये गाना है और मुकेश की आवाज़ सुनना चाह रहे हैं किरण पुरी जी वैंकूवर कनाडा से हमें मैसेज भेज रहे हैं और उनके मैसेज के हिसाब से उन्हें मुकेश की आवाज़ का गाना पसंद है. तो चलिए गुंजा देते हैं ये आवाज़ आपके लिए किरण पुरी जी.

जीजी लाल के लिए, नरेंद्र कुमार निंदी के लिए और काला राम कारीगर के लिए। तो चलिए, कनाडा तक पहुंचता है ये गाना, पहुंचती है ये आवाज़।

इस वक्त जो गाना आपको सुनवाना चाह रहे हैं हम, वो होगा फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से। जी हाँ, ये वो गाना है जिसकी फरमाइश ललिता जी ने की है, और ललिता जी इस गाने को सुनवाना चाह रही हैं आदर्श को। आदर्श कल अपना जन्मदिन मना रहे हैं और जन्मदिन की मंगल कामनाओं का गुलदस्ता उनको प्राप्त हुआ है पापा रवि की तरफ से, मामा भारती की तरफ से, बहन दृष्टि रिया की तरफ से, अश्विन शिवम और पूरे राम रतन परिवार की तरफ से, और पुपू ललिता की तरफ से। पुपू ललिता जी यानी कि ललिता कुशल जी यही गाना बजवाना चाह रही हैं सुदेवी जी के लिए, ज्ञानी जी के लिए, छोटी जी, प्रभावती जी, हरीश जी और आत्माराम जी के लिए, सुकलाल मौसी और माला राम जावन के लिए।

शीशा हो या दिल हो उसे उछाला नहीं करते, क्योंकि शीशा और दिल दोनों टूटते ही टूटते हैं अगर उसे उछाला जाए तो। बस इतना ख्याल रखिएगा कि शीशा तो आवाज़ कर जाता है पर दिल आवाज़ नहीं करता, इसलिए दिल को कुछ और भी ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है। तो रखिएगा दिल को संभाल के, केवल अपना नहीं हर किसी का दिल, हर किसी के दिल को तोड़ने से परहेज़ कीजिएगा। 7:49 हो रहे हैं और हमारी आपकी मुलाकात तो दिलों की आवाज़ों के बीच में हो रही है, और इस बार दिल की आवाज़ आई है गोशनुओ से। गोशनुओ के अपाडू परिवार के लिए हम पेश कर रहे हैं प्यार के नाम कुर्बान मूवी का ये गाना। इनमें शामिल है दागन, श्वेता, रवीश, प्रिशा, लवेशा और बेशक अपाडू परिवार के सभी सदस्य।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: दिलों की आवाज दिलों की आवाज में चलिए जरा हम मोहरा मूवी का गाना सुनते हैं। दिलों की आवाज कार्यक्रम में मोहरा मूवी का ये गीत सुनवा कर आपको हम बेहद खुश हो जाएंगे और धनी जी भी बेहद खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये गाना धनी जी ने ही मांगा है बुआशली से यश और अहमिश के लिए। तो चलिए टिप टिप जो पानी बरस रहा है उस टिप टिप बारिश का मजा लेते हैं। वैसे याद दिला दे आपको, मैं सुरेखा आपका साथ दे रहे

चलिए जरा ये बारिश आपके दिलों में भी हो जाए, ये बारिश प्यार की हो जाए आपके दिलों में, और दिल से बहुत सारा प्यार आप हर किसी को बांटने लगे। और वैसे भी वैंकूवर से हमारे श्रोता किरण जी ने ये बताया कि उनके यहाँ भी बारिश शुरू हो गई। अब ये तो प्रिसाइज नहीं किया कि गानों की बारिश है या बादल बरस रहा है। चलिए जरा 8:05 हो चुके हैं, हमारी आपकी ये प्यारी सी मुलाकात आगे बढ़ रही है और पेश करते हैं तुम करो वादा मूवी का गाना आशा भोसले की आवाज़ में। ये गाना हम पेश कर रहे हैं थ्रियोले के सूरज शर्मा सजादा जी के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए। तो चलिए ज़रा हम सूरज जी के नाम करते हैं ये गाना, उम्मीद यही करते हैं कि सूरज की हर किरण उनके जीवन में खुशियाँ लाए, संतुष्टि लाए और बहुत सारा प्यार लाए।

चुरा लेना किसी को खुद उसी से कितना क्यूट सा वादा होता है, कितना क्यूट सा कदम होता है। इस कदम को अगर आप उठाते हैं तो याद रखिएगा उनको

उनसे चुरा के उनका ख्याल तो एकदम रखना ही होगा, हर दम रखना ही होगा, मरते दम तक रखना ही होगा। जब आप वादा करते हैं किसी को प्यार देने का, तो उसकी उम्मीदें इतनी बढ़ती हैं कि आप अगर उससे इस प्यार में चूक कर जाए तो दिल उसका टूट जाता है। तो हमने तो बीड़ा उठाया है ना किसी का दिल ना तोड़ने का, इसीलिए आपको दिल का ख्याल तो रखना ही रखना होगा। चलिए 8:14 हुए हैं और बढ़ते हैं हम मोहब्बतें मूवी के गाने के साथ, लता मंगेशकर, उदित नारायण की आवाज़ों के साथ। चलिए ज़रा ये गाना गुनगुनाते हैं साथ साथ मिलकर। इनफैक्ट इस गाने की फरमाइश हमसे नंदा जी ने की है पाई से। उन्होंने ये गाना अपने 4 बच्चों के लिए मांगा है, 2 नाती पोतों के लिए और बहू के लिए, अपने पति के लिए और पुनीता तथा गणेश परिवार के लिए।

चलिए जरा उनकी चर्चा करते हैं जो कहीं जाते हैं दूर, पर लौट के आना उनके दिल की पुकार होती है और वो लौट आते हैं। चलिए जरा यही उम्मीद करते हैं कि कितनी भी दूर आप अपनी जड़ से जाएं, अपनी जड़ तक ज़रूर वापस आ पाएं और आकर के अपनों के बीच खुशियों के पल बिता पाएं। तो चलिए आप लौट चले, गाना सुनते हैं हम जिस देश में गंगा बहती है मूवी से लिया गया, और इस गाने की फरमाइश करने वाले हैं रफ़ीक मोहित जी तायाक से।

चलिए जरा यहाँ हम मौका में हैं और पोर्ट्रीज तक पहुँचाते हैं ये गाना। जी हाँ, इब्राहिम जिन्हें पोर्ट्रीज से मांगा है मल्हार मूवी का ये गाना। चलिए जरा हम सुनते हैं एक बार जो वो कह देते हैं प्यार से तो दिल न्यौछावर कर देता है दीवाना। चलिए इस दीवानगी को सुनते हैं, इस दीवानगी में घुल जाते हैं थोड़ा सा।

0: दिलों की आवाज
1: हम तो सुन रहे हैं, सुनवा रहे हैं दिलों की आवाजें, और ये आवाजें आप तक जो पहुंच रही है बड़े प्यार से आप इसको रिसीव कर रहे होंगे, यही उम्मीद रखते हैं हम। 8:32 हुए हैं और फरमाइशों का सिलसिला तो बढ़ाते चलेंगे हम। चलिए जरा हम सन ऑफ इंडिया का ये गाना सुनते हैं। ये गाना है लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, और बाहुश गुडलैंड से संध्या जी ने इस गाने की फरमाइश की है। उन्होंने मांगा है ये गीत अपने पति विनोद के लिए, अपने बेटे, अपने पूरे परिवार के लिए, सेजल, रायना और निर्वय के लिए, और हमारे सभी श्रोताओं के लिए। तो चलिए ज़रा सुनते हैं हम ये दो आवाज़ें, बड़ी प्यारी सी, बड़ी रोमांटिक सी आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

अगर कोई जाने वाला हो तो रोक लीजिएगा उनको, न माने अगर तो शारदा की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला लीजिएगा थोड़ा सा। ये है वो गाना जिसकी फरमाइश रेहाना जी ने की है फिनिक्स से, और ये गाना आप सुन रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड मूवी से लिया गया।

नवीन जी मोंटाइन ब्लॉक से अगर आप हमें सुन रहे हैं तो बेशक ये गाना हम आप ही के नाम कर रहे हैं। नवीन जी के लिए हम पेश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मूवी का एक गाना जो बहुत ही प्यारा सा है, और ये वो गाना है जो सुनकर आप गुनगुनाएंगे भी, आप उस मूवी को याद भी करेंगे और उस जमाने को भी याद कर डालेंगे।

चलिए बढ़ चले उस जगह पे जहां ये सोचना हो हमको कि अगर हम न होते तो आपका क्या होता, अगर आप न होते तो हमारा क्या होता। इस जहां में हर किसी को अपना साथी मिलता है, अपने अपने मिलते हैं, अपनों का आप जरूर ख्याल रखिएगा। ये गाना हम विदेश जी के लिए पेश कर रहे हैं। विदेश जी जो तेहूश के रहने वाले हैं, अपनी पत्नी रानी के नाम उन्होंने ये गाना किया है।

कयामत आ जाता है बस जब मोहब्बत हो जाती है दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कयामत की ओर इशारा कर जाती हैं बस इस इशारे पे आप बहुत खुश हो जाइएगा इस इशारे पे आप अपना दिल दे बैठिएगा ये गाना हमने लिया है फिल्म जालिम से और जालिम मूवी का ये गाना अलका याग्निक विनोद राठौड़ की आवाज़ों में है ये गीत हम बजवा रहे हैं आशा जी के लिए आशा जी जो रहती हैं काप मालेगे उन्होंने इस गाने की फरमाइश अपने पूरे परिवार के लिए की है

0: और चलिए जरा हम कभी कभी मूवी का ये गाना सुनते हैं। एक घर में आई हुई है नन्ही सी परी, बड़ी सुरीली सी आवाज़ है उसकी, बड़े प्यारे से गाल है उसके, बड़ी प्यारी सी आंखें हैं, गहरी गहरी सी, मासूम मासूम सी। चलिए उसी परी के बारे में सुनते हैं हम कभी कभी मूवी का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ में है और इसकी फरमाइश करने वाली है अनीता जी क्यूपिप से। अनीता जी ने ये गाना मांगा है राम तो हर परिवार के लिए और लेख राम परिवार के लिए। तो चलिए हम भी सुनते हैं नन्ही सी परी वाला ये गाना।
1: मेरे घर आई
0: ये गाना हम रोजबेल की उर्वी के नाम करते हैं।

तो चलिए नन्ही सी परी के इस गाने के बाद हम अंतिम गाना पेश करते हैं हमारे प्रोग्राम का। ये है दिलों की आवाज़ कार्यक्रम का अंतिम गीत, कभी अजनबी थे मूवी से लिया गया। और इस गाने के साथ साथ जो दिलों की आवाज़ कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, हम आपके लिए पेश करेंगे आपका प्यारा सा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में हम आपके लिए पेश करेंगे वो गाने जो आप भोजपुरी जो आप फरमाइश करेंगे जिनकी। और इस बार अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो नंबर बदला सा रहेगा। आप 4028085 पर फ़ोन कीजिएगा, और अगर मैसेज भेजना चाहेंगे तो 5251700 पर भेजिएगा। फिलहाल तो चलिए कभी अजनबी थे का ये गाना सुने और भोजपुरी तड़का का इंतजार करें। इस समय रात्रि के 9 बजे हैं।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

नमस्ते, हमने के सब श्रोता लोग के स्वागत करते हैं जा रेडियो मर्शस और रेडियो मनोरंजन पर प्रस्तुत करते हैं जा हमने आज के भोजपुरी तड़का। और भोजपुरी तड़का में तो हर पसंद के गाना हमने जरूर पेश कर अब जा चला। तो हर खातिर नंबर हमने बोल दे ला जा 5251700005 पर मिसाल सक बजा भेजे जो टेलीफोन ही करे कुछ बजा तो 4028085 इन नंबर पर हमें के टेलीफोन करिए जा और बोलिया जा कौन गाना सुने को जा था। चला भोजपुरी के तड़का लगाओ अब जा, भोजपुरी के गीत संगीत तोहर नाम कर अब जा। अभी तो चला आगे के जमाना के बात सुनी जा, गांव के लफों तेनवा जब रहल त कितना सुख शांति और भाईचारा रहल। ये गाना सुने थे जा हमने राज कमल चिंतामणि जी से।

राज कमल चिंतामणि जी के गावल गांव के लाफों तेनुआ ई गाना चंदी जा हमनी अभी चला आमी प्रस्तुत करी जा एगो गाना ज्ञान महिपत लाल जी के आवाज में और ई गाना हमनी आत्माराम चाचा खातिर बजवावत थे जब लेके के आत्माराम चाचा जी के जन्मदिन बा और उनकर जन्मदिन के अवसर पर उनकर खातिर छोटी जी प्रभावती जी हरीश जी और ललिता जी मंगले हवन जा ई गाना और उनका जन्मदिन के ढेर ढेर बधाई देवत हवन जा हमने के पूरा टीम बगल से आत्माराम जी तोहरा बहुत बहुत मुबारकबाद तोहरा सेहत अच्छा रही भगवान तोहरा अच्छा सेहत दे और ये परिवार के बीच में ढेर प्यार दिहन भगवान तोहरा आत्माराम चचा तोहर जन्मदिन बहुत बहुत मंगलमय रही।

अभी ओडल जला ही तो जानी लजा यहां तो फट फटवा ओडल था चला फट फटवा ओडल जता से निजाम ने व्यास पर से नु जी से और त्यागु से सुने खजा थवन निगाना शांति जी दागुचा के अपन मराठी परिवार खातिर सुनाई खजा थवन अपन दागुचा के अपन भगिना ओम खातिर और अपन भाई बलराम खातिर फट

चला तारा बोना पेची बनीला है जा चट्टनिया गाना तो हल्ला के परसत है जा मीरा मोहन जी के गावाली गाना चला सुनी जा हमने गायत्री जी के पसीन पर नुवेल फॉन्स से गायत्री जी अवन बेटा अजय खातिर मंगले हवन माइबू के मामी कल्याणी मोहन खातिर और मोताइलों के भाभी शकुंतला जी खातिर और यही गाना मंगले हवन गायत्री जी नुवेल फॉन्स के अपन सखी गीता बाई खातिर

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का में चला सुनी जा हमने वंदना हमर सोना ई हर रोशन सदा सिंह जी के गावल गाना ई गीत हमने से मंगले हवन मौत आलबिया से अनीता लाल जी और लाल जी परिवार खातिर इत्तू परिवार खातिर और गोगा परिवार खातिर मंगले हवन अनीता जी गाना तो चला अनीता जी संगे मिलके सुनी जाए गीत

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का तो हर खातिर और भोजपुरी तड़का में हमने भोजपुरी बोलिया के जय जयकार करब जा विनोद सिवदत्त जी के साथ मिलके और विनोद सिवदत्त जी के गावल ई गाना हमने नाम करब जा ललिता कुशल जी के तो यले से ललिता कुशल जी

जाना मंगले हवन आदर्श के जन्मदिन के अवसर पर उनका जन्मदिन के शुभकामना भी देवत हवन आदर्श के जन्मदिन के मंगल कामना उनकर पिताजी रविन देवत हवन उनकर माताजी भारती उनकर बहिन दृष्टि और रिया आश्विन फिर शिवम और राम रतन परिवार ललिता जी यही गीत अपन बहिन सुदेवी और ज्ञानी खातिर मंगले हवन छोटी जी प्रभावती जी हरिची और आत्माराम जी खातिर और सुखलाल मौसी खातिर और माला राम जवन जी खातिर

चिंता ना करे कि जुन जुन सलाह दे वधवन सुग्रीम किस्तु जी पर ध्यान दिया जा इगाना चिंता ना करे होला हमने से मंगले हवन विद्यावती जी कौन तुखल से गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर खास तौर पर अपन बेटी रवीना खातिर

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का में चला हमने सुनी जा अबरी कुत फ्रिक ऑन फ्लैक के अनीता जी के पसंद के गाना माता पिता के मोल सबको जानेला माता पिता के मोल के बरकरार चला रखे के ईद हमने के चाही माने के चला हमने गीता गजाधर जी के गावाली गाना अनीता जी खातिर बजावा था जा फ्रिक ऑन फ्लैक से अनीता जी अपन सब परिवार और संगत यालो के नाम करत हवनी गाना

और ये गीत हमने बजावत है जा वाकवा के सुदेवी जी के फरमाइश पर। सुदेवी जी गरम गरम दाल कच्चू कुच्चा पीमा के अचार सब परोसे खोजत हवन। तो चला सुदेवी जी खातिर गाना हमने बजावत है जा, उनकर बगर से बजावत है जा। त्रियोले के ललिता जी और कुशल परिवार खातिर दीदी सुनीता शोभा देवीना और मालिका के राम रतन परिवार खातिर चला सुनी जा गरम गरम दाल कचू फिर से।

ये छोटा सा नन्हा सा नवाज हमने निर्मल ठाकुर प्रसाद के सुना थे जा निर्मल ठाकुर प्रसाद के गाना हमने सुना थे जा नुवेल फ्रांस के गीता राधा मीरा और रेणुका जी के पसंद पर

संजय जी गले हवानी गाना चला हमनी साथी और मितवा के बारे में सुनी जा अपन साथी से दुग बात अपन मितवा से दुग बात करत हवन चला सुनी जाए गाना हमने वीना जी के पसंद पर कथो बोन से वीना जी गाना मंगला हवन अपन साथी अपन मितवा खातिर अपन पति राजेश खातिर

सुमन राम तो हल जी आना था वन अपन न गमट होला गाना ई हच्ची मामा सुमन राम तो हल जी गमट तक करते रहे लन चला उनकर गमट में शामिल हो जाए लाजा अभी भी 10:18 होलबा ओहरी पार्वती जी के पसंद के गाना चला सुनी जा ई गाना हमने बजावत है जा पार्वती जी बगल से उनकर बहन रम भावती खातिर।

हमनी के जीवन हमनी के देश में बीतेला हमनी के देश जहां पर आरबा वो आजकल के प्रगति ने है बरसों के प्रगति है कई बरस लेक हमनी के पूर्वज लोग दुख सह के हमनी के देश के आगे बढ़ाए के नींव रख ले हवा जा इन नींव खातिर हमनी अपन पूर्वज लोग के प्रणाम करी जा किशोर खिमिया जी के गावली गाना सुनी जा और ये गाना हमनी नाम करी जा राधे जी के राधे जी गाना मंगले हवन अपन सब संगति।

शशि सुहादेव जी के गावल गाना चला सुनी जा हमने ये गाना बड़ा उम्दा गाना चला सुनी जा ये गाना हमने विद्या जी के पसीन पर विद्या जी रहे लन्ना कौफुको और ये गाना मंगल हवन अपन माता पिता खातिर उनकर माता जी हवन रेणुका उनकर पिताजी हवन जयराज इनकर नाम करते हवन ये गाना।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: चला तड़का तो लगाते हैं जा तनी संजस्ती स्वाद से तड़का लगा दे ला जा श्रीमती जी सुयाग से जनगाना मंगल हवन ओह संतोष महादेव जी के गावल गीत है श्रीमती जी गाना मंगल हवन चंद्रमुनि परिवार खातिर महेश परिवार खातिर और ये अपन सब संगति आलोक खातिर

कृष्ण उकज जी, कृष्ण उकज जी नारी के बहुत आदर भावना से ये गीत प्रकट कर ले होवन, ये गीत नजर कर ले होवन। चला ये गाना हमने बजवाए ला जा अमृता जी खातिर, पितों से अमृता जी बगल से, उनकर नातिन लोग खातिर सोनिया और परी, उनकर बेटा विशान और पतु मीनाक्षी खातिर, और उनकर बेटी पूनम खातिर।

चंद्रदेव जुबोधन जी के गावल ही गाना, राकेश जी गाना मंगले हवन पुलाव जैसे, और ये गाना अपन भाई विद्यानंद खातिर मंगले हवन।

और अब चला सुनी जा हमने के आज के अंतिम गाना। अंतिम गाना भोजपुरी गमट है। भोजपुरी के गमट वाता होते रहेला हमने के देश में भोजपुरी गमट के बड़ा बोलबाला बा। चला ई गाना के संगे संगे हमने के कार्यक्रम समाप्त हो जाए और ई सुनब जहाँ सुना थे जहाँ हमने रोशन सदा सिंह जी के गावल ई गाना के संगे हमने के जन भोजपुरी तड़का कार्यक्रम समाप्त हो। ओकर बाद चला सुनब जा आज के हमने के सुनहरे पल कार्यक्रम। और सुनहरे पल कार्यक्रम में आज सुनिए जा हमने के पुराना पुराना गीत के कार्यक्रम। और ये गाना सुनिए जा गिरिशा की प्रस्तुति में। आओ थला फिर मिलब जा। शुभ रात्रि। नमस्ते।

सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल में हमारे सारे म्यूजिक लवर्स का फिर से एक बार स्वागत है। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और किनिशा का प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स? उम्मीद करते हैं तबीयत ठीक है, आपका दिन अच्छा गया हो और आगे अच्छा ही जाएगा। आप फिक्र मत करना, हम दिल से प्रार्थना करते हैं आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए, सुनहरे पल की शुरुआत हो चुकी है आपके और हमारे बीच में, और इस एक घंटे की सफ़र में हम लेकर आए हैं कुछ बहुत ही गिने चुने गाने। सो बस तैयार हो जाइए हमारा साथ देने के लिए इस खूबसूरत से शो में।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। ऐसे जिंदगी में कुछ यादें हम कितने भी कोशिश करें भूल नहीं पाते हैं, है ना, दिल में एक चाप छोड़ देते हैं। और शायद भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ मेमोरीज हमें हंसाते हैं, एक स्माइल लेकर आते हैं हमारे होंठों पर। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ही काफ़ी इमोशनल बना देते हैं, और कुछ हमें याद दिलाते हैं कि हमने लाइफ में कितने ब्यूटीफुल मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं। आज का म्यूजिक उन्हीं यादों के नाम, सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

पुराने गाने की एक खास बात है, उनमें सिर्फ म्यूजिक नहीं फीलिंग्स होती हैं, एक सिंपल सी मेलोडी, एक सिंपल सी मेलोडी भी दिल में बहुत कुछ कह जाती है। शायद इसीलिए डिकेड्स बढ़ जाते हैं और बदल भी जाते हैं। लता जी, रफ़ी साहब जो हैं, किशोर दा एंड आशा जी और इतने सारे लेजेंड्स के गाने को उतनी ही मोहब्बत से हम आज भी सुन लेते हैं। ये है एवरग्रीन म्यूजिक का मैजिक और यही मैजिक हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल।

दोस्तों गिनिशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा याद रखना लाइफ में हर पल परफेक्ट नहीं होता है लेकिन कुछ पल इतने खूबसूरत होते हैं कि हम उन्हें हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखते हैं ना आज उन्हीं मोमेंट्स को याद कीजिए स्माइल कीजिए अपने जो सबसे दिल के करीब हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए और थैंकफुल रहिए कि लाइफ ने हमें इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज दिए हैं आप सुन रहे हैं सुनहरे पल जहां पे आके हर पल को हम खूबसूरत और भी बना देते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: वैसे दोस्तों आज की बिजी दुनिया में हम अक्सर कहते हैं कि टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है, बिजी है, लेकिन कभी कभी सिर्फ कुछ मिनट के लिए अपने लिए ये टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, एक कप चाय, कॉफ़ी, थोड़ा सा पीसफुल मोमेंट और बैकग्राउंड म्यूज़िक

जो हम लेकर आए हैं पुरानी बॉलीवुड के गाने ऑन रेडियो मॉरिशस, बस मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। टू टेक अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम योर हेक्टिक लाइफ और एंजॉय कीजिए सुनहरे पल किनिशा के साथ ऑन रेडियो मॉरिशस।

तो चलिए जी, खूबसूरत गानों का सिलसिला चलाते चलाते कब वक्त हो गया है टाटा बाय बाय बोलने का हमें पता ही नहीं चला। इजाजत दीजिए कि निशा को फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत से सुनहरे पल में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: थी।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो
1: कभी हमने

अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था